राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी

0: दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma

0: ध्यान रखें। खाने पीने की कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1-800-11-2100 पर।
1: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
4: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
3: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
4: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
3: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
4: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
3: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
4: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
3: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
4: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
3: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
5: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।

0: तस्नीम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि रात को नींद भी पूरी हुई हो, जिसमें भी थकान, बाहर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, लेकिन फिर भी अंदर दिल में एक अजीब सा भारीपन हो, एक नामालूम सा बोझ जिसकी कोई वजह समझ ना आ रही हो?
1: शौकीन, अक्सर ऐसा होता है, तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, होता था इनफैक्ट। हमारे जो सामी में जो लिसनर्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, इनके साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हमें लगता है कभी कभी कि शायद मौसम ख़राब है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, खासकर जब हम सुबह नींद से उठते हैं, जागते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: बहुत भारीपन लगता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कभी कभी?
0: बिल्कुल है, सही है,
1: बजाय कोई वजह नजर नहीं
0: आ रही है,
1: लेकिन हकीकत यह है कि वो बोझ जो होता है ना, वो कोई इंसानी चीज़ नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है।

0: हमारे दिमाग अंदर से निगेटिविटी, पुराने दर्द, झूठे अकीदों और एक कभी न खत्म होने वाले शोर से इतना भर चुका होता है हिलाल कि आगे कदम बढ़ाना नामुमकिन लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और इसे हम कहते हैं मन का कचरा,
1: पोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल सही।
0: माइंड जब हमारा पोल्यूट हो जाता है ना कुछ परेशानियों से, निगेटिविटी से, तो ये बोझ ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म पर आ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और मुझे लगता है आज हम इस कचरे को साफ करने की यानी माइंड डिटॉक्स की बात करेंगे।
1: जी, जरा सोचिए अगर इस जहर को और इस शोर को एक एक करके बाहर निकाल दिया जाए, दुनिया वही रहेगी लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। हमारे जहन में एक ऐसा जहर बैठा हुआ है जो दिखता
0: नहीं, नहीं
1: है, जिसकी कोई बू नहीं होती, कोई आवाज नहीं होती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा सुकून चाट जाता है। पता ये जहर अंदर कैसे जाता है? हर बार जब हम खुद से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, या किसी और की कामयाबी देखकर खुद को छोटा और कमतर समझते हैं, या माजी के किसी दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो इस जहर का एक कतरा हमारे अंदर गिरता है।
0: और सबसे खतरनाक जहर पता है क्या शौकी?
1: जी जी।
0: उसे कहते हैं आइडेंटिटी पॉइजन। ये तब होता है जब आप जिंदगी के किसी
1: सही, बिल्कुल
0: एक
1: सही।
0: आरजी नाकामी को चलो कुछ साथ ऐसे कुछ चीज ऐसे फेलियर ही वाल
1: बिल्कुल
0: वो टेम्पररी होता है सोचो ना सा का सो चीज यू से टैग बन मगर से टाबू बनावा टैग बनावा पर से चपान सूत्र टांग एक आरजी नाकामी को अपनी मुस्तकिल पहचान मान लेते हैं हम। और एक बार किसी इम्तिहान या काम में नाकाम हुए और खुद को हमेशा के लिए फेलियर का नाम दे दिया जाता
1: है। बिल्कुल सही।
0: यही से ख्वाब मरने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो जहर अंदर गया है उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। ये जो आपने कहा ना कि ये जहर अंदर कैसे जाता है,
1: कैसे जाता है,
0: एक नेगेटिव थिंकिंग हमारे पास आती है, एक बार हम नेगेटिव सोचते हैं और उसको पकड़ के बैठते हैं तो एक कतरा हमारे अंदर जाता है। तो ऐसे ये कतरे कतरे अंदर जाकर एक समुद्र बनाते हैं जो हमारी हेल्थ, हमारे माइंड, हमारी
1: कंप्लीटली डिस्टर्ब,
0: हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आज ही से अगर हम जो अपने जो मैंने कहा कि इस जहर को बाहर निकाला जा सकता है तो इसके लिए क्या करना है, आज ही से नोटिस करें, नोटिस करना शुरू कर दें कि ये जो हम रोज करते हैं करते क्या है, हम खुद से क्या बातें करते हैं। तो अच्छा पता अच्छा संपानी स्पानी से कत करा
1: सही में
0: नॉर्मली चल रहा है मगर अगर तू कहते काम छो करान इंटरनली छ साइलेंटली छ सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा सब पानस से कत करान
1: बहुत कुछ चलता होता है, बहुत कुछ
0: के साथ बातें कर रहे होते हैं कि मैं करे होता हूं साथ ही थपट मैं करे हो थी पर मगर सुगो उनके मैं छुपा सा मकान में किन सुनस बाला मैं क्या मानूं लोग अगर मैं पे आत्मजन ना करनी गई पत दिनम सरी पाम है ना मतलब ऐसी चीजें करते रहते हैं। देखो अगर किसी कैदी के पैरों में लोहे की जंजीरें हों तो भाग नहीं सकता,
1: नहीं भाग सकता,
0: लेकिन अगर दिमाग में जंजीरें हो ना तो भी इंसान जी नहीं सकता। इंसान का जीना खराब हो सकता है, दिमाग में जंजीरों का होना इंसान का धीरे धीरे मरना है। सोच इंसान को खुली दुनिया में भी कैदी बना देती है अगर मनफी सोच हो। ये सोच अक्सर बहुत लॉजिकल लगती है हमें जब हमारी कुछ नेगेटिव सोच होती है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसके पास ये है, देखो हम को ये अचीव लाइफ में कोर्ट में बैठ में कम्पीट ही कर रहे थे। ये सारी चीजें ये हमें नॉर्मली बजाहिर नॉर्मल लगती है बट ये नॉर्मल नहीं है। ये चीजें धीरे धीरे हमारे माइंड को माइंड में कचरा भर रही है, पल्यूट कर रही है और इसका ऑटोमेटिकली असर हमारे जिस्म पर पड़ता है। हमारे जिस्म भी एक मशीन है। आप देख लो अगर हमारा फोन हैंग हो जाता है तो हम क्या चीज क्लियर करते हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल करते हैं।
0: और अगर हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है तो उसको भी हम जो देखते हैं उसमें कचरा कहाँ पे भरा हुआ
1: एक्स्ट्रा वगैरह वो सब बाहर निकाल देते हैं, उसमें वो मतलब हल्का कर देते हैं उसको ताकि उसके अंदर जो सिस्टम है वो सही से काम कर सके,
0: स्पीड बूस्ट हो काम करना। तो लेकिन जब हम ये सोचते हैं ना नेगेटिव सोचते हैं कि माइंड हैक न बके हिंद कर रहे थे वो फेलियर हुआ अब लोग क्या कहेंगे, या फिर दूसरी चीज ये भी है कि उसने ये अचीव किया देखो उसमें ये क्वालिटी है कहीं थी मैं छुई नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर वाले ने सबको बनाया है, सबकी अलग अलग अपनी एक क्वालिटी होती है। अलग अलग क्वालिटी होती है और यकीन मानिए जो क्वालिटी मुझ में है ना वो आप में कभी होगी नहीं
1: होगी।
0: और अगर आप उसको कॉपी करना चाहेंगे या अगर आप में कोई क्वालिटी है मैं उसको कॉपी करना चाहूंगी
1: सही
0: तो शायद मुमकिन है कि मैं बहुत सारी गलतियां करूं।
1: और दूसरी बात तस्लीमा ये कि आप अपनी एक अलग दुनिया बसाते हैं, आप अपनी दुनिया के बादशाह, आप अपनी दुनिया के शहंशाह है, आपको खुद को किसी के साथ कंपेयर क्यों करना,
0: कंपैरिजन
1: मवाजिना क्यों करना है।
0: Exactly.
1: आप अपने सपने जी लो, आप अपनी दुनिया बसा लो, तो यही जिंदगी यही जस्तजू है।
0: बिल्कुल। ये जो हम कंपैरिजन करते हैं या फिर ये जो हम कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है हमारा, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है, वही धीरे धीरे ये जहर हमारे अंदर बढ़ाता है और ये कचरा जमा हो जाता है जो बहुत ही डेंजरस टॉक्सिन

0: हमारे माइंड में जो सेट करते हैं और फिर हम उन से बाहर आते नहीं है, नॉन स्टॉप हम पेन में चले जाते हैं, या फिर जो हमारा शोर से आगे बढ़ना हम नहीं चाहते, क्योंकि वो शोर दुनिया का नहीं होता, वो शोर कहाँ से होता है,
1: वो हमारे अंदर का शोर,
0: हमने खुद को जान लिया होता कि हम नाकाम है, हम नाकाम ही रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, अपने माइंड को शांत रखें,
1: बिल्कुल रिलैक्स लेना,
0: हर थॉट्स आएंगे, आते जाए, आने दीजिए, आके मगर जाने भी दीजिए, उनको अपने दिमाग का मेहमान ना बना लें, क्योंकि जब ये मेहमान दिमाग में बैठ जाता है ना, तो ये आपको किसी का नहीं रखता,
1: किसी का नहीं रखता, ये आपको किसी काम के लायक नहीं छोड़ता। इनफैक्ट अगर आप देखें कि ख्यालात और फिक्र की जो दुनिया है ये लामहदूद है, ख्यालात जैसे आपने कहा ख्यालात का आना जाना लगा रहता है, बस आपको अपनी परफेक्शन दिखानी है, आपको देखिए इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप हमेशा के लिए आपको एक बोझ लगने लगेगा, और इसका सद्भाव आपने खुद ही निकालना है, इसका जो इलाज है, इसका जो रास्ता है आपने खुद ढूंढना है, और अपनी एक शानदार दुनिया में मस्त मगन जिंदगी जो है गुजारनी है,
0: टॉक्सिक थॉट्स को पहचानना है और नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते जाना है, और अपने अंदर की जो पीस है उसको कैसे हम वापस लाए इस पर काम करना है। पीस को कैसे वापस लाया जा सकता है, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ वो तो हो गया है ना, शकीन हम कितना भी उसके बारे में सोचे यहाँ पर बैठकर,
1: उसको सोचना है,
0: उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हाँ लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता है। जब हम रोज अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकेंगे और टॉक्सिक थॉट्स को उन पर उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आने दीजिए थॉट्स लेकिन जाने दीजिए, ये बहता दरिया है, तो बहते दरिया की तरह आने दीजिए, आकर चले जाने दीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए, और सुबह उठ के कुछ जो मिनट है वो खुद को दे दीजिए। हम स्क्रॉल करते हैं सुबह ही अपना फोन, दुनिया भर की खबरें देखते हैं किधर से क्या हुआ, तो क्या वो हुआ? भी हमारे टॉक्सिसिटी को जमा करता है हमारे जहन में। दूसरा हम क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करना लगता है, वो लोग तो रील्स बना के अपना काम करते हैं, हम लोग उनको फिर देख देख के अपना माइंड भी पोल्यूट करते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, और अपना सुकून भी खो देते। तो सुबह का टाइम मुझे लगता है जो हमारा है वो उठकर थोड़ा खामोशी से अपने आप को दें, अपने बारे में सोचें, अपने थॉट्स को आकर जाने दें, अपनी नेगेटिविटी को जाने दें,
1: बिल्कुल,
0: और प्रेयर्स में लगाना चाहिए अपना जो सुबह का टाइम है,
1: बिल्कुल सही,
0: ज्यादा नहीं, एक आधा घंटा काफी,
1: हाँ बिल्कुल,
0: अपने साथ बात करें, अपने आप से पूछें, और अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि कैपेबिलिटी हम सब में है,
1: है बिल्कुल है, बिल्कुल है, जरूर है,
0: जो गलती करता है उसी में कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि गलती के बाद हमें ये पता होता है कि हमें वापस बैक फोर्स से कैसे आना है, और नेक्स्ट स्टेप जो हम उठाते हैं विद फोर्स उठाते हैं, और उसमें सेकेंड टाइम गलती करने का चांस भी नहीं होता,
1: नहीं रहता, ऑलमोस्ट नहीं रहता है। तो यही जरूरी है कि हम एक मुस्बत सोच के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, अपनी मनफी सोच को यकतरफा रखें, और एक बेहतर कल के लिए, बल्कि मैं ये कह सकता एक बेहतर दिन की शुरुआत एक बेहतर ख्यालात से करेंगे,
0: बिल्कुल। तो अच्छा पता ये साथ सोन माइंड पोल्यूट चुका सान, सोन टॉक्सिसिटी से बड़ा दिमाग इंसान सुंद जहन तुझ बीमार का सान, तो इंसान सुंद जिस्म तुझ बीमार का सान, क्योंकि स्ट्रेस जब आ जाता है दिमाग में तो हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है,
1: बिल्कुल हो जाता है।
0: फिलहाल करो इसमें बासान पनन
1: बोजन वाले खतर का
0: पेश।

0: इनकी काविश है, इनकी कोशिश है कि हमारी हर एक जो सौगात है, हमारा हर एक जो प्रोग्राम है
1: वो आप तक पहुंचता है,
0: वो आप तक पहुंचता है। और इसमें इन लोगों का बहुत ज्यादा किरदार है, बहुत ज्यादा रोल है। शायद हम ये कह सकते हैं कि जितनी कोशिश हमारी उससे ज्यादा कोशिश और उससे ज्यादा मेहनत इसके पीछे जो है इनकी रहती है।
1: दूसरी बात ये भी, कोशिशें तो है इनकी, दूसरा इनका जो हमारे साथ ट्रीटमेंट रहता है, इनके हंसते हुए खिलते हुए चेहरे देखकर सुबह सुबह हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी आती है,
0: एक नई किरण उभरती है, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। इनफैक्ट ये तालमेल बहुत जरूरी है,
1: हर काम पॉजिटिव एनर्जी आती है इस तालमेल से। घरों में भी ये पॉजिटिव एनर्जी हो तो क्या ही बात है।
0: तस्लीम, जब हमारा जहन मुसलसल आलूदगी, मनफी सोचों और टॉक्सिसिटी की का शिकार रहता है, तो सिर्फ एक जज्बाती मसला नहीं रहता, बल्कि जदीद मेडिकल साइंस और रिसर्च के मुताबिक ये हमारी जिस्मानी सेहत को अंदर से खोखला कर के रहता है। दिमाग और जिस्म का रिश्ता इतना गहरा कि जब जहन बीमार होता है तो जिस्म इसकी कीमत चुकाता है। रिसर्च के मुताबिक आलूदा जहन हमारी सेहत पर बहुत मनफी असरात डालता है,
1: बहुत खतरनाक असरात डालता है। आपको पता है जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स अगर इंसान के बिगड़ जाते हैं तो इंसान शुरू लगा पाई मैं कहा छुद वो बकायदे छुज बीमार,
0: बिल्कुल
1: मतलब वो लाइफस्टाइल डिजीज आ जाती है इंसान के अंदर। इतनी लाइफस्टाइल डिजीज जिनको मैनेज करना पड़ता है, जो दवाइयों से क्योर नहीं होती है,
0: बिल्कुल नहीं होती।
1: सुचुका सा यह मनफी सोच या नेगेटिव एनर्जी जब हमारे दिमाग में पनपती रहती है, या फिर कोई स्थानीय हुआ होता है, कोई ऐसी चीज जख्म लगा होता है, कोई दर्द होता है जिसको हम पकड़े बैठे रहते हैं, जब हमको ये पता है कि इन सब चीजों से कुछ होने वाला है नहीं, मैं वो करने थी उस चीज गो सुमक लो, उस वक्त को हम वापस नहीं ला सकते, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ उसकी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में कि ये तो होना था लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। साइंस जो बनान कि ये लिए इंसान अंदर स्ट्रेस न बढ़ान या दिमाग में ये टॉक्सिसिटी बढ़ान छे, हार्मोन हम तवाजुन छो बिगड़ान, कोर्टिसोल लेवल यश सोच ट्रैप कसान। तो जब जहन मुस्तकिल टेंशन गुस्से या खौफ में रहता तो हमारा माइंड जिस्म को सिग्नल देता है कि वो किसी खतरे में है। इस सूरत में जिस्म जो है स्ट्रेस हार्मोन्स बनाने लगता है और हद से ज्यादा बढ़ जाती है स्ट्रेस हार्मोन्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि माहिरीन के मुताबिक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान की सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, मुदाफती निज़ाम कमजोर हो जाता है। और न्यूरोसाइंस जो है इसके रिसर्च के मुताबिक जो लोग मुस्तकबिल की मुस्तकिल नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी में जीते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल जो है वो बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने वाली कुव्वत है वो कमजोर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे लोग आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी वायरल इन्फेक्शंस, नजला, जुकाम और दीगर बीमारियों का शिकार होते हैं, और उनके जिस्म के जख्म भी देर से बढ़ते हैं। देखा है आपने कभी कस्टू लगा जख्म वो वाली जख्म थे अगर ऐसा, या दिल की बीमारियां जो है हाई ब्लड प्रेशर इससे इंसान में आ जाता है। और फिर देखिए हाई ब्लड प्रेशर का कितना मतलब रिस्क रहता लाइफ में, इंसान सुन लगा पाई कि हार्ट स्ट्रोक अचानक बजाय खुश असंगा, मगर अचानक से उसकी सांस बंद हो जाती है, वजह क्या होती है? कोई वजह नहीं होती। हाँ खाना पीना हमारा बहुत इम्बेलेंस्ड हो गया है, दैट इज नॉट से मुंह नहीं मोड़ सकते हम, मगर असल वजह जो माहिरीन के मुताबिक है ना शौकीन वो यही है, जो हमारे माइंड की जो जंग जो चलती रहती है ना, उससे बजहिर बाजार अच्छे कपड़े पहनते दिन में शुरुआत करते अपने काम पे जाते हैं, लेकिन जो मेंटल सिग्नल्स जो है वो नेगेटिव जाती है क्योंकि अच्छा अंदर दिमागी तौर बिल्कुल जाए बदल कुल मसलस मज फसित यह मज फसित रोजन छो कहीं तो नफान
0: तम से छोड़ कहीं नहीं है, नहीं जरूरत है, बल्कि अपने आप को एक आजाद माहौल देना है, अपने दिल को दिमाग को एक बहुत खुली फिजा में जीना है, क्योंकि जीवन जो है जीवन चलने का नाम है,
1: जीवन रुकने का नाम नहीं है, जहां रुक गए सब खत्म। तो चलते रहिए लाइफ में, रुकने का नाम मत लीजिए बस, और अपने जो ख्याल है उनको भी मत रोकिए, मगर आकर रोक देंगे तो बहुत मुश्किल होगी, आकर जाने दीजिए, चलते रहिए, ख्यालात को चलते रहने दीजिए, अपनी सांसें चलते रहने दीजिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए।

घर घर तक पहुंचने वाली आवाज आकाशवाणी श्रीनगर की है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर समीन लाइव मॉर्निंग शो जारी है। फिलहाल आपको यहां पर आज हमारे यहां से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की जानकारी देते चले। रात 9:30 पर शेख मोहम्मद हनीफ का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नष्ट होगा मशवर। शब 10 बजे प्रोग्राम नश्र होगा। नशरियात में हमारे साथी मेहमान है मारूफ ब्रॉडकास्टर और सबका प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी श्रीनगर जनाब

0: खेल बख्शे। इनसे हम कलाम होंगे, प्रोग्राम के होस्ट रशीद निजामी। आयुष का स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन नश्र होगा सुबह 8:45 पर। मकामी रोजनामों से तरतीब दी गई सुर्खियां नश्र होती हैं सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर कश्मीरी नगमे पेश होंगे। सूफी बुजुर्गों की जिंदगी उनकी सूफी व ऋषि कारनामों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम सूफी सदा नश्र होता सुबह 10:00। प्रोग्राम में सूफी शायर अजीज हर्ज से मुतलिक बातचीत होगी। रावी और पेशकश गुलाम रसूल आखून। सुबह 10:30 पर लाइव इंटरेक्टिव शो पेश होगा, जिसमें हमारे मेहमान हैं डॉक्टर माजिद फारूक, जो जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग में बतौर सीनियर साइंसदान और क्लाइमेट चेंज सेल के इंचार्ज के तौर काम कर रहे हैं। इनसे हम कलाम प्रोग्राम के होस्ट तस्लीमा अख्तर और फहमीदा खान। हबीबुल्ला डार निशाती और उनके साथी छखरी और रुख पेश करेंगे सुबह 11:30 पर, दोपहर 2:30 और सपहर 4:30 पर। इनसे आप कलामे अजीज हज, कलामे शम्स फकीर और कलामे रफीक राज समात करेंगे। फिल्मी नगमे आप सुनेंगे दिन में 12:10 पर और दोपहर 2:15 पर। ख्वातीन की महफिल बज़्म-ए-निस्वां आरास्ता होती है दिन में 12:40 पर। आज का प्रोग्राम आपकी फोन कॉल्स पर मबनी है। मेजबान शाहीना रेशी। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम नश्र होता दिन में 1:10 पर, जिसके फौरन बाद चंद फिल्मी नगमे भी आप सुन सकते हैं। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत से आरास्ता ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुपर 3:00। पहाड़ी प्रोग्राम पेश होता है 4:00। गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है शाम 5:00। शाम 6:05 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे गमे बाए रहने खतर। हालात हजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचेगा शाम 7:00। प्रोग्राम वादी की आवाज ब्रॉडकास्ट होता है रात 8:00। रात 8:30 पर खेलों से मुतलिक प्रोग्राम नश्र होगा स्पोर्ट्स टाइम। मेजबान एजाज नाजगी। मेहमान है मारूफ तजिया निगार सैयद हुमायूं कैसर। और शब 9:00 स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नश्र होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। मुकर्रर है मौलाना फैयाज अहमद जरूर, प्रोड्यूसर सलीम एजाज कपड़ा। ये इस प्रोग्राम की चौथी किस्त होगी। तो समीन ये थी तफसील आज हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। आपने अपने रेडियो सेट्स पर ट्यून किया आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। सुबह के 8:00 रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से अब ठीक 8:00 हिंदी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार

प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन लाइव शो पयाम सुब जारी है। न जाने कौन सा जादू है तेरे कुर्ब का ऐ दिल,
3: मिले जो तू तो सुकून खुशी और करार मिल जाए।
2: क्या बात है, बहुत खूब फजा बनाई आपने।
3: बिल्कुल शौकीन, आप जानते हैं कि जैसे कि हम सुबह से बात कर रहे हैं कि जब इंसान के अंदर एक सेहतमंद तंदुरुस्त दिमाग होता है तो यकीन जानिए कि वो कोई भी टारगेट, कोई भी गोल लाइफ का अचीव कर सकता है। क्योंकि दपा जू और जहान और, अगर अच्छी सेहत है तो इंसान के साथ हमेशा अच्छा होगा और अच्छी अच्छी चीजें अचीव कर सकता है। लेकिन अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो दिमाग है वो तंदुरुस्त
2: रहे और सुहाना रहे।
3: बिल्कुल
2: जी तस्लीमा, आपको मालूम है आज 25 मई है।
3: बिल्कुल है।
2: तो ये दिन दुनिया भर में थायराइड डे के तौर पे मनाया जाता है। यानी ये दिन मनाने का मकसद लोगों में थायराइड की बीमारियों, इनकी अलामत और इलाज के हवाले से शऊर पैदा करना है। क्योंकि थायराइड हार्मोन का सीधा ताल्लुक हमारे जिस्म की तवानाई, मेटाबॉलिज्म और जहनी सेहत से होता है।
3: बिल्कुल शौकीन, चूंकि हमने आज बात जहन की सफाई की और सेहत पर, जहन के सेहत पर हम बात कर रहे हैं, माइंड डिटॉक्स बहुत जरूरी है। हम जब

0: बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन
1: जी बिल्कुल
0: बहुत जरूरी है बॉडी को डिटॉक्स करना, लेकिन जितना जरूरी है बॉडी को डिटॉक्स करना उतना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि माइंड को डिटॉक्स करें। थायराइड का मुतवाजन न होना भी इंसान में शरीर जहनी तनाव चिड़चिड़ापन और थकान पैदा करता है। जहां हम अपने जहन को साफ करने की बात कर रहे हैं वहीं आज यानी 25 मई को दुनिया भर में थायराइड का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। थायराइड हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो अगर बिगड़ जाए तो इंसान बिना वजह थकन सुस्ती और जहनी तनाव का शिकार हो जाता है।
1: बिल्कुल सही।
0: यानी हम देख सकते हैं हिलाल की हमारी जो जिस्मानी सेहत और हमारी जहनी सेहत है किस तरह बेक वक्त एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही। तो इस ताल्लुक से चूंकि जैसे कि हम अपने सामीन को बता चुके हैं कि वर्ल्ड थायराइड डे है, इस ताल्लुक से हम थोड़ी देर के बाद एक एक्सपर्ट डॉक्टर से भी बात करेंगे और अपने सामीन तक इस तकलीफ के हवाले से जो जानकारी है अच्छी खासी जानकारी उन तक पहुंचाएंगे। फिलहाल
0: एक नगमा
1: सुनते हैं।

0: छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे, क्या खूब नगमा था ये।
1: बिल्कुल, ऐसे गाने, ऐसे नगमे और ऐसी मोमेंट्स हमें छोड़नी चाहिए अपने पीछे जिनको लोग भी गुनगुनाते रहें साथ साथ, हमारा दिमाग और दिल भी।
0: जी तस्लीम, हमने भी नगमे से पहले हमने भी एक मौजू छेड़ा था और वो था थायराइड के हवाले से, जो कि आज 25 मई है और वर्ल्ड थायराइड डे है, और इस ताल्लुक से हमने बात की है एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यह है डॉक्टर मंजूर अहमद तेरी, एसोसिएट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट, सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपका वेलकम है।
2: वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया।
0: मंजूर साहब, आज वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है और इस हवाले से हमारा जो आपसे पहला सवाल रहेगा वो यही है कि थायराइड की जो तकलीफ है, इसके इब्तदाई अलामात या जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सामीन को मुख्तसर तौर बताइए।
2: जी देखिए, अक्सर व बेशतर जब किसी को थायराइड की तकलीफ होती है तो इसमें दो किस्म की तकलीफें होती हैं। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। जो कॉमन एलिमेंट है वो है हाइपोथायराइडिज्म, जो की 11% पॉपुलेशन में पाया जाता है।
0: जी जी,
2: अक्सर वो बेशतर इसका कोई अलामत होती नहीं है, कोई सिम्टम नहीं होता है, लेकिन जब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है तो तब कहीं जाके कुछ अलामत आ जाते हैं, जैसे कब्ज का होना, जल्द का खुशक होना, वजन बढ़ जाना, चेहरे पे सूजन आ जाती है या फूला हुआ चेहरा लगता है। जब हम पेशेंट को दूर से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको शायद थायराइड की तकलीफ है। आवाज का भारी हो जाना, जो खुरदरी जल्द और रूखे बाल हो जाना, हमारी मसल यानी पठों की कमजोरी, पठों में दर्द, खिंचाव, सख्ती, जो हमारी खवातीन है उनमें के हैज के आयाम जो होते हैं उनका मामूल से ज्यादा आ जाना या बेकायदा हो जाना, बालों का पतला होना या गिरना, दिल की धड़कन थोड़ा सा धीमा हो जाना, जिसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, ये सब अलामत हो जाते हैं जिसमें, और सर्दी ज्यादा महसूस करना, कोल्ड इंटॉलरेंस।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो थायराइड की बीमारी है, अक्सर ऐसे बीमारों में देखा गया है कि वो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, तो क्या इस बीमारी की वजह से ये डिप्रेशन बीमारों में आ जाती है या फिर डिप्रेशन की वजह से इस बीमारी का खतरा रहता है?
2: नहीं, इस थायराइड की जब तकलीफ होती है तो इसका इफेक्ट हमारे दिमाग पे भी पड़ता है, इसमें याददाश्त की कमजोरी हो जाती है और अक्सर देखा गया है कि अफसुर्दगी आ जाती है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, और पेशेंट को अक्सर तशवीश रहता है और मिजाज में इनके बेदिली और उदासी छा जाती है। और अक्सर जब हम पहले देखा करते थे जबकि आयोडीन की डेफिशिएंसी हुआ करती थी तो बहुत सारे बच्चे जहनी तौर कमजोर होते थे, उमूमन जो उमूमी सहनियत है उसमें कमी आ जाती है और तवज्जो और यकसुई की भी कमी इसमें आ जाती है और याददाश्त की भी कमजोरी देखी गई है थायराइड की।
0: जी डॉक्टर साहब, ये आपसे एक और सवाल यहाँ से पूछना चाहेंगे, इसकी वजूहत क्या है, ये जो तकलीफ है वजूहत क्या, आम वजूहत क्या है इसके?
2: देखिए, आम वजूहत ये है कि जैसे एक कंडीशन होती है ऑटो इम्यून कंडीशन, जिसमें खुद की बॉडी जो है वो अपने आजा के खिलाफ काम करती है, वो एंटीबॉडीज बना के इस थायराइड ग्लैंड को खत्म कर देती है, जिसको

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोर्ट के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह इतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड

0: मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ़ में दिए जाते हैं, जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं, जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से BJP के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में BJP कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। NTA ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। NTA ने उम्मीदवारों को ताज़ा जानकारी के लिए उसकी बाज़ाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहान के जवाब के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी

0: साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ साहिली आंध्र प्रदेश झारखंड उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के एडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सामीन, सुबह के 8:45 हो चुके हैं। नश्रोता स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुनक्कद होने वाली एक पुरविकार तकरीब पर इस साल के पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पद्म एजाजात मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं, जो तीन जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पर मुश्तमिल हैं। इस साल मरकजी सरकार ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि इस साल पद्मश्री पाने वालों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर शफी शौक और समाजी शख्सियत ब्रिजलाल भट्ट भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत अपने नौजवानों से निहायत पुरउम्मीद है कि वो इस मुल्क को नई बुलंदियों तक परवाज कराएंगे। वो श्रीनगर में एनसीसी के जहर एहतमाम एक खसूसी कौमी यकजहती कैंप में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए एनसीसी कैडेट्स के साथ बात कर रहे थे।
1: कैंप में हिस्सा ले रहे सभी कैडेट्स इतिहास के महज दर्शक नहीं हैं, बल्कि इतिहास के निर्माता भी। देश के हर कोने से आए युवा चेहरे, जिनकी भाषाएं अलग हैं, जिनकी परंपराएं भिन्न हैं, जिनकी जीवन यात्राएं अलग अलग परिवेशों में पली हैं, वह मुझे भिन्न नहीं बल्कि एक रूपता में दिखाई पड़ रहे थे। और इसलिए मैं मानता हूँ भारत जैसे विशाल और महान देश के लिए विविधता ये कोई चुनौती नहीं है, बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
0: इस मौके पर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वाट्स भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर अला उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और दीगर कई अहम लीडरों ने बड़गाम में एक मासूम बच्ची के बहिमाना कत्ल के वाके पर रंजुगम और तशवीश का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट

0: ने इस सिलसिले में पुलिस सरबराह से बात करके सीनियर अफसरों को इस सहने की बारीक बीन तहकीकात करने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने यकीन दहानी कराई है कि इनकी सरकार कसूरवारों को करार वाकई सजा दिलाने के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को हर मुमकिन ताउन करेगी। पीडीपी सदर ने इस वाके पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के वाकात का सुनते ही एक इंसान लर्ज जाता है। समाजी बहबूद की वजीर सकीना येतू ने कल मुतासरा कुंभों के घर जाकर सरकार की तरफ से ताजियत का इजहार किया। आज जिलहजे की 8वीं तारीख है। इन दिनों लाखों की तादाद में आजमीन हज सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में हज की सआदत हासिल करने के लिए मौजूद हैं। वाजह रहे कि मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है और आज आजमीन किराम अहराम बांधे हुए पूरा दिन मिन्ना की वादी में गुजारेंगे। कल 9 जिलहजा को नमाज फजर के बाद आजमीन हज के रुकन अजीम वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। और अब रेल से मुतलिक ये खबर। शुमारी रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में माल बर्दारी में आसानी पैदा करने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में आज आला सुबह करीब 6:45 जम्मू से मुंबई के लिए एक खसूसी पार्सल वैन में 12 टन ताज़ा चेरी की पहली खेप रवाना की गई। इस इकदाम से जम्मू कश्मीर का मेवा कम से कम वक्त और ताजगी की हालत में मुतलका मंडियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेजों में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा,
1: स्टूडेंट्स ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें।
0: श्रीनगर समेत वादी के कुछ इलाकों में आज सुबह सवेरे से ही गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। इस दौरान कल शुमाली कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद जालाबारी भी हुई है। अब दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज़।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वे 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: शौकीन तारीख के हवाले से हम बात करते रहते हैं और आज 25 मई है। 25 मई की एक और खासियत है आज के दिन की, आज हज 2026 के अहम आयाम का आगाज हो रहा है, यानी 25 मई 2026 8 ज़िलहिजा से हो रहा है। आज की सआदत हासिल करने वाले लाखों फरजंदान इस्लाम आज मिना की जानिब रवाना हो रहे हैं और ये जो 8 ज़िलहिजा है योम तरविया यानी हजाज कराम मिना में क़याम करते हैं, तरविया इस नाम से भी ये जाना जाता है। 9 ज़िलहिजा यानी 26 में योम अरफा वकूफ़ अरफात हज का सबसे अहम रुकन है और 10 ज़िलहिजा ईदुल अज़हा मनाई जाती है और ईदुल अज़हा का जो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है वो कुर्बानी का फ़लसफ़ा है। हिला
0: जी बिल्कुल, देखिए आपने एक अच्छे मौजू की तरफ जो है हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है। बात अगर इस फ़लसफ़ा हज की करेंगे तो हज न सिर्फ एक जिस्मानी सफ़र है बल्कि ये एक तज़किया नफ्स, अल्लाह की किबरियाई का एतराफ और आलम इस्लाम के इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत है।
1: भाईचारे की बात करें तो ये दिन गरीबों, मिस्किनों और ज़रूरतमंदों की मदद करने और उनको खुशियों में शामिल करने का बेहतरीन मौका है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो गरीब है, जिसको ज़रूरत है, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी है तो थोड़ा सा उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अपने भाई बहनों को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए और सबसे बड़ा ये कि जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं वहाँ पर देखिए, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों में ये खुशियां जरूर बांटिएगा और देखिएगा कोई जरूरतमंद तो नहीं है जिसको आपके हेल्प की जरूरत है, अगर है तो उसकी जरूरत।

0: जी समीन, आप ने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन और लाइव मॉर्निंग शो जारी है। तो बात हम कर रहे थे इस कश्मीरी नाच से पहले कुर्बानी के फलसफे के हवाले से। तो तस्लीम कुर्बानी का असल फलसफा महज जानवर ज़बह करना नहीं बल्कि ज़बह अजीम इस जज्बे का नाम है जो इंसान के दिल में अपने रब के लिए पैदा होता है। इसके चंद बुनियादी पहलू होते हैं जिनका जिक्र वक्तन फवक्तन हम लोग सुनते रहते हैं
1: करते रहते हैं और करना चाहिए हमको इसका जिक्र, क्योंकि ये जो फलसफा है ये सिर्फ इस दिन तक महदूद नहीं है बल्कि ये फलसफा हमारी जिंदगी की एक अहम बुनियाद है। देखिए अश्चकरण जानवर जबा तो अमुक मतलब छा कि ये जबूक जानवर सू वातान अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पर्सनली नौजबिल्लाजालिक अगर हम ऐसे बात करें तो तुम्हें पर्सनली जरूरत ये जबूक जानवर
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
1: नहीं है ना। तो इसके पीछे भी यही फलसफा है कि इस कुर्बानी करान पन्ने लाइक अगर वारिया पोस वोल
0: बिल्कुल
1: या मतलब सरमायदार पन्ने सरमायुक हिस्स करान कुर्बान तो ये कुर्बान कर तम लुकन तम वात अमिच जरूरत वातन तुड़ तुम अमिच जरूरत आपान गोड़ गो दुपहर के खन ब्रो ये कुर्बानी हूं जानवर अमुक जो गोश्त है ये तकसीम होना चाहिए। तो इसमें हमें दिया गया है एक तरतीब दी गई है कि कित पोच ये बांटन सारे मज मगर अत मे ये बे ख्याल थान कि यह गो सारी ब्रो तम तम वात पॉसिबिलिटीज कि शायद मा आसन तिमन दुफार में
0: बिल्कुल नहीं होता है
1: ये रन्ने खतर माज गरस में
0: बिल्कुल सही,
1: क्योंकि ऐसे भी लोग हैं हम कंसिडर नहीं करते हैं या मतलब इमेजिन हेकान कर गरीब नफर ये गरस में सून रन खतर मगर आस पास तम लोग वो क्या जरूरत कह मा यी वन खतर कि बुस मतलब या जरूरत
0: मंद
1: ये हमने देखना है कि कौन

0: आकाश मनी सुनिए देखिए प्राइम रजिस्ट्रेशन की आवाज मीडियम व्यू और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. आज जो पंचम में हिलाल आज अगर इस कशीर हिंस कात करो आज सूफी बुजुर्ग यम आज तम हवाल तो सन कशीर वारिया सरमाईदार तो आज यम जन सन सूफी पॉइंट सूफी बुजुर्ग फकीर हाजी अब्दुल अजीज साहब तिहज आज डेथ एनिवर्सरी मनाना.
1: बिल्कुल, तो कश्मीर जैसा कि आपने पहले ही अर्ज किया और ऋषियों की आमाज का है, तो इस हवाले से फकीर अब्दुल अजीज हाजी के बारे में अगर आपको बताएं तो ये श्रीनगर के आली कदल इलाके में 1892 ईस्वी में तवल्लुद हुए. इनके वालिद का नाम खलील मोहम्मद हाजी था. गिलकारी के काम से वाबस्ता

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली, रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी श्रीनगर प्राइमरी स्टेशन मीडियम विद द FM स्पिट समीन असवंगोड़े के अजुक सूफी सदा प्रोग्राम चुमबनी मशहूर सूफी पॉइंट अजीज हर सब नस्पेट एंड ब्रो आई से साथी फहमीदा और सलाम भी अर्ज किया जो आप तक भी पहुंचा होगा। मैं माइक करूंगी फहमीदा के हवाले, लेकिन उससे पहले सूफी सदा आप तक पहुंचा के जाऊंगी। मिली बुजुर्ग प्रोग्राम सूफी सदा, सूफी सदा छो आज पेश अजीज हर सब नस्पेट तो हम जन सह नजीक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर पेशकार गुलाम रसूल आखुन सब तो सन एडिटर अमे प्रोग्राम समीना नबी।

रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रे दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नशर सब्दान।
2: सभी तो ऐसे बोजान प्रोग्राम सूफी सदा आज एक प्रोग्राम उस मबनी हाजी अब्दुल अजीज ने जिंदगी पेठ मबनी तो पेश करे इस गुलाम रसूल आखून ये आकाशवाणी श्रीनगर सोन दो ये मालान बुजे हो। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय ठीक 10:30 हुए हैं। पयाम सुबह प्रोग्राम नशरियात अभी जारी है, तो आइए सुनते हैं हमारा लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमारी साथी तस्लीमा के साथ।

जी फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सामान आपको बताना चाहेंगे पयाम शुभ प्रोग्राम में हम अभी यहीं पर है, आपके साथ है। और मैं जानती हूँ इस वक्त आपको यही सोच रही होंगी कि आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं कौन है, इनके बारे में भी आपको बताऊंगी। आज हमने अपने मन की सफाई, अपने अंदर के कचरे और जहनी डिटॉक्स की बात की, तो मुझे महसूस होता कि हमारा जो अंदर का ये कचरा, हमारी मनफी सोच जब बाहर निकलती है तो ये सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को ही बर्बाद नहीं करती, बल्कि यही जो कचरा है हमारे माहौल को भी आलूदा कर देता है। हमारे अंदर की बेचैनी बाहर आकर मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज की शक्ल इख्तियार कर लेती है बहुत सारे रूप में। और जब बात क्लाइमेट चेंज और माहौल की हो तो हमारे अपने कश्मीर के एक ऐसे ही एनवायरमेंटल हीरो का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिनका काम हमारे पूरे खित्ते के लिए एक सरमाए की हैसियत रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर माजिद फारूक साहब की, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमे डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग में बतौर सीनियर साइंटिस्ट और क्लाइमेट चेंज सेल के इंचार्ज के बतौर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के एक अहम रेगुलेटरी बॉडी जे एंड के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के वहां पे बतौर सेक्रेटरी भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जो बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया के तहत काम करती है। इनके साथ आज का ये एक घंटा जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि

0: आज हम किसी आम मौजू पर बात नहीं करने जा रहे, बल्कि आज हम अपने कश्मीर की मिट्टी, यहाँ के माहौल, यहाँ के नायाब जंगली हयात और क्लाइमेट चेंज जैसे संगीन मौजू पर गहरी गुफ्तगू करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज में अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए।
1: शुक्रिया आपका भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने लोगों से बात करने के लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कश्मीर अपनी खूबसूरती, अपने मौसम और अपने जंगली हयात की वजह से पूरी दुनिया में जन्नत कहलाता है, लेकिन हालिया बरसों में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के मौसमी तब्दीली एक बहुत बड़ा बल्कि संगीन चैलेंज बनकर सामने आया है। मेरा आपसे प्रोग्राम में पहला सवाल यही है कि जब हम क्लाइमेट चेंज का नाम सुनते हैं तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है, और साइंसी नुक्ते नजर से देखें तो इस वक्त हमारे कश्मीर के माहौल, यहाँ के ग्लेशियर्स और खसूसन हमारे नायाब हिरन हांगुल, जिसके बारे में आपने बहुत काम किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसकी जिंदगी पर इस मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात पड़ रहे हैं, और क्या वाकई हमारे जंगल जो है या जो हमारा हांगुल है खतरे में है?
1: बिल्कुल, जो मौजू है आज का बिल्कुल रेलिवेंट है आज के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से जो हमारे हालात चल रहे हैं। आपके सवाल में 2-4-5 सवाल है, मैं पहले क्लाइमेट चेंज के हवाले से शुरू करूंगा। क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत ही एक अहम मौजू है। अब आप देखते हैं कि हम यहाँ बात करते रहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट एक्चुअली में ये क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है? कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अचानक से बर्फबारी हो जाती है, हम बोलते हैं अच्छा क्लाइमेट चेंज तो हो ही नहीं रहा है, ये ठीक है सब कुछ। कभी हमारा मौसम आजकल आज के दौर में आप देखिए बहुत बेहतरीन चल रहा है,
0: तो स्पेशली आम इंसान में चीजें मतलब वो इनके थ्रू गुजरता है तो उसको समझ नहीं आता, साइंटिफिक नुक्ते उसके समझ से बाहर होते हैं।
1: तो ये दो किस्म की चीजें हैं। पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि वेदर किसे हम कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं। तो पहले इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि वेदर क्या है। वेदर ये है कि जो एक हफ्ते में, 10 दिन में जो चेंजेस आती है, किसी सीजन में जो चेंजेस आती है, तो उसमें कितनी बारिश होगी, उसमें कितनी धूप होगी, उसमें कितना हमारा विंड पैटर्न चेंज होगा, वो वेदर कहलाएगा जो शॉर्ट टर्म होगा। बट अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें तो ये लॉन्ग टर्म हमेशा बोलते हैं कि जैसे पिछले 30 साल में क्या पैटर्न रहा है दर्ज हरारत का, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। जैसे मैं जो हमने रिसर्च किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, अगर हम 1980 की बात करें और हम आज की बात करें तो तकरीबन 1.5 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसे हम कहते हैं कि 1.5 डिग्री बढ़ गया, ना कि ऐसे कि एक दिन में जब कभी दो चार डिग्री बढ़ जाता है या 2-3 डिग्री कम हो जाता है विंटर्स में तब हम बोलते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया। वो क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, वो वेदर पैटर्न चेंज होते हैं या क्लाइमेट वेरिएबिलिटी उसे कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो होता है ये एक लंबे अरसे के तहत हम मॉनिटर करते रहते हैं कि क्लाइमेट में क्या तब्दीली आ रही है, ओवरऑल ग्लोब में क्या टेम्परेचर में चेंज आ रही है, क्या रेनफॉल में चेंज आ रही है, वो जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में तब हम कहते हैं कि यस क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम कश्मीर की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स रहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला इंडिकेटर जो है वो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं। तो ये कम से कम दर्जा हरारत, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं, तो कम से कम दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, तकरीबन 1.6 डिग्री वो भी बढ़ गया है, और जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो भी तकरीबन 1.5 डिग्री पिछले 30-40 सालों में बढ़ गया है। यानी कि आज से पहले 1.5 डिग्री टेम्परेचर एवरेज में कम हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में यही टेम्परेचर 1.5 डिग्री ज्यादा हो गया है। इसके बढ़ने से बहुत सारे अब नुकसान आते हैं। पहला इम्पैक्ट होता है रेनफॉल को, कि जब हम देखते हैं कि बारिश का पैटर्न चेंज होता रहता है, हम देखते हैं कि बारिश जो है, आप देख रहे होंगे कि आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि बारिश कभी भी गिर रही है, कहीं पे भी गिर रही है। जो हमें 15 दिन में बारिश मिल रही थी वो हमें सिर्फ 1 ही घंटे में मिल जाती है। तो ये होते हैं इंडिकेशंस कि हमें पता लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी आप देखिए, क्लाउड बर्स्ट हमें कुछ साल पहले पता ही नहीं था ये टर्म क्या है, तो आज हमारे जहन में क्लाउड बर्स्ट बिल्कुल बैठ गया है कि वहां भी क्लाउड बर्स्ट हो गया, यहां भी क्लाउड बर्स्ट
0: हो गया, आम सी बात हो गई है।
1: बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स है, हमारे चश्मे स्प्रिंग्स वो खुश्क होने लगे हैं, हमारे दरियाओं में पानी जो है वो कम होने लगा है, ग्लेशियर्स हमारे वो सिकुड़ने लगे हैं। रिसेंटली न्यूज भी आई थी थाजवाज ग्लेशियर का, आपने देखा होगा।

0: है ग्लेशियर जो यहाँ हमारे लोगों का खेती या हमारे जो बागात है उनको जो पानी मैसर करते हैं, तो वो जब पानी वहाँ पे रहेगा नहीं तो वो इम्पैक्ट जो होंगे डायरेक्ट लोगों पे होंगे. तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. इसके अलावा ट्री लाइन में शिफ्ट होता है, जैसे एक जंगल है, जंगल एक हद तक अपना फैलाव करता है, उसके ऊपर एक अल्टीट्यूड होता है, एक हाइट होती है, उसके ऊपर वो नहीं जाता है. तो अब वहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर उसको बन रहा है, वो ऊपर जा रहे हैं, जंगल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे ग्रासलैंड्स जो है जहाँ पे माल मवेशी चरने जाते हैं वो श्रिंक हो रहे हैं. तो यहाँ से फॉरेस्ट्स वहाँ की तरफ एक्सपैंड हो रहे हैं, नॉट ओनली एक्सपैंड, वहाँ पे एलियन स्पीशीज आ रही है, कोई और स्पीशीज जो ओवरटेक कर रही है नेचुरल फॉरेस्ट्स को. तो ये हो रहा है. तो हमारे पानी के ज़राए जो है, पानी के वसाइल, वो कम हो रहे हैं, वो श्रिंक हो रहे हैं. इसके अलावा वेटलैंड्स हमारे, आपने देखा होगा कि अगर हम एनालिसिस करें सैटेलाइट पिक्चर्स के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं, तो पुरानी जब सैटेलाइट पिक्चर्स देखते हैं, 1960 की पिक्चर है मेरे पास, तो जब हमने वो देखा तो हमने देखा कि पूरा कश्मीर वैली वॉज फिल्ड विद वेटलैंड्स. इतने सारे वेटलैंड्स यहाँ पे थे कि बहुत पानी पानी एवरीवेयर, इट वॉज वाटर. लेकिन आज के दौर में तकरीबन 50% जो वेटलैंड्स है गायब हो चुके हैं, सूख गए हैं. मैं ये भी टर्म यूज नहीं करूंगा, सूख गए हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. तो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये बैलेंस मेंटेन करता है, जब हमारे पास पानी के जखायर होंगे तो टेम्परेचर बैलेंस करता है. अब हमें यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, क्या हम लोग क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं? हम लोग क्लाइमेट चेंज यस हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे सब लोग हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट तो करते हैं, बट ओवरऑल ये बड़ी मुल्कों की वजह से, जैसे US हो गया, चाइना हो गया, वहाँ से जो गैसेस निकलते हैं उनकी इंडस्ट्रीज से, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है. तो वो एटमॉस्फेयर जब गर्म हो जाता है उसी से गवर्न हो जाता है कि टेम्परेचर कहाँ कितना बढ़ेगा, बारिशें कहाँ कितनी होगी. हमारा आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, आजकल आप सुनते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है. मैं अपने ऑडियंसेस को बताऊंगा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है. समंदर में जाके कहीं पे, आप मानिए तुर्की के आसपास, वहां पे जो है समंदर में भाप बनती है, हमारा जो बादल है वहां पे बनता है, फिर वहां से वो मुंह करके यहाँ आता है, यहाँ पे उसको ठंडा माहौल मिल जाता है और एकदम से वो बारिश यहाँ पे बरसा देता है. यानी कि आप देखिए कि हमने कुछ नहीं किया, ये वहां पे गर्म हो गई हवा, वहां की गर्म हवा ने बारिश बनाई और हम पे डाल दी. अब जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है, ये हम लोग यहाँ लोकली नहीं कर रहे हैं. हमारा भी कंट्रीब्यूशन है बट बहुत कम कंट्रीब्यूशन है. हम इम्पैक्टेड है लोग, हम दूसरे के किए कराए का हम भुगत रहे हैं. तो हमें देखना है कि हम अपना जो है आसपास का एरिया जो है वहाँ अगर क्लाइमेट चेंज से होगा इम्पैक्ट्स होंगे. जैसे अब हमने देखा कि लैंडस्लाइड्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं, ये हमारे इम्पैक्ट्स रहेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो हमने अपने आप को तैयार करना है कि ऐसे इम्पैक्ट्स को से कैसे बचा जाए. जैसे नाले हैं उनको ट्रेन करना है इस तरीके से कि जब भी क्लाउड बर्स्ट आए कि वो फ्लड इस तरह से चला जाए कि पानी आके निकल जाए. लैंडस्लाइड्स में ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे सिविल इंजीनियरिंग करनी है ताकि वहाँ जो लैंडस्लाइड्स है बहुत कम से कम लैंडस्लाइड्स वहाँ पे हो जाए. तो दीज आर द इम्पैक्ट्स. और जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, हॉर्टिकल्चर लैंड है, इनमें ऐसे ऐसे स्कीमें लगानी है, ऐसे ऐसे एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज लगानी है हमने ताकि हम उससे बच पाए. उसके बाद आपने जंगल की बात की. अगर सरकारी तौर पे देखा जाए तो जो रिपोर्ट हमारे पास है, इनफैक्ट जंगल का जो एरिया है वो इंक्रीज ही हुआ है, हमारा डिक्रीज नहीं हुआ है. दो देयर माइट बी सम रिपोर्ट्स के कहीं कहीं एनक्रोचमेंट्स होती है, आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, वो स्मगलिंग, वो अगेन इट्स अवर ग्रीड जो हम अपनी लालच की वजह से वो वहां से निकालते हैं.
1: आजकल जंगल में एक और खास चीज देखी जाती है कि अचानक चुनार लगा, अचानक आग जाहिर हो जाती है.
0: बिल्कुल,
1: तो वो भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है.
0: बिल्कुल, वो एक डिस्ट्रक्शन है, बट हमने थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पाया कि लार्जली ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, उसमें ज्यादा जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज को हम नहीं देंगे. हम
1: लोगों की जिम्मेदारी है,
0: थ्रो फॉरेस्ट्स बढ़ गई है, इस वजह से जो है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर बढ़ने लगे हैं. इसके बाद आपने बात की हांगुल की. बिल्कुल, हांगुल जो है
1: उसको बचाने के लिए आपका जो रिसर्च है और आपकी जो कोशिशें हैं वो आया है, वो हर कश्मीरी के सामने है. तो उसको आपने बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए, तो किस हद तक वो कोशिश कामयाब हुई है? और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे वाकई हांगुल के वन स्पीशीज खत्म होने की चांसेस हैं?
0: मैं ये तो नहीं कहूँगा ख़त्म होने के चांसेस है, और भी रीजंस है जो हंटिंग पोचिंग रहता है.

0: एंड उसका हैबिटेट जो है वो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो ज़्यादा रीजन्स है एज कम्पेयर टू, बिकॉज वी हैव बीन अडेप्टिंग. अगर आप देखेंगे कि फ्रॉम अर्ली मैन एरा, अर्ली मैन के टाइम से हम लोग क्या है कि अब आपको याद होगा जब हम हिस्ट्री की वो बुक पढ़ते थे तो उसमें वो अर्ली मैन दिखाया जाता था, व्हील पे वो काम करता था. तो धीरे धीरे ही मैन स्टार्टेड इन्वेंटिंग चीज़ें, जैसे जैसे लोगों ने इन्वेंट किया चीज़ें धीरे धीरे धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड पे वो शिफ्ट हो गए, उनने एग्रीकल्चर बनाया, फिर फैक्ट्रीज पे आ गए, अब रोड्स पे आ गए, आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ गए. तो हम तरक्की के रास्ते पे हैं, वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. और इस डेवलपमेंट में जो है वो क्या लूज हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट हमारा लूज
1: हो रहा है, जो कि सस्टेनेबल इंसान के लिए सांस के मुतरातिफ है.
0: बिल्कुल. तो ये जो हांगुल है, जैसे हम लोगों पे इम्पैक्ट्स है, तो ये भी जानवर हैं, तो इन पे भी इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के. टेम्परेचर इनको तंग करता है, बारिशें इनको तंग करती है. तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे,
1: मुनाफिक माहौल नहीं मिलता है इनको. हाँ,
0: ये भी अपनी जगह अलग कहीं छोटी सी जगह पे, मतलब जैसे पहले इनका वास्ट एरिया था, धीरे धीरे सिकुड़ सिकुड़ के कहीं एक छोटी सी जगह पे.
1: जो जंगलों में आग लग रही है इस वक्त, हम तो कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, वो एक अलग एक सब्जेक्ट है, वो भी नहीं होनी चाहिए डिफॉरेस्टेशन. उसके रीजन क्या है, कैसे होते हैं, उसको फिलहाल हम टच नहीं करेंगे. जो ये आग लग रही है कंटिन्यूसली, हम देख रहे हैं कि हमारे जंगल जल रहे हैं, अचानक से चीज पिछले जंगल चौसा नार लोग, बैक टू बैक ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं?
0: मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे कि ये ड्यू टू लोगों की मूवमेंट ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जंगलों में, आमदोरफ ज़्यादा बढ़ गया है. इस वजह से अभी तक जो हमने देखा इंसिडेंसेस, हमने ये नहीं पाया, हमको कंक्रीट एविडेंस रिसर्च से ऐसा नहीं मिला कुछ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. तो ह्यूमन मूवमेंट जो हो रही है,
1: बढ़ गया मूवमेंट जो बढ़ गया फॉरेस्ट्स के लिए, फॉरेस्ट्स की तरफ, इसकी मेन कॉज क्या है, वो क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ रहा है? मतलब जंगलात जो हमारे हैं, मेडिसिनल जो हमारी दवाइयां निकलती है वहां से, बूटियों के लिहाज से मतलब हमारे जंगल रिच है, जो ग्रीन गोल्ड है उसके हिसाब से हमारे जंगल रिच है, इनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है. और आज का इंसान बहुत ही डेवलप्ड हो गया है, तो जंगल ये लकड़ अन्न खतर या का उतना ज्यादा मुदाखलत नहीं है. तो फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों मुदाखलत एक आम इंसान की जंगलों की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा खमियाजा उठाना पड़ रहा है?
0: देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा कि हम डेवलपमेंट के रास्ते पे हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड.
1: ओके,
0: ठीक है. तो हम डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं. ये मैं ही हूँ,
1: रोकना भी नहीं है.
0: जो ये मैं ही हूँ जो चाहता है कि मेरे मोहल्ले में स्कूल आए, ये मैं ही हूँ जो चाहता है कि मेरे मोहल्ले में
1: हॉस्पिटल आ जाए, पक्का रोड आ जाए, हर कोई फैसिलिटी आ जाए.
0: सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मटेरियल की जरूरत है. ये मटेरियल कहाँ से आता है? ये अर्थ से आता है, ये हमारे नदी नालों से आता है, ये हमारी इंडस्ट्रीज से बनता है. तो ये साथ में एक इकोसिस्टम है जो चलता रहता है.
1: बट
0: नीड ऑफ द आवर इज के ये जो सारा इकोसिस्टम है ये सस्टेनेबल हो. अगर हमें दरियाओं से रेत बजरी निकालनी है तो ये सस्टेनेबल हो, ये इलीगली ना हो. ये हम अगर हमने 1 मीटर की इजाजत दी है, ये 3 मीटर ना हो, 7 मीटर वो ना खोदे. तो ये एनफोर्समेंट, ये जो है ऐसी चीजें, ये लगाने की जरूरत है. डेवलपमेंट को हम नहीं रोक सकते, बट डेवलपमेंट को सस्टेनेबल कर सकते हैं.
1: सेफ में करना, सेफ जोन में रखना है खुद को, अपने माहौल को, तब करना है.
0: बिल्कुल. हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनने चाहिए, हमारे घरों के साथ सोलर सिस्टम्स लगने चाहिए, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए. तो वो एक सस्टेनेबल तरीका रहेगा, ताकि हम लोग नेचर पे कम डिपेंडेंट रहें.
1: ओके, जैसे किसी कारोबार में नफा और नुकसान का हिसाब रखने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो ये एनवायरमेंटल जो बैलेंस शीट है कश्मीर का, इससे क्या मुराद है?
0: देखिए, ये बहुत एक अहम मौजू है. अगेन, हम लोग घर में हिसाब करते हैं. जब भी हमारी सैलरी आती है तो हम सैलरी का हिसाब करते हैं कि अब इस महीने इतनी सैलरी आएगी, अब इसमें इतना खर्चा करेंगे, इतना सेविंग करेंगे
1: जी.
0: इसी तरह नेचर भी है, हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसे ही है. उसमें हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास तनख्वाह होती है, लेकिन वो अपनी होती है जो हम कमाते हैं. लेकिन ये जो है, ये बिना कमाया हुआ, ये गॉड गिफ्टेड हमको है. जैसे फॉरेस्ट्स हमारे बहुत रिच, ये एक एसेट है हमारे पास. हमारे दरिया, हमारे ग्लेशियर्स, दीज आर एसेट्स विद अस. हमारे वेटलैंड्स, दीज आर एसेट्स विद अस. हमारे एग्रीकल्चर लैंड, हमारा क्लीन एयर, ये हमारे पास एसेट्स है. अब हम इस एसेट्स के साथ क्या कर रहे हैं कि हम इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के लायबिलिटीज की तरफ ले जा रहे हैं. एयर पोल्यूट हो रहा है, ठीक है, हमारी गाड़ियाँ एयर पोल्यूशन कर रही है, हमारा जो है

0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन के साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.81 MHz पर. हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर माजिद फारूक साहब, सीनियर साइंटिस्ट. और भी बहुत बड़ा प्रोफाइल है इनका, जितनी तारीफ करें उतना कम है. और माहौल के लिए तो ये हमारे एनवायरमेंटल हीरो हैं. इनसे अपनी बातचीत मजीद आगे बढ़ाते हुए सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगला सवाल जो मेरा है, हम अक्सर सोचते हैं कि माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज हुकूमतों या साइंसदानों का मसला है, एक आम इंसान का इससे क्या लेना देना है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है?
1: एकदम से शन करते हैं कि नहीं हमें क्या है इसके साथ, हो जाएगा, सरकार कर लेगी. बट मैं
0: साइंसदानों का काम है
1: साइंसदानों का काम, यस, सॉल्यूशंस देना है. मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं कि ये चीज़ आप करो, बट करना हमने है घर में बैठ के. मैं गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कैन सपोर्ट सर्टन थिंग्स, गवर्नमेंट कैन एनफोर्स सर्टन थिंग्स, बट अल्टीमेटली बात हम लोगों पे ही आती है. हम एक प्रपोर्शन देख लेते हैं कि सरकारी मुलाजिम कितने हैं, लोग कितने हैं, और या साइंसदान कितने हैं, और उसके अगेंस्ट बाकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है. हम भी वही लोग हैं, ये भी वही लोग हैं. तो ये जो है, क्या करना होता है कि हम ये सोचते हैं ना हमेशा कि साइंसित क्या आएंगे. एक पॉलीथीन, मेरे घर से दो पॉलीथीन निकले, दूसरे घर से तीन पॉलीथीन निकले, तीसरे घर से दो पॉलीथीन निकले, तो इंडिविजुअल लेवल पे ये पॉलीथीन जो हर जगह से निकल के आ रहा है,
0: कतरा दरिया बन जाता है.
1: ये पर्शियन वर्ड है, कतरा शोरे दरिया. तो ये जब दरिया बनता है, तो ये बहुत एक ढेर बन जाता है,
0: सैलाब
1: आ जाता है. तो वो जब कचरा एक जगह जमा होता है, फिर वहां से स्मेल आती है, वो स्मेल हमारी ही नाखून तक वापस पहुंच जाती है. और वही कचरा जो है, उसका जो केमिकल्स है, लीचेट है, वो नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, हमारी सॉइल में चला जाता है. तो ये एक साइकिल है. जो हम गलतियां करते हैं वो हम पे ही लार्जली फिर वापस इम्पैक्ट करती हैं. तो ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत नज़रिया है हम सब का. हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. अगर मैं आज स्टार्ट करूं अपने घर से थैला लेके निकलूं, एक प्लास्टिक के बजाय अपना क्लॉथ बैग ले लूँ, अपना शीशे का बोतल एक ले लूँ, रादर देन जो बाहर से मैं बिस्लरी खरीदूँ. क्यों हमें चाहिए कश्मीर में बिस्लरी, मुझे बताइए. हमारे इतने वसाए,
0: हमारा इतना पानी का, पानी के वसाए जो इतना प्यारा खूबसूरत हमारा ये जो जराया है, हमारे पानी को, इसकी तारीफ यहाँ कर आकर जो सयाह करते हैं वो बड़े शौक से ये पानी पीते हैं और कहते हैं इसका जायका कहीं और नहीं मिलता.
1: बिल्कुल, छोटे छोटे एक्शन हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं. लाइटें बंद कर ली, फैन बंद कर लिया जब हम उस रूम से निकले, ये छोटी छोटी एक्शन है, ये बहुत बड़ी बन जाएंगी फिर, अगर हम सब इंडिविजुअल लेवल पे

0: एक्शन स्टार्ट कर लें, तो ये बड़े लेवल पे जब हम सोचेंगे इसका, तो ये अल्टीमेटली इट विल लीड टू ए गुड फ्यूचर, गुड एनवायरनमेंट। मैं आज ये सोचूं कि नहीं, आज मैं सड़क पे कचरा नहीं फेंकूंगा, अच्छा आसान महलस मज प्लाट कह खाली सारी तथि मज त्रा क्यों ना हम आज से ये सोचे कि ना अस त्रो नी ठ अच्छा वो अगर तथा त्रावान पत तथा दिवान नार पत तथा जालान तम पे कम केमिकल कि वापस गंदर वी डोंट नो हम वो बायोलॉजी वो केमिस्ट्री जो है इसकी वो हम समझ नहीं पाते हैं कि अच्छे तुला जोल है छोटे जोल मगर सो छोट वातान हर एक गरस तमिक दह युत वातान तथान लक लक बच्चे तथ बुजर्ग आसान तिमन बुजर्गन तम क्या वात अमिक असर तिन जहन सोचा
1: इनफैक्ट जवान तिमन तिमन टॉक्सिक लेवल जो हम क्रिएट करते हैं अपने माहौलियात को बिगाड़ कर वो टॉक्सिक लेवल वो सांस वो हवा हमारे अंदर जाकर हम ही बर्बाद कर देती है और हम कहते हैं कि अच्छा नासिद की है।
0: बिल्कुल, और खास तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौलवी साहिबान को, हमारे जो जुमा का खुतबा होता है वहां पे अगर एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाए लोगों को, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को बताया जाए कि हमारे प्रॉफिट एनवायरनमेंट के रिलेटेड उन्होंने कितना काम किया है, कितना बोला है, इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि कुल लागुन सवाब त्रेश
1: सवाब
0: तो
1: आबस मक्रियारिकुलरली
0: चीज अगर अस हर जुमा बोजना है मौली सब ये रोजा वारे असल अवेयरनेस
1: प्रोग्राम हम उस प्लेटफॉर्म से भी बेटर कर सकते
0: बेटर कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक शायद मेरे हिसाब से पहुंच पाएगा इन रादर देन के हम इंडिविजुअल लेवल पे कहीं पे स्कूल में जाके प्रोग्राम करते हैं, कहीं पे कॉलेज में, कहीं पे रैली करते हैं। उससे बेहतर ये होगा कि हर मस्जिद में अगर इसका एक कैंपेन चलाया जाए कि हम एनवायरमेंट पे भी 5 मिनट स्पेंड करेंगे, एनवायरमेंट पे भी बात करेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चेयरमैन अभी वसायलन खतर सरखे जमीन खतर
1: फिलहाल हमें मुहैया है, फराहम ये है ये प्लेटफॉर्म। हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक जितनी अच्छी बातें इस हवाले से है वो सारी पहुंचाने की कोशिश करें, अवेयर करने की कोशिश करें उनको। अच्छे बनाए प्लास्टिक की थैलियों को लेकर मुझे लगता है मेरे बचपन से बात हो रही है, मगर थकान चुने इस वनान वनान तो न चीज थकान ही अनान आना आत गोस में बास मे बासान कुन कुन साथ के आत गोस बैन लगन सरकारी लेवल पर ठीक कि ये घोषणा यूँ नहीं है। मतलब हमारे मतलब आसपास ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ये होनी ही नहीं चाहिए थी हमारे आसपास।
0: यस, इनफैक्ट हम सब लोग यही चाहते हैं। मे पे बचपन याद ये साथ मैं बुढ़बा बहुत सोचान टूर हेत माज अन्नि पुजस नश बल गुस पत टूरस मज रटा माज मगर आज मे शर्म बह टूर हेत ग
1: लड़ाई कर दुकानदार
0: सोन सोसाइटियल माइंड सेट चेंज गुमत सोफिस्टिकेशन को सोन कंज्यूमरिज्म बढ़ोमुत हेको नम चीजन पे वापस गई ट्रेडिशनल चीजन को।
1: क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि इस प्लास्टिक को ही हम बैन करवा लें कहीं से?
0: प्लास्टिक का बैन ऑलरेडी है, देखिए बैन
1: कैसे आता है,
0: कितने रूल्स है, कितने लॉज है, कितना पॉलीथीन पकड़ा जाता है देर। आप अगर देखेंगे ना कितने ढेर हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कितना ढेरों का पॉलीथीन पड़ा हुआ है जो सीज किया हुआ है, बट अगेन इलीगली स्मगल होता है। यस, अगर सोर्स से ही ये खत्म हो जाए, फैक्ट्रीज में बंद हो जाए बनना बाहर से, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ वेलकम स्टेप।
1: दरअसल उसमें सवाल पूछने का खास वजह अत बात कौन कि अस करो कोशिश ये तथ लेवल पे मतलब गवर्नमेंट लेवल पे बैन कर तम से कर मगर तम बावजूद तो तोतम कहें योतम आम इंसान पे माइंड मज बैन करे अपने घर से इसको बैन करे खुद इसको बैन ना करे।
0: बिल्कुल,
1: तो आम इंसान
0: सोचना पड़ेगा कि हम एक थैला लेके साथ निकले, 2-3 थैले रखें साथ में। इनफैक्ट अगर आप अभी भी आप जाएंगे मेरी गाड़ी बाहर है उसमें आप देखेंगे 3 bags विल बी क्लॉथ बैग्स विल बी देयर। तो क्लॉथ बैग्स आई यूज्ड कैरी, मेरी शीशे की बोतल रहेगी पानी की, घर से मैं पानी लाऊंगा। तो मेरा वो हैबिट बन चुका है, मे बी इट्स नॉट बिकॉज कि चलो मैं बोलूंगा एनवायरमेंटल कॉन्शियस हूँ, मैं एक डिपार्टमेंट को परटेन करूँ, आई शुड रिप्रेजेंट एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो वो एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं कहूँगा कि लोगों को क्या है कि ऐसे अडॉप्ट करना है, अपना बिहेवियर नज करना है टुवर्ड्स एनवायरमेंट
1: बिहेवियर। प्लास्टिक के अलावा और क्या करना चाहिए एक आम इंसान को जो ये क्लाइमेट चेंज में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, इन चीज़ों को हम अपने लेवल पे जैसे कि डेवलपमेंट इसको डेवलपमेंट जो आता है लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नॉट ओनली फ्रॉम हम अपने कश्मीर की ही बात नहीं करेंगे पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन अगर इस पन्नीस कशीर में पूछो ये ऐसे जराए वसायल तीटा कि ऐसे को किम बचे मगर एक आम इंसान क्या है वनी तो प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्लास्टिक यूज करने के अलावा क्या बेहतर तम इकदाम तम चीज़ हम

0: टाइम टू टाइम जो है बहुत अच्छी एडवाइसेस आती रहती है, क्या उनके क्रॉप को कैसे बचाना है,
1: जी
0: कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करनी है, कब कौन सी खाद यूज़ करनी है, कब कौन सी दवाई छिड़कनी है, या वो शीट्स के बारे में भी आई
1: हाँ,
0: बिलीव
1: एक्चुअली
0: कि
1: मैं ये
0: है।
1: शीट्स के बारे में ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये नहीं एक चीज़ है, झालाबारी जब होती है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है, पी कस्पिट आसन शरीर फलाई तो हम साथ ही 5 मिनट या 3 मिनट या 10 सेकेंड अंग सांचा ससर इफराइज पैमान पत्थर
0: बिल्कुल
1: मेवा जो है वो निकलता नहीं है, और उनकी जो मेहनत है पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाती है,
0: बेकार
1: और
0: चली
1: उनका
0: जाती है।
1: बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, इसके लिए सफ़र करना पड़ता है। तो ये जो शीट्स का जो है टेक्निक, ये मुझे लगता है कि यहाँ के फार्मर्स के लिए होना चाहिए।
0: बिल्कुल, बट ये बड़े हमारा चूंकि हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है, ये बड़े पैमाने पे होना है, तो इसमें मेरे ख्याल से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स विल कम अप, फार्मर्स को कैसे ये चीज़ सजेस्ट करेंगे और
1: सजेस्ट करेंगे
0: कैसे
1: और
0: हेल्प
1: उनको
0: करेंगे,
1: कैसे
0: उनको
1: अवेयर करेंगे इस
0: अवेयर
1: बारे में,
0: करेंगे कि इस बारे
1: बहुत
0: में
1: बड़ी
0: कि
1: बात है कि
0: कैसे हो
1: उससे भी।
0: सकता है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: यहाँ रुकते हैं एक नगमे के लिए, समीन नगमा हम पेश करेंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे कि ये हमारे आज के गेस्ट की खास खास जो है उनके लिए खास पेशकश है, उन्हें ये बहुत पसंद है नगमा। चलिए आपको सुनाते हैं आपका पसंदीदा नगमा।

0: समीन, हम आज हमारे खास मेहमान के साथ बातचीत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से. ये क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, ये सीनियर साइंटिस्ट हैं और भी बहुत कुछ. बहुत सारे एजाजात से इनको नवाजा गया है, क्योंकि यहाँ हमारे पास कलील वक्त रहता और हम सारी बातें यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर इनका शुक्रिया करते हैं कि आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया. सर, आप अपने महकमे में रिमोट सेंसिंग और GIS यानी जदीद सेटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. हम अक्सर खबरों में ये अल्फाज सुनते हैं, लेकिन एक आम इंसान नहीं जानता है कि ये क्या है. तो हमारे सामने को आसान अल्फाज में समझाइए कि सेटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या है. आप इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आसमान से हमारे कश्मीर के जंगलात, ग्लेशियर्स और हमारे माहौल पर कैसे नजर रखते हैं? ये टेक्नोलॉजी क्या हमारे माहौल को बचाने में मददगार साबित है?
1: जी बिल्कुल. हमारा डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का नाम है इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग. तो खैर, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे तो बात हो गई
0: जी.
1: तो अब ये रिमोट सेंसिंग क्या होता है? तो यूजुअली विद इन डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होता है कि रिमोट सेंसिंग जो है डिपार्टमेंट क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं. रिमोट सेंसिंग, जैसे हमारे घर में टीवी होता है, तो टीवी को हम एक डिवाइस से कंट्रोल करते हैं जिसको रिमोट बोलते हैं. तो लिटरल मीनिंग में रिमोट बोलते हैं दूर से
0: जी.
1: दूर से कंट्रोल करना,
0: कंट्रोल
1: तो उसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल. इसी तरह ये टर्म भी है रिमोट सेंसिंग, दूर से सेंस करना चीजों को. तो हम क्या करते हैं कि हम दूर से ही सेंस कर लेते हैं चीजों को. जब हम अपनी मोबाइल फोन की तरफ देखते हैं, उस पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं जब हम वो पढ़ते हैं, तो वी आर रिमोटली सेंसिंग द वर्ड्स ऑन अवर फोन. बुक पढ़ते हैं तो रिमोटली सेंसिंग वर्ड्स ऑन द बुक. तो इसी चीज को, इसी टेक्निक को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग. अब हमारे जो महकमे में है, इसमें डिफरेंस क्या है? हम इसमें सेटेलाइट से मॉनिटर करते हैं, सेटेलाइट से देखते हैं. आसमान में एक आंख लगी हुई है सेटेलाइट वाली, जो कंटिन्यूअसली फोटो खींचती रहती है अर्थ की. तो वो जो फोटो खींचती रहती है वो हमारे पास इन ए फॉर्म ऑफ पिक्चर आती है
0: जी.
1: तो आपने सुना होगा पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. ठीक है, तो वो वहां से हमको बहुत वर्ड्स का पता चल जाता है. जैसे कि अगर हमें बोला जाता है कि किसी पहाड़ का सर्वे करो, तो वो सर्वे करने में मैन्युअली मेरे ख्याल से 1-2 महीने लग जाएंगे. लेकिन जब हम ये सेटेलाइट पिक्चर अपने कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में डालने के बाद वो पूरे एरिया का व्यू हमको एक टॉप लुक मिल जाता है. तो उसको हम डिकोड करते हैं और धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में कि इसमें जंगल कितना है, इसमें एग्रीकल्चर लैंड कितना है, इसमें अल्पाइन पास्चर कितना है, इसमें रिवर्स कितने हैं, इसमें घर कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं. तो ये सारा चीज जो है सेटेलाइट से पिक्चर आती है और हम अपनी लैब में बैठ के इसको अपनी टेक्निक्स की वजह से इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इंफॉर्मेशन. तो जो सेटेलाइट पिक्चर आती है उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, और जिसको जिस तरीके से, जिस पैटर्न से हम इसको, टेक्निक से इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इंफॉर्मेशन, उसको ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस बोलते हैं
0: जी.
1: तो अब हमें पता होता है कि जंगल से पिछले साल कहाँ पे था, अब इस साल कहाँ पे होगा, अगले साल कहाँ पे है, अगले साल की सैटेलाइट इमेज वो दिखाएगी हमको
0: जी.
1: तो हमें मैन्युअली जाके फील्ड में मेजरमेंट नहीं करना पड़ता. हम सैटेलाइट पिक्चर ही लाते हैं अगले साल की भी, और वो मेजर हम कर लेते हैं कि फॉरेस्ट कहाँ पहुंचा, एग्रीकल्चर लैंड कितना पहुंचा. तो इसका वसादा डायरेक्टली इसरो से है. हमारा जो रिमोट सेंसिंग सेंटर यहाँ पे है
0: जी.
1: तो जितना भी इसरो काम करता है सेटेलाइट वाला काम जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में होता है
0: जी, जी.
1: हमारे लैंड यूज मैप्स बनते हैं, लैंड यूज प्लानिंग होती है, तो वो वहां पे बनता है. मास्टर प्लान हमारा श्रीनगर सिटी का बना, तो वो सेटेलाइट पिक्चर पे अभी आज की सिचुएशन क्या है, कहाँ पे चेंजेस लाने की जरूरत है. अगर ये हमने चेंज कर दिया, उसको कंप्यूटर में मॉडल कर सकते हैं हम कि अगर हमने ये चेंज कर दिया तो ये कैसा दिखेगा, ये कैसा बनेगा, कहाँ एनवायरमेंट पे प्रेशर ज्यादा है, कहाँ एयर पोल्यूशन ज्यादा है, ये हम सेटेलाइट पिक्चर्स की मदद से सारा निकालते. तो इस सारे प्रोसेस को रिमोट सेंसिंग और GIS बोलते हैं. तो इस वजह से हमारे महकमा का एक विंग है जहां रिमोट सेंसिंग और GIS. इसमें हमने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे मैंने कहा

0: प्लान किया हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को इनपुट्स देते हैं हम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को इनपुट देते हैं, आपका जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनको आबी वसाइल के बारे में बताते हैं, ग्लेशियर कितना श्रिंक हो रहा है हर साल वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते रहते हैं, ग्लॉफ आने के चांसेस कहाँ पे है, या आपका लैंडस्लाइड्स प्रोन एरियाज कौन से हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम एक ही गो में इस सेटेलाइट पिक्चर से निकाल सकते हैं। तो ये काम है रिमोट सेंसिंग विंग का। तो इसमें हम पब्लिकेशंस करते हैं, हमारा जो डेटा जनरेट होता है वो हम ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पे रखते हैं ताकि लोग या डिपार्टमेंट उसको यूज कर सकें। तो साथ में एनवायरमेंट विंग जो है वो प्लान बनाती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाती है, जैसे कि स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, के क्लाइमेट चेंज के हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्कीमें हैं जिसको अलाइन कर सकते हैं एक्शंस में, ऐसे एक्शंस में ताकि क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, उसके इम्पैक्ट्स रिड्यूस करने में कितने सफल होंगे हम अगले 5 सालों में। तो ये हर 5 साल 10 साल बाद हमारा स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनता है, ये भी हमारा डिपार्टमेंट बनाता है। डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्या एनवायरमेंटल प्लान रहेगा, हाउ दे आर प्रपोजिंग के वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे किया जाए, वाटर रिसोर्स को कैसे बचाना है, पॉन्ड्स लेक्स उनके एरिया में जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उनका जो प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना ताकि उसको बचाया जाए। तो प्लान्स पॉलिसीज सब कुछ है हमारे पास, बट अल्टीमेट एम जो है कि एक विल होना चाहिए लोगों में भी कि अपना जो रिसोर्स है उसको बचाने का, ना कि उसको एनक्रोच करने का। हमने देखा होगा वेटलैंड्स हमारे बहुत सारे हैं, तो वेटलैंड्स पे देखिए आप आजकल कितने घर बन रहे हैं
1: जी।
0: वो पहले पुराने जमाने वेटलैंड्स हुआ करते थे, तो आजकल उसी जगहों पे हम अपने घर बना रहे हैं, तो क्यों
1: किसी का घर छीन के परिंदों का घर छीन के
0: तो
1: जो परिंदे हमारे इस एनवायरमेंट को बैलेंस करते हैं,
0: एहसास ये इमोशन जब तक हम अपने अंदर नहीं लाएंगे कि हम किसका बैलेंस कहां से तवाजुन खराब कर रहे हैं, तो तब तक शायद हम एनवायरमेंट को नहीं बचा पाएंगे। हम इसी रोड पे चल रहे हैं, इसी डिस्ट्रक्टिव रोड पे आगे शायद बढ़ते जाएंगे, बट कभी ना कभी जब ये सर के ऊपर से हमारे जब ये बैलेंस
1: मजबूर हो जाएंगे फिर करने के लिए, तो शायद तब वक्त नहीं होगा।
0: जब ये जो पहले हमने बात की बैलेंस शीट के बारे में, जब हमारे एसेट्स खत्म हो जाएंगे और लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तब हमारे माइंड में ये शायद आ जाएगा कि यस नहीं अब तो लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है, अब हम बचाएंगे, बट तब
1: बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो आप काविश कोशिशें आपकी हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो कितना आगे हम आ चुके हैं, जैसे आपने प्लानिंग की, आपने सारा कुछ ये मैप्स वगैरह बनाए, या फिर आपकी जो कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रक्शन से निकल रहे हैं या फिर वापस डिस्ट्रक्शन की ओर ही जा रहे हैं।
0: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिस्ट्रक्शन से निकल रहे हैं हम, अभी तो फिलहाल वी आर ऑन डेवलपमेंटल पाथ, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अभी डेवलपमेंट और होनी है, डेवलपमेंट होगी, बट यस मैं ये क्या कहूँगा कि हमारी जितने डिपार्टमेंट की जितनी कोशिशें रहती हैं वो कोशिशें इसी डायरेक्शन में रहती है कि जो भी डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल हो। अगर कोई माइनिंग कर रहा है तो माइनिंग में आप प्लांट्स लगाओ, जब जगह माइनिंग कर रहे हो उसको पूर्ति वापस कैसे की जाए उस एरिया को, उसका जो अगर किसी आसपास के खेत में पानी कम हो रहा है वो पानी जो है वो कैसे उसको बचाया जा सके, ऐसे सॉल्यूशंस हम उनको देते हैं। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स या जो ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास लाते हैं, माइनिंग वाले, इंडस्ट्रीज वाले, हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, IITs के प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े एजुकेशनल टाउनशिप्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इनमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने एनवायरमेंट बचाने के लिए क्या क्या करना है। तो वो बचाने का मैकेनिज्म अगर सही से चल पाए तो वी आर होपफुल कि आगे हम शायद
1: उसके चल पाने के लिए मेन चीजें क्या है, कौन सी ऐसी मेन चीज है जो उसको मतलब लाइक जो फ्यूल की तरह काम करे, उसमें उस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने में फ्यूल का काम कौन सी चीज करेगी जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, आप मैं एक मतलब जो एक्सपर्ट है वो एक आम इंसान।
0: जो है पहले तो एनफोर्समेंट होना चाहिए
1: कि
0: जितने भी हम उनको कंडीशंस देते हैं या जो भी हम सजेस्टिव मेजर्स करते हैं उस पे एनफोर्समेंट होना चाहिए। जैसे एनफोर्समेंट होगा तो वो हम लोग हम ही में से वो लोग भी हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमने प्लांटेशन करनी है, हम रुजू करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमें बताइए इस एरिया में कौन से अच्छे प्लांट्स है वो लगाएंगे। हमें अगर एंटी इरोजन लगाने, कहीं पे चेक डैम लगाना है कि पानी का बहाव रोकना है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, तो हम जल शक्ति डिपार्टमेंट को रुजू करेंगे, उसमें उनको सारे प्रिस्क्रिप्शन हमने दे दिए होते हैं। तो ये कलेक्टिव टीम एफर्ट होगा, इट इज नॉट कि सम एक पर्सन को फ्यूल देगा, फ्यूल वही होगा जो मैंने कहा
1: कलेक्टिवली हम उसको फ्यूल दे सकते हैं,
0: फ्यूल दे सकते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके काम करना
1: और आम इंसान

0: दाचीगाम ले जाके अपने बच्चे को 30 साल बाद, तो अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड छोटे छोटे स्टेप्स अपने घर से शुरू करें।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ पर तशरीफ लाए और इतनी सारी कीमती बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की। हम उम्मीद करेंगे कि फिर एक मुलाकात आपके साथ करेंगे। फिलहाल हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता, तो समीन आपसे इजाजत लेना चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि दिमाग का कचरा भी दूर कर दीजिए, अपने माइंड को डिटॉक्स कीजिए और साथ साथ अपने माहौल को भी डिटॉक्स कीजिए, क्योंकि माहौल का तहफ्फुज कोई एहसान नहीं बल्कि हमारी अपनी बका का वाहिद रास्ता है। खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपने आसपास के माहौल को खुश रखिए, क्योंकि जब हम अपने माहौल को खुशहाल बनाएंगे तो आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी। आपसे लूंगी यहीं पर इजाजत, अगली मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अगला सफर आपका फहमीदा के साथ, अल्लाह हाफिज़।
2: शुक्रिया तस्लीमा। सभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पयाम सुबह और आप समाप्त कर रहे थे इंटरैक्टिव लाइव शो तस्लीमा के साथ। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, हमारा अगला ऐलान सुनिए। ये आकाशवाणी श्रीनगर समीन का बजे 3 मिनट सपैद वली बोजो उछा करते रो पेश करन हबीबुल्ला डार निशेती हिंसे थी। ये मनीष बोजो कलामी अजीज हर्ज़।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय दिन के 12 बजने वाले हैं। लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी दिल्ली खबरों के लिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में

0: उसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समय दिन के एक बजने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा

0: किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heatwave conditions during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.1% higher in afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 845 points to 76,260, while the Nifty climbed 244 points to 23,964 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है. मीडियम में 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा आप हमें सुन रहे हैं एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. समय 1:10 हुए हैं. समाप्त करें एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग.

0: नंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे

0: खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।

0: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
2: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुर्जोर्जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुर्जोर्जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।

0: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ?
7: अरे बचो बचो बचो,
8: फटने जा
7: रहा है।
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
9: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
10: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
10: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
10: सर।
3: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
10: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
10: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके।

0: एक है, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
0: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
7: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
7: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
7: फायर।
5: सर ये टैंक तो गया।
7: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर ये टैंक तो गया।
7: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष।

0: बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: समय अब समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयारकर्ता स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाइए।
6: कास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
7: बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय 1:50 होने वाले हैं। पेश है आकाशवाणी दिल्ली से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल योम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। यह अवार्ड लोगों के गिराकद्र कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, समाजी काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वांग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा है कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बहरुल काहिल खत्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदनशीं होने के नाते इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में खास तौर पर दिलचस्पी के हामिल हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए।
3: हमें दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसलिए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हमारा इश्तराक इंतहाई अहम है। आवाम से आवाम के दरमियान रابطے भी हमारे ताल्लुकात में खसूसियत के हामिल हैं क्योंकि इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी समझबूझ में मदद मिली है और इन्हें एक खास मकाम हासिल है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनेकाद में बार बार होने वाली कोताही

0: पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह बात मायूस कुन है कि इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाजे से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जांच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरखास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज्यादा मजबूत और खुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असर नौ तरतीब देने के लिए पिछले साल की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम सरकार ने आज रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया। मस्कूरा बिल में एक से ज्यादा शादियां करने पर पाबंदी आयद करने और लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की बात कही गई है। मस्कूरा बिल में कहा गया है कि इसका इतलाक आसाम में रहने वाले किसी भी दर्ज फहरिस्त कबीलों पर नहीं होगा। शादी के लिए मस्कूरा बिल में मर्दों की कम से कम उम्र 21 साल और ख्वातीन की 18 साल तय की गई है। कानूनी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए बिल में शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की तजवीज़ है जो गुजारे भत्ते, मीरास और शरीक हयात के लिए दीगर कानूनी तहफ्फुज़ के ताल्लुक से अहमियत का हामिल रहेगा। रियासत के काबीना वजीर अतुल बोरा ने वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐवान में यकसां सिविल कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस तरह यह बिल पेश करने वाली शिमाल मशरक में आसाम पहली रियासत बन गई है जबकि मुल्क में बीजेपी की सरकार वाली यह ऐसी तीसरी रियासत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज रहें। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हुकूक खत्म नहीं होंगे।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: अजीम इनकलाबी शख्सियत राज बिहारी बोस के यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि राज बिहारी बोस ने अपनी गैर मामूली तंजीमी सलाहियत के जरिए आज़ादी की जद्दोजहद में एक नई तवानाई पैदा की। मगरबी एशिया में इलाकई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासी के हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन हज मिना में जमा हो रहे हैं। आजमीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफर का आगाज किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तलबिया का वर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आजमीन फरीजा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। ऑस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाजाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा ये सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर्स के बजाय शहर ऑस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दी जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और CBI से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायात के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। آسام اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا گیا ہے۔

मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

सामीन अगमे आप समात कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है, हमारा अगला ऐलान सुनिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर समिंदू जडाई बजे वाली वो जो छकर तेरो

در جوانی حاصل عمر من آدانی گذش آنچه باقی من نبودو

जय हिंद फौजी भाइयों, फौजी भाई आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमीद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे, आपकी दुआओं से हम सब भी खैर आफियत से हैं। तो दोस्तों करते हैं बिना कुछ कहे आज की इस निशस्त का ये संगीत भरा सफ़र शुरू और सुनते हैं इस खूबसूरत से नगमे को।

जी फाजी दोस्तों, ये थी आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और पद्मिना कोल्हापुरी की। दोस्तों आइए सुनते हैं अगला नगमा महेंद्र कपूर और सुरेश वारिकर की आवाज़ों में। ये नगमा

0: जी फौजी भाइयों, ये नगमा आपने सुना महिंदर कपूर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में ये नगमा।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।

हजुर भाइ, यो सुन्दै अब साहिर लुधियानवीका लेखा यी नगमा फिल्म धूल का फुल से और आवाज है महिंदर कपूर की।

0: निफाज भाइयों, फिल्म धूल का फूल से आपने सुना ये नगमा साहिर लुधियानवी का लिखा और आवाजें थी महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। दोस्तों, नगमों का सिलसिला जारी है, हम लौटते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे।

0: कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी। 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
0: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
0: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
0: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में। 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: फजवाइयों प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों आइए अगला नगमा सुनते हैं फिल्म धर्मकांटा से, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

फाजी भाई और ये नगमा आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आइए अगला नगमा सुनते हैं, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ, फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के और बोल है मजरू सुल्तानपुरी के।

दोस्तों आइए सुनते हैं ये और एक नगमा मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना।

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सामिन 3:50 हो रहे हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कियादत में बांडीपोरा में निकाली गई मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा। शुरका ने मनुष्यात के खात्मे का दोहराया अज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमा तालीम के कई आर्जी मुलाजमीन में बाकायदगी के तकर्रुरनामे की तकसीम। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम इस साल के पद्म अवार्ड करेंगे अता। और मनासी के हज की अदायगी का सिलसिला आज से हुआ शुरू। अब पेश है खबरों की तफसील। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मनुष्यात की लान

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी अज का पहाड़ी प्रोग्राम सुनने वालों को जहांगीर अहमद खान का सलाम कबूल होवे। सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखैर आफियत होसो। असती भी हमेशा यही दुआ होंगी कि अस्ते सामीन जड़े अस्ते कदरदायन हमेशा खुश ते खुशहाल रवेन। सामीन सड़कों के तहफ़ का आलमी हफ्ता अज यानी 5 मई को इख्तिताम पजीर होया और यह हफ्ता पूरी दुनिया विच मनाया जाता है ताकि लोगों विच ट्रैफिक कवानीन महफूज ड्राइविंग और सड़कों तय एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर पैदा किए गए है। सामीन यह हफ्ता आम तौर तय मई के महीने विच मनाया जाता है और 5 मई को इख्तिताम पजीर होता है। इस मुहिम का मकसद सड़क हादसात विच कमी आना और इंसानी जान को महफूज बनाना है। सामीन अज की तेज़ रफ्तार जिंदगी विच सड़कां तय गड्डियां की तादाद लगातार बढ़ती जुलती है। इस दे नाल नाल ट्रैफिक हादसात विच भी काफ़ी इजाफा दहे जुल रहा है। दुनिया भर विच हर साल लखां लोग सड़क हादसात विच मौतू दे मुहिब जुल गिंदन जदकि बेशुमार लोग जख्मी या माजूर हो गिंदन। इन्हां हादसात की मुझ सारी वजूहात हैं जिन्हां विच तेज़ रफ्तारी लापरवाही ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नशे की हालत विच ड्राइविंग करना मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना हेलमेट ना लेना या सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करना शामिल हैं। सामीन महफूज सड़कां कसा भी तहजीब याफ्ता मुआशरे की अलामत होंदी हैं। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वह ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे गड्डी चलाने वेले अपनी रफ्तार तक काबू रखे मोबाइल फोन के इस्तेमाल थी परहेज करे और हमेशा सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे। इसके अलावा दो पहिया गड्डिया मसलन स्कूटर बाइक वगैरह चलाने वेले हेलमेट का बाजाबता इस्तेमाल करे। सामीन सड़कों के तहफ़ का आलमी हफ्ता असा को यह पैगाम देता है कि इंसानी जान सब की कीमती है। अगर असी एहतियात सबर और जिम्मेदारी का मुजाहरा करा तो सड़क हादसात विच काफ़ी कमी आ सकती है। असा को चाहिए कि असें आप भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करा और दोयों को भी इसकी तरगीब देवा ताकि एक महफूज और बेहतरीन मुआशरा कायम हो सके। तो सामीन गल गौर भी कर स प्रोग्राम दे शुरू विच पेश है तुसां वास्ते एक सदाबहार गीत। ता सदाबहार आवाज़ है सैयद मोहम्मद इकबाल मलनगामी दी।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 4:20 होने वाले हैं। आइए पहाड़ी में खबरें सुनते हैं।

0: दा एद दौलिया।
1: युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
0: जम्मू कश्मीर को मुनशियादी लाथियों आजाद करने वास्ते 100 ध्याड़ियां ते मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं ते मुनशियात के ढांचे को खत्म करने ते इस लत विच फंसे नौजवानों की बाज आबादकारी वास्ते हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बिदतियों दूर रखने वास्ते लाजमी इकदाम के तालुक नाल एक समाजी कारकुन ते ताजर हाजी अब्दुल अहद सोन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करदे होया आख्या।
3: मंशा से दूर है कि अपनी जिंदगी ये बहुत कमजोर होती है और एक चीज है, इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है जो अपने बच्चों को थोड़ा गाइडेंस करे। देखिए जब वो वहाँ से आते हैं, वो कमरे में जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी है। और यहाँ जैंट के पुलिस जो है इसके लिए एक टीम बना रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे जैंट का पुलिस इतना अच्छा काम कर रहा है ग्राउंड में।
0: वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आज महकमा स्कूली तालीम बिच आरजी उजरतां ते काम करने वाले गांदरबल ते बांडीपुरा अजला दे वर्करां को इन्हां दी मुलाजमत बाकायदा होने दे तकरारनामे दिते। वजीर आला सुन उम्मीद जाहिर कीती जे मजकूरा मुलाजमीन तालीमी मंजरनामे बिच बेहतरी आने वास्ते लगन दे नाल काम करदे रहे सन। इस मौके ते वजीर तालीम सकीना इतू भी मौजूद आसी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन आखे है जे गुलमर्ग बिच गंडोला केबल कार सर्विस बिच तकनीकी खराबी थियों पिछे इसको आरजी तौर बंद किए गए थियों पिछे हालात ते सख्त नज़र रखे जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच उन्होंने सुन आखे जे फंसे दे सैलानियों को वापस आने वास्ते माहरीन की मदद नाल राहत कार्रवाइया जारी हैं। MLA बडगाम आगा सईद मुंतजर महदी सोन आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला दे नाल मुलाकात करके अपने हलका इंतखाब दी तरक्याती जरूरियात ते मुहर्रम दे सिलसिले बिच कीते जा रही तैयारियां दे बारे बिच उन्हां को जानकारी दिती। वजीर आला सोन अयाम मुहर्रम दे दौरान एजादारां को तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने का यकीन दुआलिया। कलस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन सोन भी वजीर आला उमर अब्दुल्ला दे नाल मुलाकात की। वाइस चांसलर सोन वजीर आला को यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमल ते तरक्याती इकदाम के बारे में भी तफसीली जानकारी दी। ये खबर तुसी आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन थियो सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ते DTH ते भी सुन सकते हो। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज़ बशीर सुन UT के कॉलेजों बिच दाखिले दे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को आखिया है जे वह दाखिले वास्ते कॉलेज ऑप्शन का ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करन ताजे उन्हां को किसी ना किसी कॉलेज बिच दाखला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करदे होया उन्हां सुन इस तालुक नाल आखिया।
4: मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे अपडेट हो जाएगा।

सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अज शामी राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली बिच मुनक्कद होने वाली एक पुरवकार तकरीब तै इस साल दे पद्म अवार्ड अता कर सन। पद्म एजाजात त्रै जुमरिया बिच त्रै पद्म विभूषण, पद्म भूषण ते पद्म श्री ते मुश्तमिल हैं। इस साल मरकजी सरकार सुन 131 पद्म अवार्ड्स दा ऐलान किया है, जिन्हां विच 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण ते 113 पद्म श्री अवार्ड शामिल हैं। काबिले जिक्र है जे इस साल पद्म श्री पाने वालियां बिच जम्मू कश्मीर नाल ताल्लुक रखने वाले मारूफ मायर तालीम प्रोफेसर शफी शोक ते समाजी शख्सियत ब्रिज लाल भट्ट भी शामिल हैं। अज जुल इजा दी 8वीं तारीख है।

0: अजय थ्यू मनाज के अज की अदायगी का सिलसिला शुरू होया है ते लखां दी तादाद विच आजमीन किराम सुन अहराम बद के अजय दा पूरा त्याड़ा मिना दी वादी विच गुजारिया। कल 9 जुलिजा को नमाज फजर थ्यू पिछे आजमी ने अज दे रुकने अजीम वकूफ अरफा वस्ते मैदान अरफात बिदिया ओसन। तैयोन रेल दे मुतालक एक खबर। शुमाली रेलवे सुन मुसाफरां दी सहूलियत दे नाल नाल जम्मू कश्मीर विच माल बरदारी विच आसानी पैदा करने वास्ते कई अहम इकदाम कीते हन। इस सिलसिले विच अज सुबह 6:45 दे नेड़े जम्मू थियों मुंबई वास्ते एक खसूसी पार्सल वैन विच 12 टन ताज़ा गलासां दी पहली खेप विदिया कीते गई। इस इकदाम नाल जम्मू कश्मीर दा मेवा काट थियों काट वक्त ते ताजगी दी हालत विच मुतलका मंडियां तोड़ी पहुँचने विच मदद मिल सी। सुप्रीम कोर्ट सुन नीट इम्तिहाना विच कड़ी कड़ी दी खामियां ते अफसोस दा इजहार करदे होयां आखे जे नैशनल टेस्टिंग एजेंसी सुन माजी दे पेपर लीक तनाजियां थी कोई सबक हासिल नहीं कीता है। जस्टिस PS नरसिम्हा ते जस्टिस आलोक अरादे ते मुश्तमिल एक बेंच सुन मेडिकल इंट्रेंस इम्तिहाना वास्ते NTA दी जाई कसै होर मोतबर एजेंसी दे इंतखाब दे बारे विच दायर कीते गई एक आरजी ते मरकज NTA ते CBI थियों जवाब तलब कीता है। अस्ता अगला बुलेटिन 5:50 ते गोजरी विच नशर कीते गए सी। इस दे नाल ही ए खबरनामा मुक गया। अल्लाह बेली।
1: आकाशवाणी हम श्रीनगर स्टेशन मीडिया व्यूज आता 8.8 मीटर तथा FM 71.5 मेगाहर्ट्ज़ सनपेट समय 9:73 सब दे वाले उच्छा करते रहो बोझो हबीबुल्ला डार निशातीत स्थिति करण पेश कलामी रफीक राज़।

0: समिंदु इसु छकरतु रोबोजन हबीबुल्ला डार निशाती तसई थी इस पेश करन कलामी रफीक राज।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम व्यू 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन 5:11 हो चुके हैं। समाप्त करें गोजरी प्रोग्राम।

अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज को गोजरी प्रोग्राम लेके हम थारी खिदमत माजिर हाँ। उम्मीद करा कि तुम बिल्कुल खैरो आफियत ना लवेंगा और अपनो मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुनता होगा। सामीन, रवायती ज़रात ते मुराद वो कदीम ज़रई तरीको है जिड़ो सदियां ते किसान इस्तेमाल करता आ रहे हैं। यो ज़रात ज़्यादातर इंसानी मेहनत, जानवरों की ताकत, बारिश को पानी और मकामी वसाइल पर मुनसर हुआ है। जदीद मशीना, कीमियाई खादा

0: जी सामीन, तमने नगमो सुनियो। सामीन, रवायती ज़रात हमारी सकाफत, तहजीब और दही जिंदगी को अहम हिस्सा है। यह हमारा बुजुर्गों का इल्म, तजुर्बा और कुदरत ना मोहब्बत की अक्कासी करे। अगर रवायती जरिए तरीका ना जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के ना मिलायो जाए तो पायदार ज़रात ना फरोग दितो जा सके और किसाना की ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके। आज हमारा प्रोग्राम में हम तमना एक इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं जिड़ा कि इसी रवायती ज़रात पर मबनी है। हमारा एक बुजुर्ग किसान जिड़ा बहुत सालों से कई दहाइयों से रवायती ज़रात करता आया है, उन्हें के ना रिकॉर्ड की होगी इंटरव्यू हम तारे तक पहुँचाऊँगा। हमारा आज का मेहमान है हाजी अलादीन खारी साहबुर और उन्होंने गल किए मोहम्मद यूनुस कालू खेल साहबुर ने।
1: मेरा सामने तशरीफ़ फरमाए हाजी अलादीन खारी साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब।
1: हाजी साहब तम बुज़ुर्ग भी हैं, एक तगड़ा ज़िम्मेदार भी तम रिया भी हैं, तो आज भी माशाल्लाह ज़िम्मेदारी के नाल थारी वापस की और किराए में लगा करे में लगा। सबसे पहला तम थोड़ा अपना बचपन का अहवाल दसेंगा, तम किस इलाका का रहने वाला है, इब्तदाई तालीम और तरबियत जड़ी है वह किस तरीके नाल हुई, तो उसके बाद हम अपना स्टाफ पे जो जिम्मेदारी इसकी तरफ हुआ।
2: जनाब अली, हम इलाका छतरगुल बाला तहसील कंगन के बिछड़े नाल
1: जी।
2: मारो रिकॉर्ड यू आवे कि 47 के बीच जन्म होयो,
1: ठीक,
2: जिसना डेट ऑफ बर्थ की हो जाए। तो उसके बाद जब हम थोड़ा बचपन में था तो उस वक्त मजहबी तालीम शुरू की
1: जी,
2: मुकामी मौलवी साहबों को आते, तो जिसके अंदर कुरान पाक का पहला सुपारा की तालीम शुरू करी
1: जी।
2: तो उसने बाद मौलवी सैद अमीर उस्ताद चक छतरगुल मरण वाला,
1: ठीक,
2: तो उनते हासिल की कुछ। उसने बाद मौलवी जमालद्दीन हाजी साहब इमाम हाई रियायत का
1: जी
2: छतरगुल पायम में नमाज जुम्मा पढ़ावे था और बच्चों तालीम भी दें था, उन को लाते कुरान पाक को कुछ सिपारा हासिल किया,
1: ठीक।
2: उसके बाद फिर स्कूल की तरफ रजू कियो।
1: उस वक्त थारा इस इलाका के बीच स्कूल में था?
2: हाँ जनाब, स्कूल नहीं था, इसके बीच कंगन के बीच स्कूल था,
1: ठीक,
2: स्कूल एक ही था कंगन के बीच और इतनी बस्ती भी नहीं बैठी, तो दुकान को दो त्रै में था खतरियाँ का,
1: ठीक।
2: तो उसने बाद फिर इस इलाका में मौलवी फकीर शाह उस्ताद जरा था वे श्रीनगर गया, एजुकेशन दफ्तर जो तो वो श्रीनगर का भी तो।
1: अच्छा,
2: तो उन्होंने दरख्वास्त पेश करी कि हमने स्कूल चाहिए छतरगुल बाला में,
1: ठीक।

0: तो मुख्तार उस वक्त टीचरां ने जी तनखा थी बहुत कम थी, कोई 60 रुपये टीचर की तनख्वाह थी।
1: जी
0: बाकी टीचर ने इनकार किया तो एक टीचर मोहम्मद इब्राहिम बम्बा था बेजात का, काशवान सलामबाद में रहे था,
1: जी
0: तो उन्होंने जिम्मो दियो कि हूँ आ जाऊंगो लेकिन मैंने मकई की रोटी वह
1: जी
0: और दूध वगैरह वह तो हूँ ड्यूटी दियूँगा दूध और मैंने कमरा होना चाहिए। फिर
1: ठीक
0: मौलवी फकीर शाह उस्ताद ने कमरों भी दी तो उसके अंदर 3 साल उर्दू तालीम हासिल की,
1: जी
0: तो इंग्लिश उस वक्त 6 छठी जमातें ऊपर बैठो।
1: ठीक
0: तो उसके बाद फिर ऐसा घर की मजबूरियों की वजह से स्कूल भी छोड़ना पड़े, तो
1: जी
0: फिर इतु जा गए कशनम्बल उडर गए बीच, मौलवी मीरा मद उस्ताद में था
1: ठीक
0: मीलू में तालीम हासिल करके आया था लाहौर थे उस वक्त,
1: जी
0: तो उन्होंने पास तालीम हासिल की। फिर मैं कुरान पाक पूरो
1: उस वक्त यानी थारी बड़ी खासी उम्र थी, 3 साल की
0: जी
1: थी हमने,
0: हाँ
1: तो यू फिर दोबारा जाकर पढ़ लो कारण की इजाजत, फिर डेरा का मसला, या कई लोग शर्म भी जाना कि नहीं होना बड़ा,
0: बिल्कुल,
1: तो किस तरह या शौक या किस तरह
0: ये
1: उसे किया?
0: शौक कुछ कुदरती मिना आ गई कि
1: ठीक
0: किताबों के अंदर आवे कि हर किस्म दा इल्म फरीजा, हर एक कसब जो है सीखना फर्ज है,
1: ठीक
0: लेकिन सबसे उला जो है वो दीनी तालीम सीखनी
1: ठीक
0: वो बेहतर है।
1: जी
0: तो फिर मेरे ख्याल हो गया, फिर मैं फिर किताबों दार तवज्जो हो गया, कुछ अरसों रहे हो मौलवी के पास, उसके बाद फिर वापस आ गया किताबों की तरफ तवज्जो की हो,
1: जी
0: और किताब मैंने उर्दू तालीम भी कुछ हासिल की थी। उर्दू तालीम जड़ी किताबों के अंदर
1: जी
0: वाह मैं शुरू की,
1: जी
0: और इंशाल्लाह अल्लाह का फजल का नाल इस वक्त काफ़ी किताब है मेरे को है।
1: यानी
0: और
1: तब ये मज़ भी तालीम फिर चिरकी उम्र में हासिल की,
0: जी
1: तो
0: जी
1: के इल्मों के फायदों मिले इंसान ना, फिर तब हम आज भी देखे
0: जनाब
1: ना बरादरी के
0: अली,
1: बीच, तब ना इज्जत के नाल निगाह नाल देखे जी।
0: इल्म को यू चीज रवाया कि इल्म ते इंसान ना पतो लगे कि यह दीन क्या चीज है और दुनिया क्या चीज
1: ठीक
0: है,
1: है
0: अदब और एहतराम के चीज है,
1: ठीक
0: तो जहालत क्या चीज है।
1: अच्छा
0: इल्म के नाल इस चीज को इंसान ना
1: अच्छा
0: पतो लगे कि अल्लाह ताला ने के फरमायो
1: जी
0: और अल्लाह का नबी ने के फरमायो, इस वास्ते है किताबों के अंदर आवे वाती उल्लाहु वाती उर रसूल,
1: जी
0: इताअत करो अल्लाह की और
1: अच्छा
0: अल्लाह का रसूल की।
1: सल्लल्लाहु
0: हर मजहब का लोग अल्लाह
1: जी
0: ताला ने पैदा किया, लेकिन अपना अपना हिसाब गना सब जरा बिठा उन्हें तालीम अपनी अपनी हासिल की।
1: जी
0: इलम जरूरी है
1: जी
0: सीखनो
1: जी
0: हर इंसान के वास्ते, क्योंकि इलम तो दीन और दुनिया दो ही चीज चलानी आसान हो जाए।
1: जी ते आजी अलादीन साहब यो थारो तालीमी सिलसिलो थो,
0: जी
1: ते
0: जी
1: उसके बाद खासो आसो तम समाजी काम भी करता रिया
0: जी
1: तम
0: बिल्कुल,
1: जी
0: इसके बीच सियासी काम भी की हो, हालांकि सियासी वर्कर भी रहे हूँ तो कोई 18 साल,
1: ठीक
0: उसके बाद
1: लोका की ग्राई लोका की खिदमत
0: खिदमत की,
1: जी
0: लोगों का काम किया। उसके बाद 2010 तक मैं नौकरी की,
1: जी
0: फिर वापस मुड़ गए अपनी जिम्मेदारी वगैरह करने लग गया,
1: जिम्मेदारी तो
0: और
1: पहले भी करे था थारे,
0: पहला
1: कितनी
0: भी करा था
1: जमीन थारे को?
0: मैं, काफ़ी हमारे को अल्लाह का फजल है, उतु भी तजुर्बो हासिल कियो
1: जी
0: केड़ी जमीन ना केड़ो बीज होना चाहिए।
1: जी हम असल में थारा ते तफसीलन जो जानना चाहवा, क्योंकि बुनियादी तौर पर मारी बरादरी का जो ज्यादातर लोग है जब
0: ठीक
1: वे माल पारोसा में
0: जी
1: तैनदा लेनदा ते वे इसी जिम्मेदारी के नाल वाबस्ता है,
0: बिल्कुल
1: हालांकि भी
0: बिल्कुल
1: पहले जी लोगों को जमीन तो रही नहीं, लेकिन
0: बिल्कुल
1: फिर भी कुछ न कुछ आना भी है,
0: है
1: ते तब दसेगा कि थारो एक अच्छो खासो तजुर्बो है,
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी किस तरीके नाल की जानी चाहिए, यानी पाल दी थे शुरू कर लिया, तो जिस तरह से इकट्ठी चुड़े था पहला
0: जनाब।
1: जमाना।

0: जो कंट्री है ना, यूरोपी ममालिक है, उस
1: जी
0: दर देखा तो उत मकई की काश्त बहुत ज्यादा है। एक
1: जी
0: एक टांडा के नाल उत पांच पांच छह छह सात सात सीटा वे।
1: जी
0: हालांकि भी टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करें,
1: जी
0: हाइब्रिड किस्म का जो बीज आजकल भी एक भी है
1: बिल्कुल
0: तो और को
1: बिल्कुल
0: इस्तेमाल करें क्या, वह टेक्नोलॉजी वो बीज वह चीज़ हम अगर अपनी जमीन में इस्तेमाल करें हम ज्यादा फायदा नहीं चाह सकता।
1: बिल्कुल, फायदों क्यों नहीं जा सकता, लेकिन जमीन की तासीर उसी होनी चाहिए।
0: ठीक
1: वह मकई जड़ी है वह खुशक इलाका में भी हो जाए, जिड़ी या कश्मीर की मिट्टी है,
0: ठीक
1: कश्मीर की मिट्टी जड़ी है या सैराब आ रही है,
0: जी
1: या सैराब आ रही है, इसके बीच यू फसल कामयाब रहे, क्योंकि उस मुल्क में शादी की जड़ी फसल है
0: जी
1: वह बगैर पानी इट कश्मीर के बीच पूरा 6 महीना होटल की जमीन के बीच पानी की लोड़ी है,
0: ठीक
1: लेकिन उस बार जो है उसके बीच होटल जरा वे खुशी कहीं और उन सख दी तो जाए
0: ये जमीन जमीन की ता
1: जमीन की
0: जमीन
1: तासी या अपनी
0: ठीक
1: अपनी।
0: ठीक ठीक
1: जी
0: हमारा जो पुराना लोग था
1: जी जी
0: वे अक्सर जिस वक्त जमीन की देखभाल बहुत ज्यादा करे था,
1: जी जी
0: हालांकि जानवर भर या जमींदा वहां जाए उनकी देखभाल तो खैर करनी है, राखी करनी जाती है।
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा भी हम सुना था या देखा भी था पुराना बुजुर्ग था ना जैसा भी सुबह उठ कर नमाज के बाद सोटी ले भी पूरी जमीन में एक चक्कर करे था,
1: चक्कर
0: गर्दिश
1: करें।
0: गर्दिश करे था, कोई टाँडो का चार बात क्यों है, कितने कमजोर बात हो क्यों है, या कोई हो जो कहा मतलब दिन रहना चाहिए वो कब लो
1: जी
0: चाहिए या क्या रही है, तो क्या वह चीज जी आजकल भी तब देखे नौजवानों में कि
1: देखो
0: तब्दीली आ
1: उससे
0: गई।
1: ज्यादा यह गल है उसने कही निगरानी
0: ठीक
1: देखभाल
0: जी
1: देखभाल, जिस जमीन के बीच ताली ना हुई घास ज्यादा हो
0: जी
1: उसकी वजह से मेरे ही लग सके
0: ठीक
1: और उसके अंदर कोई कहा इस किस्म को है जिस नाम का क्यारी वगैरह, उसके नाल एक ऊपर कीड़ो है उसने मोरी के
0: ठीक
1: वह फसल ना भी लग सके। हाँ
0: अच्छा
1: उसी चीज़ों को उसो कहा वगैरह वह चीज़ काट छुने लोग,
0: जी
1: क्योंकि ये फसल जो है इसके अंदर हवा भी चलनी चाहिए,
0: ठीक
1: हम अगर कुदरती हवा के नाल या फसल मकई को जो यू झाड़ गयो
0: जी
1: फिर यू कामयाब नहीं रहता, मुंडू जमीन के ऊपर फिर यू यानी कि खराब हो जाए ट्रक जाए
0: ठीक
1: और फसल भी दे तो नहीं
0: जी
1: जो झाड़ गयो फसल, या इसमें तजुर्बो है कि जमीन के अंदर मकई जड़ी है वह कम से कम टांडा आते टांडा ना 4 फुट को फर्क होने लगी।
0: अच्छा खासी बड़ी गेप होनी चाहिए।
1: हाँ
0: अच्छा
1: नहीं चार उस तरह नहीं चार 4 फुट इस तरह है कि इस टांडा का इस तरफ भी 1 फुट पर टांडा होने लगी,
0: अच्छा
1: उस तरफ भी 1 फुट पर होने,
0: अच्छा
1: उस
0: जी
1: तरफ भी
0: ठीक
1: ये चौरस
0: अच्छा जी जी जी ठीक
1: क्यों ही पासे इस ना
0: इसका ना क्या फायदा मिले।
1: फुट
0: अच्छा
1: फुट होने लोड़ी जिसके नाल यू टांडो कामयाब रहे और इसके नाल अगर सील या गोडी वगैरह की मिट्टी भी चाड़ेगा
0: जी
1: टांडा के नाल
0: ठीक
1: तो उस फुट के बीचों या मिट्टी इस टांडा की तरफ
0: जी
1: लेमेंगा तो टांडो ताकत पकड़े,
0: ठीक यानी जितनी ज्यादा इंसान मेहनत करेगा
1: मेहनत का
0: जितनी
1: नाम,
0: जिम्मेदारी सीखेगा
1: मेहनत का
0: तो उतना ज्यादा
1: नाम
0: फायदा हासिल कर
1: तजुर्बा,
0: सके।
1: ये
0: जी
1: मेहनत, अगर उन बीज छुड़ी तो बीचे का भी रही तो बीचे क्यारी तो बीचे सब कुछ है जंड बूटा भी है वो फसल कामयाब नहीं रहता,
0: ठीक
1: इसको यू तजुर्बो जनाब।
0: जी तो आज साहब मैं तब पहले जिक्र कर रहा था बाड़ियों को कि आजकल
1: बिल्कुल
0: जितना भी साग है
1: देखो
0: चाहे
1: जरा
0: एक केमिकल में उनमें चाहे खाद में दवाई
1: जरा
0: में ज्यादा में।
1: इट जरा इट साग है बाड़ी है
0: जी
1: देहात के अंदर
0: ठीक
1: इट बांध का वक्त पहला सौंत जो आवे पहला चैत फगण
0: जी
1: चैत उस वक्त इन बाड़ियों के अंदर कड़म वगैरह कोई भी सब्जी बीजनी चाहिए, लेकिन इट एक गल है कि हवा सर्द है कभी कभार इस बांध का टाइम जब बारिश हुई तो नाल बर्फ भी बढ़ जाए दातम,
0: जी
1: जिस ना हमेश रेडियो पर इस पर कहेंगे कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई,
0: जी
1: वो पहाड़ों पर जी बर्फबारी हुई या इन जमीनों में देहात की में बारिश हुई उसकी वजह तो यू बाड़ी को जो साग है तो यू खराब हो जाए,
0: ठीक
1: इसके वास्ते अगर करें तो इसके बाद

0: रास्ता ऐसा करना चाहिए कि ग्रीन हाउस ले आओ।
1: जी
0: ग्रीन हाउस एक लॉग गई पाइपों को बने हुए
1: तरपाल
0: हैं,
1: है
0: उसका ऊपर तरपाल है,
1: जी
0: वो नाले दें।
1: ठीक
0: जैसा कि मैं भी उस अपनी जमीन का भी ग्रीन हाउस लाया भी है,
1: ठीक
0: तो अगर हम फागण माह इसमें सब्जी बीजेंगा
1: जी
0: तो बहुत अच्छी बन जाए, उसका बूटी वगैरह काट के फिर जब बसाख आयो और हम पर हम ला
1: फैला
0: सका
1: सके।
0: फैला सका। तो सिर्फ बाड़ी में बीजिए, ऊपर बर्फ की छटी आई या बर्फ पड़ी है वो नाकाम हो जाए।
1: जी
0: इस वास्ते इसको तजुर्बो यू है,
1: तो ग्रीन हाउस सियाल हो भी रहे हैं, सियाल भी सब्जी खा रहे
0: बिल्कुल
1: हैं। अच्छा
0: स्याल हम खाता रहे हैं स्याल सब्जी
1: अच्छा
0: बर्फ में।
1: ठीक
0: और इस ग्रीन हाउस का अंदर जो ऊपर तरपाल है इसके अंदर स्याल भी इतनी गर्मी में
1: जी
0: जितनी बरिया में है,
1: जी यानी इंसान अगर कमाना चाहे, मेहनत करना चाहे,
0: बिल्कुल
1: फायदा हासिल करना चाहे,
0: मेहनत और तजुर्बो और ये चीज करनी पड़े अगर
1: ठीक
0: जिम्मेदारी कोई करे।
1: जी
0: अगर बा नहीं करता तो फिर सट छुड़िया दाना पावे हो या ना हो,
1: जी
0: एक दूजी गल है,
1: जी
0: मेहनत के नाल मजदूरी है।
1: इस थारी में ये बाड़ी है तो ये भी बड़ी सोनी लगे लगी दाल, ग्रीन हाउस भी है तो के सब्जी इससे दाम हासिल करें।
0: इसके अंदर कड़म भी बीजा,
1: ठीक
0: इसके अंदर मर्च भी बीजा, इसके अंदर टमाटर भी बीजा,
1: जी
0: इसके अंदर डोबरी के
1: ठीक
0: यानी के वे
1: आले
0: आले कश्मीरी आलू के वे
1: जी
0: भी बीजा,
1: जी
0: जो सब्जी भी बीजी
1: जी
0: तो अच्छी रहे।
1: जी बिल्कुल। आज अक्सर आप देखा ना लोग ज्यादा परेशान सब्जी के बजाते हुए
0: बिल्कुल
1: दुकान पर चले तो जड़ी दुकानदार कीमत दस है तो इंसान का परसे आ जाए।
0: अनाज ते बढ़ गए, सब्जी की ज्यादा रकम लगे
1: ठीक
0: और वह भी आना हम बुना थे,
1: जी
0: जिसके नाल
1: एक तो ताजी भी
0: प्रेशर,
1: होती
0: जिसके नाल
1: ना,
0: हमने प्रेशर हुआ है,
1: ठीक
0: जिसके नाल हमने और
1: बीमारी हो जाए।
0: बीमारियों को नमूदार में।
1: जी
0: तो इस वास्ते अगर अपनी बाड़ी की कोशिश करें
1: ठीक
0: तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह सब्जी जड़ी है
1: अच्छा साफ सुथरी
0: या साफ सुथरी है और या पा वगैरह गोहा के ऊपर
1: जी
0: बन सके खाद और साहब इसके भी नहीं।
1: जी और अजी सब जद मर्जी आए थे बस मर्जी की सब्जी है।
0: आर जो जिस वक्त जड़ी सब्जी
1: अच्छा
0: जरूर रोटी होगी कि वाह इस्तेमाल कर लिया।
1: ठीक तो इसके बाद शायद अजी साहब रहे कि अब दाल आओ सिस्टम, क्योंकि दाल भी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी है
0: दाल मुख्तलिफ
1: जी।
0: बे मोटी की दाल तो खुली मकई के नाल बीजें
1: अच्छा
0: वह भी हो जाए, लेकिन और भी जड़ी किस्म दाल बीजेंगे तो वह हो जाएगी।
1: बूटे की दाल को जो वो भी
0: लेकिन
1: यही सीजन है बकई बीज के दाल
0: हाँ
1: को
0: मकई के नाल उतना इस ग्रीन हाउस की जो बाड़ी की जरूरत
1: नहीं
0: नहीं, वह
1: ठीक
0: खुली हो सके मकई में।
1: जी।
0: जी
1: तो अजी साहब चलता चलता बारह जिम्मेदार का बारह लोगों का के कहना चाहेगा तब कि जिस तरीके ना तब जिंदगी में मेहनत करें या पहला वक्त का बारह बुजुर्ग करे था अगर उसी तरह आज भी मेहनत करें तो अच्छा फल इस हासिल कर सके। जी
0: बिल्कुल, इस ना कहें अपनी मदद आप करनी,
1: ठीक
0: पीछे रह गए हो। आज लोग के पास सरमाए हो, लोग के पास पैसों है, खरीद के लेवें, लेकिन उसना तो इसने बड़ो फर्क है,
1: जी
0: खरीदिया भी सब्जी ना तो इसने बड़ो फर्क है,
1: ठीक चाहे
0: क्योंकि
1: मकई में चाहे सब्जी
0: बिल्कुल
1: में दाल में
0: बिल्कुल इसके अंदर बे चीज नहीं। देखो खाद है दो त्रै किस्म,
1: जी
0: यह खाद इस जमीन ना साड़ गए तो स्वागा जैसी बना छोड़े
1: ठीक
0: और अपनी तासीर करे, जिसके नाल यो फसल या चीज या सब्जी जल्दी बड़ी वह, लेकिन अगर खाद ना सटी तो फिर यह नाकाम रहे,
1: जी
0: लेकिन असरात जरा खाद का भी
1: आगे जाके खराब निकले
0: खराब निकले
1: यानी जो कारण
0: वजह,
1: रुको है
0: हाँ
1: ज्यादा
0: वजह
1: मेहनत
0: यह
1: है।
0: है।
1: जी
0: इस वास्ते इस वक्त गवर्नमेंट ने भी जो तजुर्बा रखे हो ये बनावे कुछ वे आट जा जिनके बीच गो सट गए,
1: जी
0: ओखर सट गए वगैरह सट गए,
1: घरेलू खाद
0: उसकी घरेलू खाद बनावे,
1: जी ठीक
0: वो इस वास्ते बनावे कि वह बिला जवाल है,
1: अच्छा
0: इस वास्ते वह बनावे गवर्नमेंट दे।
1: जी
0: شارجہ۔

0: ठीक
1: तो उस नंद इस नंद जो फर्क है,
0: जी
1: वो का वो गो सड़ गए तो उसकी भी एक किस्म की खाद बने।
0: जी अगर इंसान फायदा लेना चाहे तो वो हर तरीके ना ले
1: हर तरीका का ना तजुर्बा का ना।
0: ठीक
1: तो हूँ इतनी मेहनत भी लोग नहीं करते, वजह यह है कि वे किसी शायर नहीं क्यों कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे।
0: जी
1: हम आज मुफ्त खाना में पीछे होया मैं।
0: अच्छा थोड़ा आलसी बन गया है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: हम कहूँ तू मुफ्त चावल भी आ जाएगा उतू जा चीज़ है उतू मुफ्त रुपया भी आ जाएगा सब्जी भी ले आवाँगा तो यह चीज़ हम ना आज ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर हम इस मेहनत पे कासर
0: ठीक
1: मेहनत करता नहीं
0: जी
1: वजह ही है
0: जी। हाजी अल्लाह देर खारी साहब तब ने अपना कीमती वक्त दे तो तब ने अपनी जिंदगी का कुछ हालात अहवाल भी दसिया और जिम्मेदारी का हवाला लाल ढेर सारी गल की और एक थारो पैगाम थो कि मेहनत करो ते तब हाँ कलाल की चीज़ भी खाएगा साफ सुथरी चीज़ खाएगा ताज़ी चीज़ खाएगा तो ये बहुत अच्छा पैगाम भी है। हाजी अल्लाह देर साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामीन तमने इंटरव्यू सुनो महाराज का मेहमान था हाजी अलादीन खारी साहब उन्होंने गल की मोहम्मद यूनस कालूखेल साहब और जी। सामीन इसके नाले आज का प्रोग्राम को वक्त मुक्कण आयो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेज़बान शबीर अहमद पसवाल ना दियो इजाज़त। अच्छा जी रब राखो।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 5:50 होने वाले हैं। आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: सामिन आदाब, 5:50 हो गए। यो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है। रियाज मत बिजाड़ते गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में बांडीपुरा में कड़ी गई मुंशियात मुखालिफ पद यात्रा, शुरका ने मुंशियात का खात्मा को दोहरायो अजम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमा तालीम का कई आर्जी मुलाजमीन में बाकायदगी का तकरनामा बंडिया। सदर जमहूरियात द्रौपदी मुर्मू आज शाम इस साल का पद्म अवार्ड करेंगी अता। तय मनासे के हज की अदायगी को सिलसिलो आज ते ओयो शुरू। उन खबर की तफसील। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ जिलों में पद यात्रा को सिलसिलो जारी है, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी सरगर्म शिरकत ना मुंशियात की लानत के खिलाफ अपना अजम मुसम्मम को इजहार करे। आज जिला बांडीपुरा में भी मुंशियात मुखालिफ पद यात्रा कड़ी गई, जिसना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने चंडी दस के टोरियो। अपना ख्यालात को इजहार करता उन्होंने कहो जे नौजवान कौम की तैमीर में अहम रोल अदा करें और उन्ना तैमीरी सरगर्मी में बढ़ चढ़ के हिस्सों लेनो चाहिए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पद यात्रा का शुरका ना मुंशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने को वादो करायो।
2: युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़ें। देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
1: जम्मू कश्मीर में मुंशियात की लानत से छुटकारो दौड़ वास्ते 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मी शद्दोमद नाल जारी है और मुंशियात का टांचा ना खत्म करने समेत इस लत में फंसिया नौजवानों की बाजाबाद

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4

0: दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन मीडियम न्यूज आता 8.8 मीटर एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज संपेट शबजे 5 मिनट 10 सेकंड सब दे उली प्रोग्राम बोजो गई मी बाय नींद खतरा।

आने का ये पुख्ता इरादा आज पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बन गया है। 45 दिन पहले जम्मू के में स्टेडियम से मैंने तस्करों और नार्को टेरर के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत नहीं की थी बल्कि आवाम से वायदा किया था और वो जन अभियान आज एक जन आंदोलन का स्वरूप आप सबके सहयोग से बनता जा रहा है। एक ऐसा जन आंदोलन जो हमारे समाज को जागृत करे, युवाओं को प्रेरित करे और नशे की इस भयंकर त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की गरिमा को फिर से स्थापित करे। 45 दिनों में आवाम, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक, सामाजिक संगठन, हमारी बहनें, नौजवान, इमाम साहिबान, सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, वकील, बिजनेसमैन, सबने किसान अथक परिश्रम किया और मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं

0: हमारी बहनें, नौजवान, इमाम साहिबान, सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी, वकील, बिजनेसमैन, सबने किसान अथक परिश्रम किया और मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि बहुत लंबे समय बाद पहली बार जम्मू कश्मीर वास्तव में एक संकल्प एवं एक उद्देश्य के लिए एकजुट हुआ है।
1: प्रोग्राम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार मुख्तलिफ मुकामों पर तैनात रहे, जबकि पूरे रूट पर निगरानी बढ़ा दी गई थी ताकि पद यात्रा पुरअमल और नजम तरीके से अंजाम दी जा सके। ट्रैफिक की रवानी और बरकरार रखने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मकामी आवाम ने इस इकदाम को उम्मीद की एक नई किरण करार देते हुए कहा कि अगर इसी तरह समाज के तमाम तबके मुतहद होकर आगे आए तो जिला को मंशिया से पार बना दिया जा सकता है। शुरका ने इस अजम का इजहार भी किया कि वो अपने इलाकों में मंशियात के खिलाफ शऊर पैदा करने के लिए मुसलसल काम करते रहेंगे ताकि आने वाली नस्लों को इस खतरनाक नासूर से महफूज रखा जा सके।
2: बांडीपुरा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की पदयात्रा, अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। दरिया संरक्षण गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हजरत बल दरगाह में ईद के मौके पर जायरीन की सहूलत के लिए किए गए मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया। एम जी मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि वो इंतजाम के मेयार की निस्बत से इत्मीनान पाने के लिए यहां पर आए हैं। वाजिर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉ सैयद रखशान दराबी और जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी थे। इधर आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में एक तकरीब के दौरान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कंटिजेंट पेड वर्कर्स को मुस्तकिल तकरूरी के अहकाम सौंपे। तकरीब में वजीर बराए स्कूली तालीम सकीना इतू, वजीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, स्पेशल सेक्रेटरी गुलाम रसूल मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी और दीगर आला अफसरान भी थे। इस मौके पर वजीर आला ने गांधरबल और बांडीपुरा अजला के कंटिजेंट पेड मुलाजमीन को इनफरादी तौर पर मुस्तकिल तकरूरी के अहकाम सौंपे और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुलाजमीन खलूस, लगन और दयानतदारी से काम जारी रखेंगे ताकि महकमे तालीम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। सरहिंद वादी के मुख्तलिफ जिलों में गुज़श्त दो हफ्तों के दौरान हुई शदीद जालाबारी और तेज आंधियों के नतीजे में मेवे बागात और धान की पनीरी के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। याद रहे कि पिछले दिनों पट्टन, क्रीरी और रफियाबाद के इलाकों में जालाबारी ने भारी नुकसान पहुंचाया और अब कल शाम कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी ने कहर बपा किया। बताया जाता है कि जालाबारी इस कदर शदीद थी कि जमीन पर जैसे बर्फ की मोटी तह बिछ गई हो। इसके कुछ वक्त बाद ही कुपवाड़ा जिले के ही कई इलाकों में तेज आंधियों ने इमलाक को खासा नुकसान पहुंचाया। एक रिपोर्ट के साथ फैयाज हमीद।
3: गुज़श्ता शाम के करीब इस जिले के वादी लोलाब के कई हिस्सों में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि चंद ही मिनटों में आसमानी बिजली ने एक नौजवान को अब भी नींद सुला दिया जबकि दूसरे नौजवान को जख्मी कर दिया और साथ ही दर्जन भर इलाकों में खड़ी फसलों और मेवा बागात को जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया। शहर बिन को मिली इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज शाम के करीब वादी लोलाब के वरलो, वावरा, खुरामा, कुलीगाम, आफन, खुडी, सिवर, गागल, मैदानपुरा, सुजीगाम, पोतेशाही और थायवन इलाकों में इस कदर तबाहकुन जालाबारी हुई कि चंद ही मिनटों में मेवा बागात, धान की पनीरी, मुख्तलिफ किस्म की खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। जालाबारी इस कदर शदीद थी कि चंद मिनटों तक खौफ की वजह से कई खानदानों में चीखो पुकार के मनाजर भी देखे गए। दूर दूर तक सफेद चादर नजर आने लगी जबकि सड़कों पर ओलों की इतनी बड़ी सतह जमा हुई कि गाड़ियां फिसलने लगी। अभी इन इलाकों में जालाबारी रुकी गई थी कि चंडीगांव में आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में आबिद रहीम नामी 22 साल नौजवान जान से हाथ धो बैठा जबकि दूसरा एक नौजवान फैजान रहमान डार जख्मी हो गया। उधर दूसरी तरफ कालपुरा के मुताबिक देहात जिनमें गजरियाल, वारसुन, ऋषिगुंड, मिलियाल, काछामा, दर्दपुरा, लोनहारे, राशनपुरा, फरकिया, बटपोरा, पंचगाम, चौकीबल और दीगर इलाकों में तेज आंधी और जालाबारी ने तबाही मचा दी। गजरियाल में वली मोहम्मद भट्ट की दुकान की छत उड़ गई। सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेज आंधी की वजह से दरख्त और इनकी टहनियां टूट गई जबकि बिजली के खंभों और तरसीली लाइनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा जिसके सबब बिजली पर असर पड़ा और रात देर गए। हंडवाड़ा और रामहाल के कई जात में भी तेज आंधी और जालाबारी ने तबाही मचा दी।

0: रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि ईद उल अजहा के मौके पर 29 मई को सरकारी मुलाजमीन के लिए एक रोजा खसूसी कैजुअल लीव मंजूर की गई है। इस सिलसिले में जीएडी की तरफ से जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक ये छुट्टी उन मुलाजमीन के लिए होगी जो ईद उल अजहा के मौके पर छुट्टी लेना चाहते हों। ये हुक्म कमिश्नर सेक्रेटरी एम राजू के दस्तखत से जारी किया गया है। हुकाम ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद मुलाजमीन को मजहबी त्यौहार खुशी और सुकून के साथ मनाने का मौका फराहम करना है। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: सामीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी चौथी किस्त सुनेंगे। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना न भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे।
3: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल की जानिब से तालीमी साल 2026-2027 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बराए पोस्ट ग्रेजुएशन 2026 के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के प्रोग्रामों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि दाखिले के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। मजीद तफसीलात के लिए www.cukashmir.ac.in पर जाएं या दफ्तरी औकात में 9469847277 पर राबिता कायम करें।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
0: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन ने बड़गाम जिले के गलवानपुरा इलाके में एक कमसिन लड़की के कत्ल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर अपील की है कि इस जुर्म में मुलव्वस सभी अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और इस सानहे की बारीक बीनी से तहकीकात कराई जाए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के वस्ती जोन के सदर और एमएलए चाडूरा अली मोहम्मद डार के बिरादर अकबर हाजी अब्दुल्ला डार के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से तासीयत की है। दरियास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली और जिलाई सदर शुपया शौकत हुसैन गनाई और पार्टी के जिलाई सेक्रेटरी शुपया निसार अहमद निसार ने अली मोहम्मद डार से जाती तौर पर इजहार ताजियत करने के लिए उनकी रिहायशगाह का दौरा किया। समय डोडा और भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकाजात में स्वच्छ भारत मिशन जैसे दम तोड़ चुका है। डोडा और भद्रवाह के दर्जनों गांव देहात के अलावा कस्बों से भी शिकायत आ रही है कि गुज़श्ता एक डेढ़ साल के दौरान इंतजामिया स्वच्छ भारत मिशन की अमलावरी पर मुश्किल से कोई तवज्जो दे रहा है। यही वजह है कि इन कस्बाजात और गांव देहात में हर मोड़ पर हर नुक्कड़ पर गंदगी और गलाजत के ढेर जमा दिखाई पड़ते हैं। बताया जाता है कि गंदगी और गलाजत यूं जमा रहने की वजह से इन इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा।
5: कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मरकजी सरकार की जानिब चलाई जा रही स्वच्छ भारत अभियान मुहिम जबानी खर्च दावों व कागजों तक ही महदूद है और इस मुहिम का असर जिला डोडा के किसी भी म्युनिसिपल कमेटी में देखने को नहीं मिल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी ठाठी, म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह, म्युनिसिपल कमेटी गुंदोबलेस और म्युनिसिपल कमेटी डोडा में गंदगी, कूड़ा करकट मौजूद रहने की वजह से सख्त उफूनत फैल रही है और इन म्युनिसिपल कमेटियों के गली कोचे व बाजारों में माल मवेशी खुले आम घूमते फिरते हैं, जिसकी वजह से इन मुकामात पर अक्सर बेशतर माल मवेशी का गोबर मौजूद रहता है। और गुज़श्ता 3 हफ्ता के दौरान म्युनिसिपल हदूद के ये गली कोचे और बाजार में इन आवारा जानवरों का इतना गोबर मौजूद

0: है कि राहगीरों, उम्र रसीदा बुजुर्गों, स्कूली बच्चों व बीमारों को इन मकामों से गुजरने में बड़ी कोफत का सामना रहता है। हालांकि सरकार स्वच्छ भारत मुहिम स्कीम पर जर कसीर खर्च कर रही है ताकि इर्द गिर्द माहौल को पाक व साफ रखकर माहौलियाती आलूदगी और पनपने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सके। इकबाल आबाद नजदीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के मकीनों ने शहरबीन को बताया कि जीएमसी के बैक साइड में दो डंपर से ज्यादा कूड़ा किरकट और गंदगी पिछले एक माह से मौजूद है, जिसकी वजह से सख्त तरीन उफूनत फैली हुई है और इसके इर्द गिर्द रहिश रखने वाले लोगों को वहाँ से गुजरने में बेहद मुश्किल का सामना रहता है। इन लोगों ने मजीद बताया कि मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल हुकाम को आगाह भी किया था, मगर फिलहाल इस जानिब ये हुकाम गैर संजीदा नजर आ रहे हैं। गंदगी के ज्यादा ढेर नगरी बस स्टैंड, द्रुमड़ा आईटीआई नगरी मोहल्ला, बंडोड़ा स्कूल गली, डिग्री कॉलेज रोड, शिनाल मोहल्ला सा व दीगर कई महलाजात में मौजूद हैं। बताया जाता है कि महकमा के हुकाम ने सफाई कर्मचारियों को आर्जी तौर महकमा म्युनिसिपल कमेटी के मुख्तलिफ अहदों के इंचार्ज फाइज किया है, जिसकी वजह से सफाई सुथराई का फुकदान है और सफाई कर्मचारी सफाई के बजाय इंचार्ज अहदों को ही तरजीह देते हैं। साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर रमेश कुमार ने शहरबीन को बताया कि अभी तक जिला हुकाम के आला अफसरान ने न किसी जगह और न ही मार्केट का दौरा अभी तक किया है और न ही अवाम व जिला एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान अवामी दरबार मुनक्कद किया गया है, जिसकी वजह से अवाम और अफसरान के दरमियान तालमेल का फुकदान है। डोडा बदरवा के ताजिर पेशा अफराद ने बताया कि इन म्युनिसिपल हदूद में ड्रेनेज निजाम भी बेहद नाकिस है और मामूली सी बारिश पर नालियों का फजला और गंगा पानी तमाम बाजार में फैल जाता है, जिसकी वजह से बदबू और उफूनत तमाम मार्केट में फैल जाती है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि डोडा बदरवा व ठाठी के म्युनिसिपल हदूद में पहले ही बंदरों व आवारा कुत्तों की भरमार है, मगर अब ये आवारा माल मवेशी जानवर रात दिन गली कोचों व बाजारों में खुले आम चलते फिरते हैं, जिसकी वजह से महलों की गली कोचों में अक्सर गोबर ही गोबर दिखाई देता है और अब गोबर कहलाने वाली जगह सिर्फ नाम की रह गई है, बल्कि अब गोबर गली के साथ साथ दीगर बाजार के मकामात गोबर से पुर रहते हैं। मगर म्युनिसिपल कमेटियों के हुकाम इस जानिब कोई कार्रवाई करने में अभी तक बुरी तरह नाकाम हुए हैं और लोगों ने इन म्युनिसिपल हुकाम के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है और कहा कि इस मसले से निपटने के लिए फौरी तौर कार्रवाई अमल में लाए ताकि बीमारों, स्कूली बच्चों व आम राहगीरों को चलने फिरने में मजीद कोहत का सामना न करना पड़े।
1: गोवा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। समय ईद की आमद आमद है। पिछले चंद रोज से वादी के मुख्तलिफ कस्बजात और शहर श्रीनगर में लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ पाए जा रहे हैं। ताहम चंद इलाकों से शिकायत मौसूल हो रही है कि गजाई अजनास फरोख्त करने वाले दुकानदार मिलावट के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमने इसी तनाजुर में फूड सेफ्टी महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया।
2: देखिए इशफाक साहब, ईद के मौके पे जिन फूड आइटम्स की ज्यादा कंजप्शन होती है उन पे हमारी ज्यादा नजर गुजर रहती है। उसमें बेकरी के आइटम्स आते हैं, दूध आता है, गोश्त के प्रोडक्ट्स आते हैं, जितने भी बाकी आइटम्स हैं उन पे हमारी ज्यादा नजर गुजर रहती है। तो हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, हमारे जो उनको ऑलरेडी हमने डायरेक्शन दी हुई है माननीय कमीशन साहब ने कि जो इस किस्म के फूड आइटम्स हैं इनको एक तो आप इनके सैंपल्स करें और इमिजिएटली इनके हमें रिपोर्ट्स भी मिलने चाहिए, सो दैट कि अगर कहीं पे हमें कंट्रावेंशन लगेगा तो उस पर अकॉर्डिंगली कार्रवाई हो जाएगी। उसके साथ साथ इफाक साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक तो हो गया जो सैंपल हम उठाते हैं, उसके साथ साथ जो बेकर्स की हाइजीन होती है या जो चिकन सेलर्स होते हैं, नान वायर्स होते हैं, उनकी जो हाइजीन होती है अगर वो उन्होंने कंप्रोमाइज की हुई हो वहाँ पे, तो तब हम ऑन स्पॉट ही अंडर सेक्शन 69 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, उसके दायरे में हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। उससे पहले भी हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ की और आज के डेट में भी उनके खिलाफ हम कार्रवाइयाँ जारी रहे हुए हैं और हजारों रुपये का जुर्माना हमने इन लोगों पर आयद किया जो हमने वसूली कर लिया। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मगर जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अगर उन्हें फूड के क्वालिटी के हवाले से कोई भी शिकायत हो तो मेहरबानी करके जो हमारा टोल फ्री नंबर है 104, उस पर वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, सो दैट इमिजिएटली हम उसको उस पर कॉग्निजेंस लेके उस पर कार्रवाई करेंगे।
1: पिछले चंद दिनों के दौरान जो कार्रवाई आपने की है, क्या उनमें कोई स्पेसिफिक ऐसी मिसाल सामने आई कि जहां पर

0: आपने गैर मियारी पाया फूड आइटम्स को, फिर आपने वहां पे कार्रवाई की?
1: आज भी मुझे जो जो रिपोर्ट्स मिली कहीं कहीं पे जो एक्सपायर्ड फूड आर्टिकल थे उन पे कार्रवाई हुई, और पुलवामा से हमें इतलात मिली। इसी तरह पटन से एक इंसिडेंट हमारे सामने आ गया है जिसपे इस वक्त कार्रवाई चल रही है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जहाँ भी हमें लगता है कि जो फूड की जो क्वालिटी है उसको किसी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के लेवल पे हुआ है, होलसेलर के लेवल पे हुआ है, या रिटेलर के लेवल पे हुआ है, उस पर कार्रवाई हम करते हैं। जैसे मैंने कहा आज के दिन में भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को भी लगेगा कि फूड के आइटम के साथ कोई उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, चाहे वो रिटेलर ने किया, होलसेलर ने किया, या मैन्युफैक्चरर ने किया, तो मेहरबानी करके वो डिपार्टमेंट के नोटिस में लाए, सो दैट इमीडिएटली उसमें हम कार्रवाइयां करें।
0: ये थे फूड सेफ्टी महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर। इधर शहजाद कल्चरल सोसाइटी हवल ने दिलदार मोहम्मद अशरफ शाह का लिखा हुआ और अल्ताफ हुसैन का पेश किया हुआ ड्रामा जागीर आज ग्रीन वैली स्कूल में पेश किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि ईद से कबल डेली वेजरों, कैजुअल मुलाजमीन, आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों, सीआईसी ऑपरेटर्स और दीगर आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार की जाएं ताकि उन्हें ईद की खुशियों में भरपूर शामिल होने का मौका मिल सके। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक नई साइबर एडवाइजरी जारी करते हुए आवाम को खबरदार किया है कि साइबर मुजरिम जाली डिस्काउंट्स, नाकाबिले यकीन ऑनलाइन ऑफर्स और चमकदार सोशल मीडिया इश्तहारात के जरिए सार्फिन को माली धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। एडवाइजरी के मुताबिक साइबर फ्रॉड करने वाले अफराद लिमिटेड टाइम ऑफर, भारी डिस्काउंट्स और पुरकशिश इश्तहारात के जरिए आवाम में घबराहट और जल्दबाजी पैदा करते हैं ताकि लोग मशकूक लिंक्स पर क्लिक करें या बगैर तस्दीक के ऑनलाइन अदायगी करें। पुलिस ने खबरदार किया है कि ऐसे फ्रॉड स्कीमें जाली वेबसाइट्स और खतरनाक पेमेंट लिंक्स के जरिए बैंकिंग तफसीलात, जाती मालूमात और पैसा चुराने के लिए तैयार की जाती हैं। आवाम को हिदायत दी गई कि वो हर ऑफर की तस्दीक करें, मशकूक लिंक्स पर क्लिक ना करें और सिर्फ मोतबर प्लेटफॉर्म्स पर ही खरीदारी या माली लेन देन करें। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
7: तो क्या शकने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
6: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
7: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्राव नहीं हुआ। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावा तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
6: मगर ये है आज सठा द्रो?
7: हाँ ना ना, सुई कम मत मज मुशुक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
8: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनायु सेहत मंद, प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो। बाजरस मज दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाबों।

0: सभी को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें।
1: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं और मनुष्यात के ढांचे को खत्म करने नीज इस लत में फंसे नौजवानों की बाजाबादकारी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। LG मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बिदत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक समाजी कारकुन और ताजिर हाजी अब्दुल्लाहद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मंशा से दूर है कि अपनी जिंदगी ये बहुत कमजोर होती है और एक चीज है, इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है जो अपने बच्चों को थोड़ा गाइडेंस करे। देखिए जब वो वहाँ से आते हैं, वो कमरे में जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता, हम जाते हैं क्योंकि माँ बाप की जिम्मेवारी है। और यहाँ JK पुलिस जो है इसके लिए एक टीम बना रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारा JK पुलिस इतना अच्छा काम कर रहा है ग्राउंड में।
1: मनुष्यात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के रियासी जिले में काकरियाल के मकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान अजय शर्मा नामी मनुष्यात फरोश को गिरफ्तार किया है। डोडा में पुलिस ने इसी तरह की एक कार्रवाई में मोहम्मद इम्तियाज नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया। कश्मीर सूबे में मनुष्यात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अनंतनाग जिले के मुख्तलिफ मकाम से जब्त की गई 522 किलो नशीली अशिया को तबाह कर दिया। अवंतीपुरा पुलिस के अहतमाम से मनुष्यात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। शोपिया में पुलिस ने बंग की काश्त को तबाह कर दिया। बारामूला में वसीम अहमद मंगराल और मोहम्मद सफीर शेख, पुलवामा में मोहम्मद असलम मलिक और नसीर अहमद डार और अनंतनाग में नजीर अहमद शेख और हजीफ अहमद गनाई नामी मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। सियाती मकाम गुलमर्ग में गंडोला केबल कार में तकनीकी खराबी पैदा होने के बाद इसको आरजी तौर बंद किए जाने के फौरन बाद दरमंदा हुए सयाहों को वापस लाने के लिए फौरी कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वो आज खुद सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के साथ बात करके इस बारे में जानकारी हासिल की। LG की हिदायत पर DGP नलिन प्रभात गुलमर्ग पहुंचे जहां वो आखिरी इतलात मिलने तक राहत कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे कौसर सलाम ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO का हवाला देकर खबर दी है कि सभी सयाह सलामत हैं। दरी असना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि गुलमर्ग में गंडोला केबल कार सर्विस में तकनीकी खराबी के बाद हालात पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दरमंदा हुए सयाहों को वापस लाने के लिए माहिरीन की मदद से राहत कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज महकमा स्कूली तालीम में आरजी उजरतों पर काम करने वाले गांधरबल और बांडीपुर अजला के वर्करों को उनकी मुलाजमत बाकायदा होने के तकरनामे सौंपे। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मजकूरा मुलाजमीन तालीमी मंजरनामे में बेहतरी लाने के लिए लगन और तंदी के साथ काम करते रहेंगे। इस मौके पर वजीर तालीम सकीना इतू भी मौजूद थी। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले SRO 43 और RAS के 52 मुस्तहकिन में नौकरियों के ऑर्डर तकसीम किए। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और इंतजामिया के आला अहदेदार भी मौजूद थे। MLA कुलगाम MY तारिगामी, MLA शोपियान शबीर अहमद कुल्ले और MLA बड़गाम आगा सैयद मुंतजर महदी ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके अपने अपने हलका इंतखाब की तरक्याती जरूरियात के बारे में उन्हें आगाह किया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मुबीन ने भी वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। वाइस चांसलर ने वजीर आला को यूनिवर्सिटी के तदरीसी अमल और तरक्याती इकदाम के बारे में तफसीली जानकारी दी। वजीर तालीम सकीना इतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में गैर मारूफ सियाहती मकामात को सयाहत के नक्शे पर लाने के लिए वादाबंद है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में पांचन पत्री के मकाम पर टूरिज्म कैपेसिटी बिल्डिंग कैंप का इफ्ताह करने और ऑल टेरेन रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उन्होंने कहा कि नए सियाहती मकामात को मंजर आम पर लाने से ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर की सैर पर आएंगे।
4: कोशिश कर रहे हैं इसको हम एज टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करें, यहाँ टूरिस्ट आए क्योंकि

0: इको टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है। कोशिश ये है सरकार की कि लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के वसाइल आए और जो हमारे पास अल्लाह ने खूबसूरती दी है उस खूबसूरती को लोगों के सामने लाए ताकि लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा।
1: नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वैट्स ने आज श्रीनगर में वजीर तालीम सकीना एतू के साथ मुलाकात करके उन्हें जम्मू कश्मीर में एनसीसी की सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। वजीर मौसूफा ने नौजवानों में नज़्म ज़ब्त पैदा करने के लिए एनसीसी के कामों की सराहना करते हुए सरकार की जानिब से इस इदारे को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने नौजवानों से ताकीद की है कि वो तालीम, नज़्म ज़ब्त और खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। वजीर मौसूफ जम्मू में द टाइम्स ऑफ इंडिया के एहतमाम से मुनाकिदा एजुकेशन एक्सपो 2026 से खिताब कर रहे थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज जुलहिजा की 8 तारीख है। आज से मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ और लाखों की तादाद में आज़मीन किराम ने अहराम बांधे हुए आज का पूरा दिन मिन्ना की वादी में गुजारा। कल 9 जुलहिजा को नमाज फजर के बाद आज़मीन हज के रुकन अजीम वकूफ़ अराफात के लिए मैदान अराफात रवाना होंगे।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल पर हाजिरी देकर ईद उल अजहा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने नमाज ईद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशांद्रा भी आसार शरीफ के इमाम खतीब मुफ्ती रियाजुल हक सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और इंतजामिया के दीगर कई अफसर भी उनके हमराह थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने वादी की कई मसाजिद खानकाहों और जियारतगाहों पर नमाज ईद के अवकात मुश्तहर किए हैं। आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। आसार शरीफ जनाब साहब सोरा और आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा में नमाज ईद सुबह 9 बजे जियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब खानियार और जियारत मीर सैयद याकूब साहब सोनवार में सुबह 9:30 बजे, जियारत हजरत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में सुबह 10 बजे, जबकि खानकाह मौला श्रीनगर में नमाज ईद सुबह 11 बजे अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद बाबा हनीफुद्दीन ऋषि रटसुन बिरवा में ईद की नमाज सुबह 8:45 पर अदा की जाएगी। ईदगाह खूर शेराबाद पट्टन में नमाज ईद सुबह 7:45 पर अदा की जाएगी। जम्मू के मरकजी ईदगाह रेजिडेंसी रोड में नमाज ईद सुबह 7:30 अदा की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम के सियासी समाजी और मुआशी हकूक को तहफ़ फराहम किया है। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल करने के अपने एजेंडे पर कायम है। इस दौरान पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो ईद उल अजहा के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से रामबन और पत्नीटॉप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत तरबेती प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिनमें पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के अलावा कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के एहतमाम से तालाब तिलु जम्मू में एक तंजीमी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसे पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मोहोत्रा ने खिताब किया। दरियासना पार्टी के तर्जुमान हरी दत्त शिशु ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा के बयान को गुमराहकुन करार दिया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने ईद उल अजहा के सिलसिले में लोगों को तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की इंतजामिया से अपील की है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मियार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बैंक की तरफ से इस साल एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: बैंक अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो उससे फिर बैंक सस्टेन करना या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अभी 2021 के बाद से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इस बैंक में, और उसका मेन रीजन ये था कि जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था ना हमारे बैंक का, वो बहुत हाई था। मतलब जितना इनकम हमारा था उससे उसके मुकाबले में कॉस्ट काफी हाई था, और कॉस्ट में मेजर 75-80% जो था वो स्टाफ कॉस्ट था। तो इस चीज को जब तक हम कंट्रोल

0: ही कर पाए, कॉस्ट कम करके नहीं, इनकम बढ़ा के। तो हमने कोशिश की कि इनकम बढ़ाए, लास्ट पिछले 5 साल में हमने इनकम काफी बढ़ाया। तो अब हम इस पोजीशन में हैं, मतलब अपने माध्यम से ये बता सकते हैं आवाम को कि इस साल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा और अच्छा खासा होगा, क्लर्क में भी और ऑफिसर्स में भी।
1: और अब रेल से मुतालिक ये खबर। शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में माल बर्दारी में आसानी पैदा करने के लिए अहम इकदाम किए हैं। इस सिलसिले में आज अलल सुबह करीब 5:45 जम्मू से मुंबई के लिए एक खसूसी पार्सल वैन में 12 टन ताज़ा चेरी की पहली खेप रवाना की गई। इस इकदाम से जम्मू कश्मीर का मेवा कम से कम वक्त और ताजगी की हालत में मुतलका मंडियों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने यूटी के कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो दाखिले के लिए कॉलेज ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि उन्हें किसी न किसी कॉलेज में दाखिला मिल सके। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने इस ताल्लुक से कहा,
2: मेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ख्याल रखें कि वो अपनी चॉइसेस बढ़ा दें अभी से, क्योंकि उनकी चॉइसेस ओपन है, या जितने प्रोग्राम चूज करना चाहिए जितने कॉलेज में वो कर सकते हैं, ये चॉइसेस उनको ओपन रहेंगी 27 तक। तो मेरी सब स्टूडेंट्स से ये गुजारिश है कि वो इमीडिएटली देखें अपना रैंक, और रैंक से उनको समझ आएगा कि उनको क्या पॉसिबिलिटी इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की। हमने उनको अपडेट करने के लिए व्हाट्सएप चैनल एक बनाई है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे अपडेट हो जाएगा।
1: कौमी तहकीकती एजेंसी एनआईए ने आज एक केस के सिलसिले में शोपिया में वाका दारुल उलूम सिराजुल उलूम में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। मजकूरा दारुल उलूम को गुज़श्ता महीने गैर कानूनी इदारा करार दिया गया था। इस दौरान चेत्रागाम शोपिया में जमात इस्लामी के साबिक सरबरा के घर और लाल बाजार श्रीनगर में जमीयतुल बनात में भी तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहानात में बार बार की खामियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने माजी के पेपर लीक तनाजात से कोई सबक हासिल नहीं किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहानात के लिए एनटीए की जगह किसी और मोतबिर एजेंसी के इंतखाबात के बारे में दायर की गई एक अर्जी पर मरकज एनटीए और सीबीआई से जवाब तलब किया है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:23 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:33 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
3: तीनों कॉलेज में
4: डोंट वरी,
3: फीस तो देखो।
5: क्या हाल है, क्या हुआ?
4: फीस की टेंशन,
5: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
6: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
7: आरबीआई कहता है
8: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं शेख तजम्मुल। सिलसिले रोज़ो शब नक्शगरे हादिसात तो है ही, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जो किसी भी समाज को झंझोड़ कर रख देते हैं और समाज के हसास लोगों को लर्ज़खैज भी कर देते हैं। बदकिस्मती से अजीम इंसानी और मजहबी कदरों की हामिल पिरवर कहलाने वाले वादी कश्मीर में ऐन ईद उल अज़हा के मुकद्दस त्यौहार की तैयारियों के दौरान गलवानपोरा बड़गाम में एक दिल दहलाने वाला वाक़ा रोनुमा हुआ है। एक 12 साल मासूमा बच्ची की गुमशुदगी के बाद एक खाली मकान से उसकी लाश मिली है। इस नाबालिग मासूम बच्ची की मुबैना असमत दरी और कत्ल का वाकया इंतहाई दिलदोज है। इस वाके से हमारे समाज में इखलाकी कदरों के जवाल और समाजी ताने बाने के बिखरने का दिल दहलाने वाला और जहन को झंझोड़ने वाला पैगाम उभरता है। चंद दहाइयों पहले तक कश्मीर और कश्मीरी समाज लगभग जराइम से पूरी तरह पाक था, जहां समाजी व मजहबी अकीदा यही था कि किसी भी मासूम शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यकायक तनज्जुल की एक आंधी आई और इस पुरमन कश्मीर को खौफ, दहशत और वहशत की फिजा में बदल गई। इस बात में शक नहीं कि बड़गाम के इस वाके ने पूरी वादी को गमजदा कर दिया है। पुलिस मामले की संजीदगी से तहकीकात

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, किसी भी मुआशरे की तरक्की और इस्तेहकाम इस बात पर मुनहसर होती है कि वसाइल और मवाके किस हद तक मुनसिफाना अंदाज में तकसीम किए जाते हैं। जब दौलत, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी वसाइल चंद मखसूस तबकात तक महदूद हो जाए तो मुआशरे में तबकाती फ़र्क बढ़ने लगता है। पाकिस्तान में तबकाती तकसीम और वसाइल की गैर मसावी तकसीम एक ऐसा मसला बन चुका है जो मुआशी, समाजी और सियासी सतह पर गहरे असरात मुरतब कर रहा है। अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क न सिर्फ अवामी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है बल्कि माशरती हम आहंगी और कौमी तरक्की के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तबकाती फ़र्क की एक बड़ी वजह मुआशी अदम मसावात है। आबादी की एक बड़ी तादाद बुनियादी ज़रूरियात के हसूल के लिए जद्दोजहद कर रही है। इस सूरत हाल में गरीब तबका मजीद कमज़ोर और अमीर तबका मजीद मजबूत होता जाता है जिससे मुआशी तवाज़ुन मुतासर होता है। तालीम के शोबे में भी वसाइल की गैर मसावी तकसीम नुमाया नज़र आती है। एक तरफ महंगी निजी तालीमी इदारे जदीद सहूलियात और आला मयार की तालीम फराहम करते हैं जबकि दूसरी तरफ सरकारी तालीमी इदारे बुनियादी सहूलियात से भी महरूम दिखाई देते हैं। इस फ़र्क के बायस मुख्तलिफ तबकात के बच्चों के मवाके यकसा नहीं रहते जो मुस्तकबिल में भी तबकाती तकसीम को बरकरार रखता है। सेहत के शोबे में भी यही तजाद मौजूद है। साहिब हैसियत अफराद मयारी तिब्बी सहूलियात तक आसानी से रसाई हासिल कर लेते हैं जबकि गरीब तबका महंगे इलाज और नाकाफी सरकारी सहूलियात के बायस मुश्किलात का शिकार रहता है। इससे न सिर्फ सेहत का मयार मुतासर होता है बल्कि अवाम में भी एहसास महरूमी बढ़ता है। शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क भी वसाइल की गैर मसावी तकसीम को जाहिर करता है। समीन, बड़े शहरों में तरक्याती मंसूबे, रोज़गार के मवाके और बुनियादी सहूलियात नस्बतन ज़्यादा होती है जबकि देही इलाकों में अवामी बुनियादी ज़रूरियात, तालीम और सेहत जैसी सहूलियात के लिए भी जदोजहद करते हैं। इस अदम तवाज़ुन से इलाकाई महरूमियाँ जन्म लेती है। सियासी और इंतजामी निज़ाम भी इस मसले में अहम किरदार अदा करते हैं। ताकतवर तबकात अक्सर वसाइल, पॉलिसी साजी और मवाके तक ज्यादा रसाई रखते हैं जबकि कमजोर तबकात फैसला साजी के अमल से दूर रहते हैं। इसके नतीजे में वसाइल की तकसीम मजीद गैर मुतवाजन हो जाती है। तबकाती फर्क और गैर मसावी तकसीम के असरात नहायत वसी हैं। सबसे पहले मुआशरती हम आहंगी मुतासर होती है। जब मुख्तलिफ तबकात के दरमियान मुआशी और समाजी फासले बढ़ जाए तो एहसास महरूमी, बेचैनी और अदम इत्मीनान में इजाफा होने लगता है। समीन, मुआशी तरक्की भी इस अदम मसावात से मुतासर हो रही है। जब वसाइल महदूद तबकों तक मरकूज हो जाए तो आबादी का बड़ा हिस्सा अपनी मुकम्मल सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके नतीजे में इंसानी वसाइल की तरक्की महदूद रहती है और कौमी मईशत कमज़ोर होती है। समाजी सतह पर भी तबकाती तकसीम खतरनाक नतायज पैदा करती है। मुआशरे में नफरत, हसद और अदम बर्दाश्त बढ़ सकती है जबकि जराइम और बदअमनी जैसे मसाइल भी शिदत इख्तियार कर लेते हैं। जब आवाम को मसावी मवाके न मिले तो माशरती तवाजुन मुतासर होने लगता है। नौजवान नस्ल इस फ़र्क में शदीद मुतासर होती है। एक तबका बेहतरीन तालीम, सहूलियात और मवाके हासिल करता है जबकि दूसरा बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी जदोजहद करता है। ये फ़र्क नौजवानों में मायूसी, एहसास महरूमी और मुस्तकबिल के हवाले से बेयकीनी पैदा करता है। इसी तरह वसाइल की गैर मसावी तकसीम जमहूरी निज़ाम पर भी असरअंदाज होती है। जब आवाम की बड़ी तादाद खुद को तरक्की के समरात से महरूम महसूस करें तो रियासती इदारों और निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर होने लगता है। ये सूरत हाल सियासी बेचैनी और समाजी तकसीम को मजीद बढ़ा सकती है। सामीन, तबकाती फ़र्क और वसाइल की गैर मसावी तकसीम एक ऐसे

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन, पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर का सामना कर रहा है, जो न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि रियासती इस्तेहकाम, मईशत और समाजी हम आहंगी के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों, खसूसन सरहदी खितों और हसास शहरों में दहशतगर्द हमलों में इजाफा वाज़ह तौर पर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि शिद्दत पसंद अनासर दोबारा मुनज़म हो रहे हैं। ये सूरत हाल इस तासुर को भी मजबूत कर रही है कि माजी की कामयाब फौजी कार्रवाइयों के बावजूद दहशतगर्दी का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं।

हो सका। दहशतगर्दी की नई लहर में शिद्दत पसंद ग्रोह अपनी हिकमत अमली तब्दील कर चुके हैं। रिवायती हमलों के बजाय अब ज्यादा मुनज्जम, टारगेटेड और गैर मुतवक्कूर कार्रवाइयां की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, हसास तंसीबात और अवामी मकामात मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बायस खौफ और अदम तहफ्फुज़ की फ़िज़ा बढ़ रही है। ये हमले न सिर्फ जानी नुकसान का सबब बन रहे हैं बल्कि रियासी रिट को भी बराए रास्त चैलेंज कर रहे हैं। सरहदी सूरत हाल भी इस मसले को मजीद पेचीदा बना रही है। अफगानिस्तान में जारी गैर यकीनी हालात के असरात पाकिस्तान पर नुमाया तौर पर मुरतब हो रहे हैं। समीन सरहदी निगरानी में मुश्किलात, गैर कानूनी आमदोरफ्त और शिदत पसंद ग्रोहों की मौजूदगी के खदशात सिक्योरिटी चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि सरहदी इलाकों में कशीदगी और हमलों के वाकयात मुसलसल सामने आ रहे हैं। इंतहा पसंदाना बयानिया भी दहशतगर्दी के फैलाव में अहम किरदार अदा कर रहा है। बाज़ शिदत पसंद तंजीमें मजहबी, सियासी और समाजी महरूमियों को इस्तेमाल करते हुए नौजवानों को मुतासर कर रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस मकसद के लिए एक मौसर जरिया बन चुके हैं, जहां नफरत अंगेज मवाद, प्रोपेगेंडा और गुमराह कुन नजरियात तेजी से फैल रहे हैं। मौशी और समाजी मसाइल भी इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, तालीमी पसमानदगी और एहसास महरूमी बाज इलाकों में नौजवानों को शिद्दत पसंद अनासर के लिए आसान हदफ बना रहे हैं। जब आवाम खुद को मौशी और समाजी तौर पर गैर महसूस करते हैं तो इंतहा पसंद ग्रोह इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक जामع और मुस्तकिल हिकमत अमली का फुकदान बन रहा है। अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां कर रही हैं, मगर दहशतगर्दी का मसला सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती, समाजी और सियासी पहलू भी रखता है। समिन इसी वजह से वक्ती कामयाबियों के बावजूद खतरा दोबारा सर उठाता दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान हम आहंगी के मसाइल भी नुमाया हो रहे हैं। दहशतगर्दी जैसे पेचीदा खतरे से निमटने के लिए मौसर मालूमाती निज़ाम और बरवक्त कार्रवाई जरूरी होती है, मगर मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबते और तआवुन की कमजोरियाँ कई मौकों पर वाज़ह नजर आ रही है। सामिन, पाकिस्तान में समाजी सतह पर भी दहशतगर्दी खौफ, बेचैनी और अदम तहफ्फुज़ को फ़रोग दे रही है। अवामी मकामात, तालीमी इदारों और मजहबी इज्तिमाआत में लोगों के अंदर अदम तहफ्फुज़ का एहसास बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान बद एतमादी और समाजी तकसीम भी नुमाया हो रही है, जो कौमी यकजहती को मुतासर कर रही है। नौजवान नस्ल भी इस सूरत हाल से गहरे तौर पर मुतासर हो रही है। एक तरफ शिदत पसंद बयानिए बाज नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, जबकि दूसरी तरफ खौफ, बेयकीनी और मुसलसल कशीदा माहौल नौजवानों में जहनी दबाव और मायूसी को बढ़ा रहा है। ये सूरत हाल नौजवानों की फिक्री और समाजी नशोनुमा पर मनफी असर डाल रही है। आलमी बरादरी, सरमायाकार और सफारती शराकत दार पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को तश्वीश की निगाह से देख रहे हैं। इसके नतीजे में आलमी एतमाद, सरमायाकारी और सफारती तालुकात भी मुतासर हो रहे हैं। इसी तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग रियासती वसाइल पर मुसलसल दबाव डाल रही है। सिक्योरिटी इकदामात, फौजी कार्रवाइयों और निगरानी के निज़ाम पर भारी अखराजात तरक्याती शोबों को मुतासर करते हैं। तालीम, सेहत और आवामी फलाह जैसे अहम शोबे भी इस दबाव के असरात महसूस कर रहे हैं। सामीन, दहशतगर्दी ने आम शहरी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। लोग सफ़र, इज्तिमात और अवामी सरगर्मियों में मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कई इलाकों में खौफ का ऐसा माहौल पैदा हो रहा है जहां मामूलात ज़िंदगी भी गैर यकीनी महसूस होने लगी हैं। ये मुसलसल जहनी दबाव माशरती सकून को कमज़ोर कर रही है। ये बहरान सिर्फ सिक्योरिटी मसला नहीं रहा बल्कि पाकिस्तान में कौमी जिंदगी के हर शोबे पर अपने असरात मुरतब कर रहा है, जिसके बायस पूरा मुआशरा दबाव, बेचैनी और अदम इस्तेहकाम की कैफियत महसूस कर रहा है। सामीन, ये तो थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में समाप्त करते हैं एक और नगमा।

0: प्रोग्राम सुनात कर रहे थे वादी की आवाज, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।
1: सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: यह

0: निकास श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम ये 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 8:29 हो चुके हैं। पेशे प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
1: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आईपीएल की प्लेऑफ लाइनअप बिलाखर सामने आई। अगर से तीन टीमें यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही कदे आसानी से प्लेऑफ्स के लिए जगह हासिल करने में कामयाब हुई थी, तहम चौथे स्पॉट के लिए चंद एक टीमें लाइनअप में थी और इसके लिए लगभग आखिरी वक्त तक इंतजार करना पड़ा। तहम दूसरी टीमों की उम्मीद उस वक्त पूरी तरह से खत्म हो गई जब कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को बआसानी हरा दिया। यूं दिफाई चैंपियन आरसीबी के अलावा गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स यानी चार फ्रेंचाइज हैं जो आईपीएल 2026 के प्लेऑफ स्टेज में जगह हासिल करने में कामयाब हुई। आईपीएल 2026 में मामला इस कदर नजदीक रहा कि तीन टीमें पॉइंट्स के एतबार से बराबरी पर रहीं। आरसीबी, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 9-9 मुकाबले जीतकर 18 पॉइंट्स हासिल किए। इन तीनों टीमों के माबैन नेट रन रेट का ही थोड़ा सा फर्क देखने को मिला, जिसके बायस आरसीबी पहले, गुजरात टाइटन्स दूसरे जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स 16 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रही। अब क्वालिफायर वन में पहले और दूसरे नंबर की टीमें यानी कि आरसीबी और गुजरात टाइटन्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में रसाई हासिल करेगी, जबकि क्वालिफायर टू में तीसरे नंबर और चौथे नंबर की टीमें यानी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे के साथ मुकाबला आरआई करेंगी। जीतने वाली टीम पहले क्वालिफायर में हारने वाली टीम के साथ मैच खेलेगी। इसी मुकाबले से फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का इंतखाब होगा। आईपीएल के खिताब से अभी तक महरूम दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स एक मरतबा फिर आईपीएल का टाइटल जीतने की उम्मीद से महरूम हो गई। ये दोनों फ्रेंचाइज इस मरतबा प्लेऑफ्स तक भी रसाई हासिल न कर सकी। पंजाब किंग्स पिछले सीजन के दौरान फाइनल तक रसाई हासिल करने में जरूर कामयाब हुई थी, ताहम वो खिताब हासिल न कर सकी। ताहम इसकी हार के बायस आरसीबी जरूर पहली मरतबा आईपीएल की ट्रॉफी हासिल करने में कामयाब हुई, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी मरतबा 2021 में प्लेऑफ्स में जगह हासिल की थी। गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल में 2022 में डेब्यू किया था। 2026 के सीजन को छोड़कर गुजरात टाइटन्स हर मौके पर प्लेऑफ्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ये वो तीन बड़ी फ्रेंचाइज है जिनके लिए आईपीएल 2026 बेहद मायूसकुन रहा और वो इस बार अगले स्टेज तक पहुंचने में भी नाकाम रही। पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगरचे आखिर तक उम्मीद बनी रही, ताहम बिलाकर 14 पॉइंट्स के साथ उससे भी आईपीएल 2026 से एलिमिनेट होना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद सबसे ज्यादा मरतबा प्लेऑफ्स तक रसाई हासिल और आईपीएल के खिताब हासिल कर चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल 2026 में शुरुआत बेहद मायूसकुन रही। अगरचे बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स जीत की पटरी पर वापस लौटने में जरूर कामयाब हुई थी, ताहम तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। कुल मिलाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने महज 6 कामयाबियां हासिल करके 13 पॉइंट्स हासिल किए और वो आईपीएल 2026 के अगले राउंड में क्वालिफाई न कर सकी। वाजह रहे कि इससे कबल कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मरतबा प्लेऑफ्स तक पहुंचने में कामयाब रही है, जबकि 3 मरतबा वो आईपीएल की चैंपियन भी रह चुकी है। आईपीएल की कामयाब तरीन टीमों का जिक्र किया जाए तो इस बार सबसे मायूसकुन कारकर्दगी मुंबई इंडियंस की जानिब से रही। 11 मरतबा प्लेऑफ्स में जगह और रिकॉर्ड 5 मरतबा आईपीएल का खिताब हासिल कर चुकी मुंबई इंडियंस दूसरी ऐसी टीम थी जो आईपीएल 2026 से एलिमिनेट हो गई। मुंबई इंडियंस इस मरतबा महज 4 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई, जबकि 10 मुकाबलों में उससे हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल 2026 की सबसे कमजोर टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 4 ही मुकाबले जीते। महज 72 नेट रन रेट के बायस मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स से थोड़ी सी बेहतर टीम नजर आई। इस बार प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी 4 टीमों के हवाले से खास बात यह कि चारों अभी तक एक एक बार आईपीएल का खिताब हासिल कर चुकी हैं। राजस्थान रॉयल्स 2008 में पहली और आखिरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी थी। सनराइजर्स

0: बाद ने दक्कन चार्जर्स के नाम से पहली और आखिरी मरतबा 2009 में आईपीएल की ट्रॉफी हासिल की है। गुजरात टाइटंस ने 2022 में जबकि आरसीबी ने पिछले सीजन यानी 2025 में पहली और आखिरी मरतबा आईपीएल का टाइटल जीतने का शर्फ हासिल किया था। इनमें से कौन सी टीम अपने टैली को दुगना कर सकती है, इसके लिए हमें इस महीने की आखिरी तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। आईपीएल 2026 के 5 कामयाब तरीन बल्लेबाज और गेंदबाज, इस पर आगे बात होगी। पहले एक नज़र खेलों की ताज़ा सरगर्मियों पर, खेल खबरों के साथ एजाज सोफी।
1: मौजूदा आईपीएल सीजन में सुपर 4 में 4 टीमों ने जगह बना ली। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को शिकस्त देने के साथ ही आईपीएल के मौजूदा एडिशन में सुपर 4 में जगह बना ली। मौजूदा एडिशन में जिन 4 टीमों ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया उनमें राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें शामिल है। राम महीने की 26 तारीख यानी मंगल को आईपीएल के मौजूदा एडिशन का पहला क्वालिफायर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन्स के दरमियान खेला जाएगा। एलिमिनेटर मैच रवा महीने की 27 तारीख को यानी बुध के दिन राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुनक्किद होगा। नॉर्वे में आज से मुनक्किद नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में भारत की जानिब से 4 दिग्गज खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें डी डुगेश, कनोरो हम्पी और दिव्या देशमुख शामिल है। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में कल दूसरे राउंड के एक मैच में रूस के अलेक्जेंडर ज़ेवरोफ ने फ्रांस के बेंजामिन बेंजू को 6-3, 6-4 और 2-6 के स्कोर से हरा दिया, जबकि खवातीन के जुमरे में अमेरिका की एलिना बेप्स्टे ने साबिका चैंपियन बारबरा क्रेंचिनकोवा को हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप में मैनचेस्टर सिटी के एल्विन हॉलैंड ने मुसलसल तीसरी मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल किया। उन्होंने रवां सीजन में कुल 27 गोल स्कोर किए, इस तरह वो गोल्डन बूट हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फार्मूला 1 कैनेडियन ग्रां प्री इटली के एंटोनियो ने जीत ली। मौजूदा सीजन में उन्होंने चौथी मरतबा कोई ग्रां प्री जीत ली है। उनके टीम में ड्राइवर मर्सिडीज के जॉर्ज रसल इंजन फेल होने की वजह से रेस में हिस्सा न ले सके।
0: फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन दिनों जारी है। चंद एक टॉप सीड खिलाड़ी अपने इब्तदाई मुकाबले जीत चुके हैं। इंजुरीज के बायस कई एक स्टार खिलाड़ी इस बार इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। इनमें से एक अहम नाम दिफाई चैंपियन कार्लोस एल्कारिस का भी है। ताहम वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर पिछले एक साल से बेहद उम्दा फॉर्म में है। इस दौरान वो क्ले कोर्ट पर खेले गए कई एक अहम मुकाबले भी जीत चुके हैं और कई एक रिकॉर्ड की जानिब वो गामजन भी हैं। खवातीन के जुमरे में कोको गाफ दिफाई चैंपियन है, ताहम इस बार उन्हें आर्याना सबालिंका, ईगा स्वायटिक और एलिना रैबेकिना के हाथों जबरदस्त चैलेंज मिल सकता है। पिछले चंद एक बरसों से ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में किसी एक खातून खिलाड़ी की डोमिनेंस देखने को नहीं मिली है, बल्कि अक्सर अवकात मुख्तलिफ खिलाड़ी ये टूर्नामेंट जीतती आ रही है। ताहम मर्दों के जुमरे में यानिक सिनर ने बहुत हद तक अपनी डोमिनेंस दिखाई है। मौजूदा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है जो यानिक सिनर को जबरदस्त चैलेंज फराहम कर सकता है। हालांकि यानिक सिनर अभी तक कोई भी फ्रेंच ओपन नहीं जीत पाए हैं। ताहम इस साल यानिक सिनर अपना आखिरी मैच फरवरी में हार चुके हैं और वो पिछले 33 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, जबकि इस दौरान वो पिछले मुख्तलिफ तरह के टूर्नामेंट भी जीत चुके हैं। कोई नया खिलाड़ी कोई बड़ा अपसेट करके यानिक सिनर को रोक सकता है। हालांकि 3 बार के फ्रेंच ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच भी इस टूर्नामेंट में शिरकत जरूर कर रहे हैं। ताहम पिछले कई वर्षों के दौरान उन्हें मुसलसल सिनर के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात यह है कि नोवाक जोकोविच को टूर्नामेंट में पेशरफ्त करने के लिए कई एक बड़े खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा। अजीम नोवाक जोकोविच इस बार फ्रेंच ओपन में एक चैलेंजिंग ड्रा का सामना कर रहे हैं। इन सभी असबाब को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि शायद इस बार यानिक सिनर क्ले कोर्ट पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं। टेनिस के बाद एक मरतबा फिर रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल 2026 के 5 टॉप स्कोरिंग बल्लेबाज और 5 कामयाब तरीन गेंदबाज, बात कर रहे हैं हमारे साथी सहबान शौकत।
2: کرکٹ شائقین اس بات سے

0: वाकिफ है कि आईपीएल 2026 का सीजन बेहद दिलचस्प साबित हुआ है। इस साल कई नौजवान और तजुर्बेकार खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को मुतासिर किया है। इसमें खासतौर पर से बॉलर्स और बैट्समैन के दरमियान ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस पूरे टूर्नामेंट में खास तवज्जा का मरकज बनी रही। टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने न सिर्फ अपनी टीम्स की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया बल्कि इनफरादी तौर पर भी जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया। इस सीजन की खास बात यह रही कि नौजवान खिलाड़ियों ने अपनी सीनियर्स के साथ बराबर का मुकाबला किया और अपनी टैलेंट को उम्दा तौर से साबित किया। चलिए बात करते हैं साई सुदर्शन की। ये इस सीजन के सबसे कामयाब बैट्समैन साबित हुए हैं। इन्होंने 14 मैचों में 638 रन स्कोर करने के साथ साथ सेंचुरी और हाफ सेंचुरी भी बनाई। इनकी बैटिंग और पेशेंस और टेक्निक का एक खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलता है। खासतौर पर पावर प्ले और मिड ओवर्स में इनके शॉट्स देखने लायक है। कई अहम मकामात पर इन्होंने अपनी टीम गुजरात टाइटंस को मुश्किलात हालात से निकालकर मैच जितवाने की अपनी तकनीक भी दिखाई। दूसरे नंबर पर हेनरिच क्लासन है जिन्होंने अपनी पावरफुल बैटिंग से पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया है। 660 रन्स बनाकर जिनमें 6 हाफ सेंचुरियां भी शामिल थी, हेनरिच ने स्पिन बॉल्स पर काफी ऑफेंसिव खेल खेला है। इनके स्ट्राइक रेट पूरे टूर्नामेंट में काफी इंप्रेसिव रही। कई मैचेस में इस खिलाड़ी ने आखिरी ओवर्स में तेज रफ्तार बैटिंग करके अपनी टीम को बड़ी स्कोर तक पहुंचा दिया। इनकी पावरफुल बैटिंग ने फैंस को बहुत मुतासिर किया। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। इस खिलाड़ी ने एक मर्तबा फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल है। इस सीजन में इन्होंने 616 रन स्कोर कर लिए और साथ में 6 हाफ सेंचुरियां भी बना डाली। अगर शुभमन सेंचुरी ना बना सके ताहम इन्होंने मुस्तकिल कारगर्दगी दिखाकर अपनी टीम को कई अहम कामयाबियां दिलाई। इनकी कवर ड्राइव्स देखने लायक है, साथ साथ टाइमिंग का खास ख्याल इन्हें शायकीन के लिए काफी दिलचस्प बनाता है। बतौर कप्तान भी इनकी परफॉर्मेंस कुछ कम न थी और दबाव की सिचुएशन के अंदर इन्होंने टीम को अच्छे से संभाला। शुभमन काफी शांत स्वभाव खिलाड़ी नजर आते हैं। शुभमन के बाद नौजवान वैभव सूर्यवंशी का नंबर आता है। सिर्फ 15 साल की उम्र में इस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपनी पहचान बनाई। 593 रन, एक सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरीज स्कोर करके बड़ी एतमाद के साथ इस कम सिन खिलाड़ी ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। वैभव शुरू से ही बॉलर्स पर हावी रहे और बड़े शॉट्स खेलने से घबराए नहीं। कम उम्र के बावजूद इनमें खेल की समझबूझ हैरान कुन है। इस सीजन के बाद इन्हें फ्यूचर का स्टार समझा जा रहा है। इस सीजन के एक और सनसनी खेज खिलाड़ी है जिनका नाम ईशान किशन है। अपनी पावरफुल बैटिंग से इस खिलाड़ी ने ओपनिंग में ही अपनी टीम को शानदार आगाज दिया। 569 रन और कई हाफ सेंचुरीज बनाकर वो टीम के लिए किसी हीरो से कम नहीं। खास बात इनमें यह है कि वो पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की सलाहियत रखते हैं। बैट्समैन विकेट कीपर होने के बावजूद ईशान ने बैटिंग पर भरपूर तवज्जो दी। नौजवान खिलाड़ियों ने पूरे सीजन को शायकीन के लिए दुनिया भर में काबिले तरीन खेल बना दिया जो किसी बड़े हौसला भी से कम नहीं और जो हमेशा क्रिकेट हिस्ट्री का शानदार बब बना रहेगा।
1: आज की स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। स्पोर्ट्स टाइम।
2: अब प्रोग्राम सुनात कर रहे थे स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है वसीम फारूक।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम

0: इस सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवान

उन्होंने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

0: संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस आकाशवाणी हम श्रीनगर स्टेशन मीडियम न्यूज आधार 8.8 मीटर तो FM 71.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन 9:14 सदे वलियो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बोजो हम सफर।
2: समीन पेश खदमत च प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम चु तहतां वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनते हैं।
2: के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है, सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
3: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
2: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर N राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर R गणेश को फनून लतीफ़ा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
2: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ F से शुरू होने वाली 3 चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये 3 चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़र मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्ज़ों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक SIDBI के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना

0: होती है, रिटायरमेंट से पहले जो एक जॉब होता है वो एक लाइफ होती है, और वो एक बड़ी लाइफ है जिसमें मेजर पोर्शन हम अपनी उस लाइफ पीरियड का, मैं तकरीबन 34 साल में सोच सकते हैं कि रात को सोने के लिए घर जाना है,
1: जी
0: छुट्टी
1: जी
0: के
1: जी
0: दिन अगर कोई मिलेगी छुट्टी तो वो
1: सही
0: है,
1: सही,
0: बाकी टाइम तो सारा रेडियो के साथ ही रहा है।
1: बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि आपके वालिद मोहतरम भी रेडियो से वाबस्ता थे, तो क्या बचपन ही से आपके दिल में ब्रॉडकास्टिंग का शौक मौजूद था, या हम ऐसे कह सकते हैं रेडियो की वो पहली याद क्या है जिसने आपको इस दुनिया की तरफ मुतवज्जे किया?
0: ऐसा है कि जो अल्लाह मगफिरत करे मेरे वालिद साहब, वो इंजीनियर थे और साउंड इंजीनियर्स थे, रेडियो में ही काम करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद मैं कुछ महीनों का हूँगा और मेरे वालिद साहब यहाँ कंट्रोल रूम में उस वक्त ड्यूटी पर थे, और उनका दिल चाहा कि वो मुझे देखें, तो उन्होंने स्पेशली यहाँ हमारे अल्लाह मगफिरत करे मोहम्मद यूसुफ शाह साहब थे,
1: जी।
0: उनको उन्होंने भेजा मेरे ननिहाल, और वहाँ से मुझे लेकर आए, और पहली बार समझ लो 6 महीने की उम्र में मैं कंट्रोल रूम में आ गया था।
1: अच्छा
0: तो समझ लो कि उसी वजह से शायद जीन्स अंदर घुस गए थे। शौक रहता था कि भैया रेडियो के बगैर और कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो था नहीं, टेलीविजन भी नहीं आया था उस ज़माने में, तो शांता कोल यानी
1: जी
0: कि आपा जान जो थी वो बच्चों का प्रोग्राम होनहार
1: बिल्कुल
0: करती थी,
1: बिल्कुल
0: और हमें बड़ा शौक रहता था उसमें आने का। एंड आपको हैरानी होगी कि सन 1974
1: जी।
0: में मैं बच्चों के प्रोग्राम में आया, यहीं म्यूजिक स्टूडियो वन में जो हमारे स्टूडियो के बगल में है, और वहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें कुछ चुनिंदा बच्चों को वो लोग बोलते थे कि कुछ बताओ या कुछ पोएम या कोई भी एनीथिंग, तो मैंने एक पोएम पढ़ दी थी, और पोएम पढ़ने के बाद जब बाहर निकले तो ड्यूटी रूम में गए, तो ड्यूटी रूम में ड्यूटी ऑफिसर थे बैठे हुए, आई डोंट रिमेम्बर द नेम क्योंकि आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, बहुत छोटा था मैं उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे 5 रुपये का नोट दिया एकदम कड़क फ्रेश।
1: जी।
0: 5 रुपये लेना इन 74, आई मस्ट बी मैं कितना होऊंगा, 6-7 साल का,
1: जी।
0: और जो 5 रुपये का नोट मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पैसा भी मिलता है, तो एक तरीके से आया। लेकिन क्या था कि सुनने का बोलने का शौक रहता था, लेकिन कभी भी मैं इस तरीके से इतना क्लोज नहीं हुआ रेडियो के,
1: जी
0: क्योंकि पढ़ाई के साथ थे, खेल कूद के साथ थे,
1: बिल्कुल
0: उस
1: बिल्कुल
0: बहुत ज़्यादा खेलता था मैं, नेशनल्स खेले, इंडिया रिप्रेजेंट किया अंडर 19 बैडमिंटन में भी इंडोनेशिया में जाके,
1: जी।
0: और ये सब किया। तो उसके बाद तब हमारी रिहाइश थी यहाँ रेडियो कॉलोनी में थी, तो एक दिन टेलीफोन आता है, और टेलीफोन पे, दैट इज़ 1984 की बात है, ये 1984 की बात है, रिंग बजती है, तो मैं उठाता हूँ फ़ोन, तो यहाँ के स्टेशन डायरेक्टर के एक नैयर साहब थे, उन्हें मुझे कहा मुझे जमील बख्श से बात करनी है। मैंने कहा ज़रूर आप प्लीज़ होल्ड कीजिए, मैं वालिद साहब को बुला के लाता हूँ, बस मेरी इतनी सी बात हुई। मैंने वालिद को बोला और कहा, वालिद साहब ने उनसे बात की और मेरी तरफ़ देख के कहते अरे तूने की क्या, मैं पंजाबी में मुझे कहते हैं, मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं, मैं सलाम की थी और आदाब किया और उसके बाद अगला बुलाता हूँ, कहते कल तुझे बुलाया है,
1: अच्छा
0: मैंने कहा अच्छा क्यों भाई मुझसे क्या गलती, जा रहा मिल लेना, मैं आया यहाँ, और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैं गया यहाँ पीए साहब सोफी साहब थे उनके पास में, तो उन्होंने कहा बैठो, पहचानते थे तो बैठ गया। थोड़ी देर में हमारे एक लाइब्रेरियन थे निसार बाला साहब,
1: जी
0: उनके
1: जी
0: फादर
1: जी
0: बाला
1: जी
0: साहब
1: जी
0: होते
1: जी
0: थे, वो वहाँ होते थे, वो आए कहते चल भाई शकील बुला रहे तेरे को। मैं अंदर गया, मैं डरा हुआ हक्का बक्का, मैंने गलती किया, मैं उसके कहते बैठो रवरदार सब, मैंने कहा जी, कहते यार तेरी आवाज़ इतनी शानदार है, तलफ़ुज़ इतना साफ है, तो तू रेडियो पे क्यों नहीं आता है, मैंने कहा जी कभी सोचा नहीं रेडियो पे आने का ऐसा, कहते नहीं अब तो रेडियो पे काम करेगा। तो उन्होंने अपने एक डायरेक्टर्स मेमो होता था, एक ग्रीन कलर
1: जी
0: की
1: जी
0: स्लिप
1: जी
0: होती थी, उस पर उन्होंने कुछ लिखा और मुझे कहा तुम चले जाओ युवानी सेक्शन में, वहाँ रुखसाना जबीन है,
1: जी जी
0: अब उनसे मिल लो जाके। मैं ठीक, मैं चला गया ऊपर, उस कमरे में 3 प्रोग्राम ऑफिसर बैठते थे, एक उबैर सदीकी जो बीबीसी
1: जी
0: चले
1: जी
0: गए,
1: जी
0: एक डॉक्टर रफीक मसूदी साहब और एक
1: रुखसाना
0: रुखसाना
1: जमी
0: जमील।
1: साहबा
0: मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी सलाम, मेरे सलाम वालेकुम, ऐसे मेरा नाम है, अच्छा हाँ बताओ मैं कैसे, नैयर साहब ने भेजा, कहते कोई बात नहीं तुमने पहले भी कुछ किया, मैंने कहा बच्चों के प्रोग्राम में आता था कभी, अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने ड्रॉर खोला, उसमें से एक स्पोर्ट्स की मैगजीन निकाली और मुझे कहा ये लो और तुम इस पर एक प्रोग्राम बना लो,
1: ठीक है
0: 10 मिनट का प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने कहा जी क्या, आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, मैंने कहा इसमें मुझे करना क्या है, कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने कहा जी नहीं, मैंने ऐसे, कहते स्पोर्ट्स की न्यूज़ बनाओ 10 मिनट की, अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स में जो अचीवमेंट्स आई हैं, जो
1: इवेंट्स
0: लोग
1: इवेंट्स जो
0: इवेंट्स
1: हुए हैं।
0: किए हैं, जो किए हैं वो सब, क्योंकि उस ज़माने में स्पोर्ट्स वीक ही होती थी,
1: जी
0: एक
1: जी जी जी
0: मैगजीन आती थी या बाद में स्पोर्ट्स स्टार आ गई थी, और इस तरीके से फिर मेरा सफ़र शुरू हुआ।

0: टीम आने का, मैं स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करता रहा। उसके बाद उमा खोसला थी, निकी आपा, वो मेरी गुरु हैं, उन्होंने मुझे सही में ब्रॉडकास्टिंग सिखाई थी। उनके साथ वेस्टर्न म्यूजिक में मेरा ऑडिशन हुआ और मैं उनके साथ आ गया, एंड देन आई स्टार्टेड वेस्टर्न म्यूजिक।
1: बचपन की बात और करेंगे, आपके वालिद इंजीनियर थे
0: जी,
1: वो नहीं चाहते थे कि आप इंजीनियर ही बने?
0: बिल्कुल, उनकी भी ख्वाहिश थी इंजीनियर बनने की, और जब मैं उनको देखता था, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वक्त ऐसा था कि आपको पता है कि शहर श्रीनगर या इवन कश्मीर वैली में बहुत सारे सिनेमा हॉल होते थे
1: जी,
0: और सिनेमा हॉल में मूवीज लगती थी, शौक रहता था कि पिक्चर देखें, और मैंने कभी टिकट नहीं खरीदी थी। दिस इज स्ट्रॉबेरी, सब हैरान होंगे कि टिकट क्यों नहीं खरीदते थे, टिकट नहीं, मुझे फ्री था, इसलिए कि पूरे JNK में मेरे वालिद साहब अकेले इकलौते ऐसे इंजीनियर थे जो प्रोजेक्टर्स की रिपेयर कर सकते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो
1: बहुत रिलेशन बन गया,
0: एक रिलेशन बन गया था उनके साथ जाना, या वो कभी भेज देते थे, या फैमिली के साथ चले जाना और मूवीज देखना रहता था।

0: इंजीनियर बनने की, और जब मैं उनको देखता था, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वक्त ऐसा था कि आपको पता है कि शहर श्रीनगर या इवन कश्मीर वैली में बहुत सारे सिनेमा हॉल होते थे,
1: जी
0: और सिनेमा हॉल में मूवीज़ लगती थी, शौक रहता था कि पिक्चर देखे, और मैंने कभी टिकट नहीं खरीदी थी। दिस इज स्ट्रॉबेरी। सब हैरान होंगे कि टिकट क्यों नहीं खरीदते थे। टिकट नहीं, मुझे फ्री था, इसलिए कि पूरे JNK में मेरे वालिद साहब अकेले इकलौते ऐसे इंजीनियर थे जो प्रोजेक्टर्स की रिपेयर कर सकते थे।
1: अच्छा,
0: तो
1: उस लिहाज
0: बड़ा
1: से
0: बड़ा बहा बहुत
1: एक रिलेशन बन
0: लिहाज,
1: गया था
0: एक
1: उनके साथ।
0: रिलेशन बन गया था उनके साथ जाना, या वो कभी भेज देते थे, या फैमिली के साथ चले जाना और मूवीज़ देखना रहता था। तो मुझे भी बड़ा शौक चला कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। और अब यकीन नहीं करेंगे कि अभी मैंने मैट्रिक दिया होगा तो मेरे फादर मुझे कहते हैं, कहते हैं भाई देखो, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, नौकरी मिले ना मिले तुम क्या करोगे, ऐसा करो कुछ ट्रेनिंग ले लो, अपने हाथ का काम करो। मैं कहा जी वो क्या करूँ, तुम सिनेमा हॉल के ऑपरेटर बन जाओ।
1: अच्छा
0: मैं कहा, कहते हाँ, यहाँ सुलेमान कॉम्प्लेक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस होता था जहाँ से लाइसेंस मिलता था, ऑपरेटर लाइसेंस।
1: अच्छा
0: मैंने वहाँ फॉर्म भरा, उन्होंने कहा हम आपको 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और उसके बाद फिर आपका टेस्ट लेंगे। मैं ठीक है। 1 महीने तक मैं नीलम सिनेमा में एज ऑपरेटर काम कर रहा था।
1: अच्छा
0: हाँ, वहाँ प्रिंट को रिवाइंड करना, प्रिंट चढ़ाना प्रोजेक्टर्स पे, प्रिंट उतारना, लाइट सेट
1: हो
0: करना,
1: गया।
0: कार्बन्स को ठीक करना, साउंड सेट करना, ये सब काम सीखना पड़ा। और उसके बाद लाइसेंस मिल गया,
1: मिल गया लाइसेंस।
0: लाइसेंस भी लिया जी,
1: अच्छा,
0: बिल्कुल कोई
1: लेकिन
0: नौकरी
1: पेशा नहीं बनाया फिर।
0: नहीं। अरे ऑपरेटर होते थे, मैंने कहा यार क्या मैं ऑपरेटर बनूंगा, जबकि मेरे दादा खुद सिनेमा हॉल के ऑपरेटर रह चुके हैं, हेड ऑपरेटर रहे थे रीगल
1: अच्छा
0: सिनेमा के, उनको पूरा लाल चौक इलाका मिस्त्री जी के नाम से जानता था। फिर 12th पास किया था तो एग्ज़ाम आ गया फॉर EA, इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, यहाँ भवनों स्कूल में एग्ज़ाम था। मैंने दे दिया एग्ज़ाम और अल्लाह के घर से मैं पास भी हो गया उसमें। अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था दिल्ली, वहाँ चीफ इंजीनियर ऑफिस है नॉर्थ जोन 4 जान रोड पर, वहाँ जाना था मुझे। लेकिन उसी पीरियड में मेरे नेशनल्स आ गए और मैं खेलने चला गया बैडमिंटन, क्योंकि उससे पहले मेरे इंदिरा गोल्ड कप था, इंदिरा गोल्ड कप में मैं हॉकी खेलता था, राइट आउट होता था मैं,
1: जी,
0: वो खेल रहा था, तो उसके बाद मैं वहाँ निकल गया। तो जैसे ही मैं चला गया तो मेरे वाले साहब बहुत नाराज़ हुए कि भाई तुम्हारा तो इंटरव्यू था, तुमको तो जाना चाहिए था वहाँ पर दिल्ली। कहें यार इंजीनियरिंग मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी फितरत का इंसान हूँ। हाँ,
1: सही।
0: मुझे पेंटिंग का शौक है, मुझे लिखने का शौक था, मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक था, मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। तो मैंने कहा नहीं, मेरा शौक कुछ और है, मैं ये ट्रांसमिशन लाइंस हो या इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हो, पॉजिटिव नेगेटिव फेस
1: जहन में कुछ
0: कॉम,
1: नहीं
0: ये सब
1: रहता है।
0: चीज़ों के साथ मेरा इतना रुझान रहा नहीं था। दो आई एम क्वाइट एक्सपर्ट इन दैट, मैं अभी भी कर लेता हूँ आराम से
1: सही।
0: सारा काम, बस यही रहा। उसके बाद
1: उसके बाद आप पार्ट टाइम रेडियो आते थे,
0: जी पार्ट टाइम
1: तो
0: रेडियो आते
1: उसकी
0: थे।
1: भी बात करेंगे, और फिर जो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का सफर शुरू हुआ उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर इस यसो किए तो ये बोझना बने।
0: अगर पॉसिबल छ तुम्हें बुझ नहीं हो, नसीमुल हक सब उन कला तुम बोल के याद रूशत,
1: सब्र रोशद सोलोमन। बिल्कुल बिल्कुल
0: एग्जैक्टली
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एग्जैक्टली,
1: जरूर जरूर
0: ब्यूटीफुल
1: जरूर
0: ब्यूटीफुल,
1: करो पेश।
0: बहुत टचिंग है ना, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट।

0: वाह वाह वाह, रूह ताजा हो जाती है।
1: आपको बताऊं, म्यूजिक जो है ना वो जिंदगी में एक सोल फीडर है, रूह की खुराक है। जिंदगी इतनी परेशान है, हम इतना भाग दौड़ करते हैं, लेकिन जब भी हम थकते हैं, अगर एक अच्छा म्यूजिक, अच्छी मौसीकी, अच्छा कलाम और अच्छी तरह से गाया हुआ हो, तो यकीन आपकी सारी थकान मिट जाती है।
0: मिट जाएगी, बिल्कुल सही। और आते हैं फिर से आपके बचपन की तरफ, और अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं नशरियात में। हमारे साथी, हमारे आज के साथी, हमारे आज के मेहमान, हमारी आज की शख्सियत मारूफ ब्रॉडकास्टर शकील बख्श, जिन्होंने एक खासा वक्त आकाशवाणी श्रीनगर में, जम्मू में, विविध भारती मुंबई में दिया। जब पार्ट टाइम यहाँ आया करते थे तो आप अनाउंसर बने।
1: जी बिल्कुल।
0: आपने वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम्स किए, जिस तरह से आपने कहा ओमक खोसला की निगरानी में। उसके बाद आप ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आ गए
1: जी,
0: और आखिर पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बने। इब्तदाई दिन आपके कैसे रहे?
1: मैं एज ए कैजुअल अनाउंसर आता था CBS में, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जिसको कहते हैं, आज विविध भारती का एक हिस्सा है वो, वैसे शुरू से था
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: अब
0: जी।
1: तो उसका नाम ही विविध भारती रखा है। मैं वहां था एज अनाउंसर, तो यहाँ दिखता था ड्यूटी ऑफिसर्स बैठे हुए सब कुछ। उतने में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम आया, मैंने एग्जाम दिया, पास हो गया। जम्मू रेडियो स्टेशन में हमारा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू भी दिया, ठीक है। रिजल्ट आ गया, पुलिस वेरिफिकेशन जैसा रूटीन्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वायरमेंट, वो होकर एंड आई ज्वाइन एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। और मेरे साथ सिर्फ दो ही साथी थे, एक बशीर अहमद पास साहब और गुलाम रसूल आखू जो आपके आज प्रोग्राम हेड है। हम तीनों ने शुरू किया, और इब्तदाई दौर में हम लोग रहते थे तो साथ में अनाउंसर CBS में कोई परमानेंट था नहीं उस टाइम।
0: सही सही।
1: वो एक साल बाद आए, महराज ने ज्वाइन किया, वजी ने ज्वाइन किया, क्योंकि तब आरिफ जान और ताहिर अनूर जो सीनियर हमारी अनाउंसर साहिबा थी वो रेडियो कश्मीर में काम करती थी, वो वहाँ नहीं आई थी। और जब भी वो आई तो वो दिन की नशियात करती थी, क्योंकि उस वक्त के हालत हाजिर ऐसे थे कि हम लोग क्योंकि हमें वहाँ रात को यहीं रहना पड़ता था, क्योंकि रात को देर से निकलना पॉसिबल नहीं होता था। अब यकीन नहीं करेंगे कि वक्त ऐसा आया बीच में भी कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि देखो फंड्स पीसेस बहुत कम आ रहे हैं और अनाउंसर हम बुक नहीं करेंगे, अब क्या करो। जनाब कोई बात नहीं, देख लेते हैं। दो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव गुलाम सुलाखून और शकील बख्शी दोनों इकट्ठे ट्रांसमिशन पे हैं। रात की नशरियात में शकील बख्शी एज ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव है और गुलाम सुलाखून जो हैं वो एज अनाउंसर काम कर रहे हैं
0: जी जी।
1: और सुबह की नशरियात में शकील बख्शी एज अनाउंसर काम कर रहा है और गुलाम सुल
0: एज ड्यूटी ऑफिसर काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से काम चलता रहा।
1: अरे हम लोग दीवाने थे, हमें काम करने का बस ऐसा जुनून था कि हम लोग देखते नहीं थे दिन रात, कई कई दिन तक हम लोग यहाँ रहते थे, काम करते रहते थे, प्रोग्राम करते रहते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी खुराफाती दिमाग था। खुराफाती ये था कि मोनोटनी नहीं चाहिए, एक जैसी चीज चलती रहे तो मैं बोर हो जाता था। मैं कहता हूँ अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो यार इसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाना है, कुछ ना कुछ नयापन लाना है। नयापन से क्या होता है, एवरी टाइम कि नयापन आएगा, हवा थोड़ी सी ताज़ा हो जाएगी और कुछ और लोगों को नई चीज़ सुनने को मिलेगी, बोर नहीं होंगे। सो हम लोग वैसे ही करते थे। मुझे याद है कि एक चीज़ मैं करता था, बड़ी हैरानी की बात होगी, कि विविध भारती से एक झरोका आता था, प्रोग्राम समरी आती
0: समरी
1: वो रिकॉर्डेड आती थी, क्योंकि उस टाइम पर टेप्स का ज़माना था, लेकिन हमारे पास सारी टेप्स आती थी पूरी ट्रांसमिशन की। मैं रात की ड्यूटी जब कर रहा होता था, नाइट ड्यूटी, मैं ड्यूटी ऑफिसर होता अनाउंसर काम कर रहा, मैं सारी टेप्स सुनता था, उसमें से चुनिंदा चुनिंदा बाइट्स निकालता था, फिर मैं पूरी आवाज़ में अपनी रिकॉर्डिंग करता था। वो 5 मिनट का झरोका
0: बना लिए,
1: उसमें वो बिट्स एंड ब्राइट्स एंड ट्रेलर्स लगाना था, स्निप्स लगाना। मुझे हमेशा वो डायरेक्टर बोलता, यही क्या किया, ये क्यों किया? मैं कह सर बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, ट्रांसमिशन सुनना मेरा काम है, मैं सुन रहा हूँ, ध्यान भी रख रहा हूँ उसका, लेकिन आई नीड समथिंग, मुझे खुराक चाहिए। खुराक वो है माइक्रोफोन, मुझे माइक्रोफोन चाहिए, अनलेस आई डोंट हैव द माइक्रोफोन आई एम नोबडी, मैं कुछ नहीं हूँ। और मुझे अपने सुनने वाले, अपने लिसनर्स के साथ हमेशा जुड़ना है, और मुझे जुड़ने का शौक था।
0: सही। आपने इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम भी किए?
1: हाँ, 1996 की बात है, बोर हो रहे थे, दिमाग में आया कि नहीं यार एक नया नया फोन इन कंसोल लगा था, तो हमने कहा कि फोन इन प्रोग्राम करेंगे। तो हमारे उस टाइम पे साबिका डायरेक्टर थे डॉक्टर रफीक मसूदी, मैं उनके उसके मैंने कहा मुझे साहब मैं ऐसा करना

0: कहते कर।
1: बेसिकली डायरेक्टर्स होते थे, प्रोग्राम का शौक होता था तो एनकरेज करते थे, तो हमें एनकरेजमेंट मिलती थी तो किए, ब्रॉडकास्टिंग भी की, प्रोग्राम्स भी किए, हेलो फरमाइश जिसका नाम था वो भी किया, हेलो फरमाइश थी वो भी किया, दो साल तक हेलो फरमाइश करता रहा। फिर मैंने कहा अचानक से, मैंने कहा थक गया अब नहीं करूँगा। कहते क्यों, अच्छा चल रहा है, बहुत पॉपुलर है, स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, बिजनेस भी आ रहा है। मैं कहूँ वजी कर रहा है ना, वो करने दीजिए उसको, मैं कुछ और करूँगा, क्या करूँगा। मैं कहूँ नहीं सर, कुछ डिफरेंट करूँगा, आई वॉन्ट, लिसनर को वेट नहीं कराना चाहता हूँ कि यार मैं थर्सडे को आपकी रिकॉर्डिंग करूँगा और संडे को आपकी फरमाइश सुनाऊंगा, ना ना इंस्टेंट करना है। लाइव तो प्रिंसिपल नहीं था क्योंकि तब LPs का ज़माना था, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स का, और रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी टेप्स के ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं था। मैं कह नहीं सर, तो आई स्टार्टेड हेलो CBS सेलेक्ट,
2: बिल्कुल
1: आधा पौना घंटा पहले मुझे अपनी रिक्वेस्ट दे दो और पौने घंटे के बाद ही सुन लो।
2: शकील साहब, आपने जम्मू में भी काम किया, जम्मू में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा, वहाँ के सामयिन और माहौल के बारे में कुछ बताएं।
1: जम्मू जब मेरी पोस्टिंग हुई, मैं गया जम्मू, का ब्रॉडकास्टिंग सिनेरियो तकरीबन ऐसा ही है जैसा ही हर स्टेशन का होता है, लेकिन वहाँ के लोग अलग, वहाँ के प्रोग्राम का पैटर्न अलग, जबान अलग। अब वहाँ डोगरी है, पंजाबी है, हिंदी है, वहाँ पे कश्मीरी नहीं है, तो उर्दू भी इतना नहीं ज़्यादा आया, तो वक्त लगता था कि कैसे करूँ। वहाँ भी ड्यूटी ऑफिसर था, लेकिन वहाँ क्या था कि रात को घर चले जाओ, ठीक है, संभालते थे, मॉर्निंग प्रोग्राम्स करते थे, सुप्रभात था, न्यूज़ डेस्क होता था, तो वहाँ पे दो ड्यूटी ऑफिसर थे, अंजना बडियाल, और तो वो लिखते भी थे और बोलते भी थे, बाकी हमारे पैक्स को रवि मंगोत्रा जी आते थे, वही प्रोग्राम करते थे वो, मतलब दूध का लोटा लेके निकलना, दूध लेने पहले दफ्तर आना, पहले ये प्रोग्राम करना क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है 7-5 पे, और फिर वापस चले जाना। मेरे वक्त में भी ऐसे ही करते थे। एक दफ़ा शायद वो लेट हो गए, क्या हो गया, मैंने लिखा हुआ था प्रोग्राम, अब मैं हिंदी में लिख रहा था क्योंकि उनको हिंदी पढ़नी है, और फॉर्चुनेटली मुझे हिंदी आती थी तो मैंने लिख ली थी, तो जब वो नहीं पहुँच रहे थे मैं उठा गया, माइक पर जाके प्रोग्राम करके आ गया, और जब मैं आया तो आए, कहते पंजाबी में, कहते ये कौन बोल रहा पैसे। मैं कह जनाब मैं ही बोल रहा था। ठीक है तेरी अगली ड्यूटी तो मैं नहीं आऊँगा, आप कर ली। मैं कहें सर हाँ खुद कर लेना। वहाँ का माहौल एक डिफरेंट था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, वेरी वर्क लोड था, वहाँ पे प्रोटोकॉल मेरे पास था, ट्रांसपोर्ट सेक्शन मेरे पास थी, कमर्शियल का पूरा डिपार्टमेंट मेरे पास रखा गया था, उसके साथ साथ ये सब जो दिन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं उनके साथ साथ मेरे को ट्रांसमिशन भी थी।
2: बिल्कुल
1: ट्रांसमिशन में मैं एज अनाउंसर भी काम किया है, मैंने एज ड्यूटी ऑफिसर भी काम किया है। वो इसलिए कर रहे, अरे यार शौक है, बेसिकली तो माइक चाहिए, रेडियो चाहिए, मतलब ऑफिसर बनने से कुछ नहीं होता है, जो अपना पैशन है वो अगर भूल जाएगा फिर देन यू आर नॉट ए गुड पर्सन।
2: और अब बात करें मुंबई की, मुंबई जैसे बड़े शहर में काम करना यकीनन एक मुख्तलिफ तजुर्बा रहा होगा आपके लिए, वहाँ के नशरियाती माहौल ने आपको क्या सिखाया?
1: रशीद, जिस टाइम पे मैं विविध भारती मुंबई गया, वहाँ का माहौल कुछ और था। परसेप्शन जो दिमाग में था कि विविध भारती जो है स्टॉलवर्ट्स की दुनिया है, फिल्म स्टार्स आते रहते हैं वहाँ पे तो बिजी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ ब्रॉडकास्टिंग इज़ वेरी टफ।
2: ओके,
1: वहाँ फिल्म स्टार के पास टाइम नहीं है, चाहे फिल्म स्टार हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, कोई भी हो, दे डोंट हैव टाइम। वो अपने लिए, क्योंकि बॉम्बे में ट्रैवल ही सबसे ज़्यादा मारता है। हम बोरीवली में थे, चर्च गेट में तो थे नहीं,
2: ठीक,
1: तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी बांद्रा में ही है, और बांद्रा से तकरीबन 30-35 किलोमीटर का ट्रैवल है, कौन आएगा 30-35 किलोमीटर और बॉम्बे की ट्रैफिक में, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता था। तो वहाँ क्या हुआ रहा था कि काफ़ी अरसे से वहाँ कोई नई रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, क्योंकि जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, ट्रैवल करने को तैयार नहीं था और मिलता नहीं था। और जब मैं गया, खुराफाती दिमाग है कि बैठना नहीं है, तो मैंने कहा यार कैसे करूँ, और मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी यूनिस खान के साथ, उनकी बेगम है ममता सिंह, उनके साथ भी हुई, कमल शर्मा थे वो भी थे, तो मैं उनको टटोलता था, मैं कोई कनेक्शन है, वो ढूंढते थे, मिल गए कहें, मैं ठीक है गाड़ी में बैठो, मेरे साथ ही गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में निकल चलते जाएंगे, वहीं पे जहाँ पे बोलेंगे वहीं जाके रिकॉर्डिंग कर लेंगे, चाहे स्टूडियो के सेट पे जाके रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे वैनिटी वैन में करनी है, चाहे उसके घर पे करनी है, मगर हम करेंगे, विल नॉट स्टॉप।
2: यानी आप स्टूडियो से बाहर निकले, वहाँ
1: स्टूडियो,
2: अगर स्टूडियो में इंतजार करते तो गेस्ट नहीं आते,
1: गेस्ट नहीं स्टूडियो में। 6 महीने में मैंने तकरीबन 74 आर्टिस्ट को रिकॉर्ड किया।
2: अच्छा,
1: हाँ, आज के आपके मेहमान, आज के
2: माशाल्लाह बहुत जबरदस्त,
1: और उसमें से शायद 10 होंगे जो स्टूडियो में है,
2: बाकी सारे आउटसाइड,
1: बाकी सारे उनके घरों पे, वैनिटी वैन में, स्टूडियो के सेट के ऊपर, एनीवेयर, इवन फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी 5-स्टार होटल में बैठे हैं वहां पकड़ लो जाके।
2: जी जी जी,
1: बड़े अच्छे

0: फ्रेंड्स भी हुए एंड इट वॉज मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया की सबसे बेस्ट सिंगर लता मंगेशकर जी हैं, जिनको दीदी कहते थे, वो कभी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होती थी. बहुत मुश्किल था उनको मनाना. एक फंक्शन हो रहा था कहीं पे, तो मैं भी वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ उनसे मुलाकात हो गई. अच्छा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की वहाँ पे भी. उन्हें मुझे एक चीज़ कही, शकील एक शर्त में मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगी. मैंने कहा बताइए कैसे, क्या शर्त है. कहती है कि मेरे भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने 1980s में कोई एक सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज ने एक भजन का LP निकाला था
1: जी.
0: उस पे उनके ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर की हाथ की ड्राइंग की हुई पेंटिंग बनी हुई थी उस पे. एक लड़की है सफेद साड़ी में, उसके बाल खुले हैं. कहती मुझे बड़ा शौक था कि वो कवर भी मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला. मैंने सुपर कैसेट को भी बोला,
1: नहीं मिला.
0: हाँ, तुम कहीं से कर सकते हो, तुम्हारे पास तो खजाना है विविध भारती में. मैं कह जी मैं देखता हूँ. मैं दफ्तर गया और मैंने अपनी लाइब्रेरी मिली थी उसको, मैंने कहा कि यार मुझे ढूंढना है. कहती शकील LPs तो अंदर है, गोल्ड रूम में पड़े हुए हैं, वो एयर कंडीशन में पड़े, वो यूज़ नहीं हम करते. मैं कहा जाने दे मुझे. बड़ी मुश्किल से हम गए और मैं वहाँ तकरीबन 2 दिन लगा रहा. तकरीबन वहाँ 34,000-35,000 LPs हैं. इतना बड़ा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है. और आखिरकार मुझे वो कवर मिला.
1: अच्छा.
0: हाँ, कवर थोड़ा हालत पतला था, उसको टेपों से बांध गया था. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं निकला. मैंने हमारी जो ऑफिशियल फोटोग्राफर थे, मैंने उसको कहा, क्योंकि फंक्शंस के वक्त वो आता था, तो मैंने उसको बुलाया. मैंने कहा मुझे इसको स्कैन कर और एग्जैक्ट इसको फ्रेम करके ला के दे. तो कहता अच्छा ठीक है, मैं लेकर आऊँगा. आई पेड इट फ्रॉम माई पॉकेट. मैंने वो बनवाया और मैंने ममता को लिया. मैंने ममता मुझे एक आधे घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड करके चाहिए. 75 years of classic singing of Lata Mangeshkar, not regular singing, only classical.
1: Say.
0: Meri Awaaz Hi Pehchaan Hai, naam ye tha. And we did that. Wo program maine banaya, uska LP maine banaya, LP CD cover banaya, uska sab kuch kiya. Then I called Lata Mangeshkar ji.
2: Commercial Broadcasting Service, Srinagar. Awaaz jo aapke karobar ko ek nayi udaan de. Kya aap चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान.
0: उनकी बेड उठाती थी. मैंने कहा दीदी से बात करा. कहती दीदी बात नहीं करेगी. मैं उनको बोलूं विविध भारती शकील बोल रहा है, उनका काम हो गया. एकदम आई फोन पे. कहती हाँ शकील. मैं दीदी कब लो, अभी ला सकते हो. मैं कह दीदी अभी लेकर आता हूँ. एंड आई ड्रोव फ्रॉम बोरीवली टू महालक्ष्मी एंड 53 किलोमीटर्स. मैंने ममता को साथ लिया, एक इंजीनियर साथ लिया, 2 माइक्रोफोन्स, अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम साथ रखा. मैंने कहा छोड़ना नहीं ये मौका. ममता परेशान, लता मंगेशकर का इंटरव्यू करना है, करना है. मैंने तैयारी नहीं की. मैंने कहा मुझे नहीं पता, करना है.
1: बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा.
0: और हम गए, उनकी मेड नीचे खड़ी थी, मिली. कहती चलो. ऊपर गए, चप्पल जूता उतार के हम अंदर गए. शी वाज सिटिंग ऑन अ दीवान. मैं उनके पैरों में बैठा, उनको ऑफर किया. शी वाज सो हैप्पी. कहती अब बता तुझे क्या चाहिए. मैं कहा एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगा, जस्ट आधे घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा. कहती तुम लोगे. मैं कह रही ममता लेगी. मैं
1: फिर ममता सिंह ने इंटरव्यू लिया.
0: ममता सिंह, मैं प्रोड्यूसर था उसका. तो
1: बहुत ज़बरदस्त. शकील साहब अगर भेक हैं बोसो तो उसे पसंद सुन क्या बूझो.
0: आई थिंक आई रिमेम्बर एक था कैसर निजामी और सुषमा दत्ता का एक कलाम है, माने बूझन.
1: माने बूझो ये मन कलाम.
0: वेरी नाइसली सुना दे यार.
1: जरूर पेश करेंगे.

0: वासुदेव रेह का कलाम आपने सुना, आवाज कैसर निजामी और सुषमा दत्ता की। ये पसंद थी हमारे आज के गेस्ट, हमारे आज के मेहमान, हमारे आज के नशरियात में हमारे साथी की, जो हैं शकील बख्श, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, मारू ब्रॉडकास्टर, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, मेहमान बन के आए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा लम्हा जिसे आप अपने करियर का खास संगमील समझते हैं?
1: प्रोग्राम्स तो बेतहाशा किए और हर एक प्रोग्राम को करने के एक ही मकसद था कि भी अपने सुनने वालों तक एक अच्छी से अच्छी और एक बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जाए। और ख़ासतौर से रेडियो जो है वो जबान का सबसे पहला एक इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और जबान दुरुस्त होनी चाहिए, अल्फाज सही होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट होनी, और मैं चाहता था कि ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी इनकलकेट हो जाए आवाम के अंदर भी, कि जब वो बात करे तो उनकी बात में सही वजन आने के लिए सही तलफ़ुज की ज़रूरत होती है। तो जो भी प्रोग्राम करते थे तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते थे कि हाँ, जो बोले तो सही बोले, और सही बोलने का मतलब है तलफ़ुज सही होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, और उसको बोलने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल बेहतरीन,
0: बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए।
1: जब ये करते थे तो इसी हिसाब से बेसिकली मैं एंटरटेनर था। मैं लिटरेरी प्रोग्राम्स की तरफ इतना ज़्यादा गया नहीं, क्योंकि शौक रहा कि लोगों को एंटरटेन करता हूँ, तो म्यूजिकल प्रोग्राम्स की तरफ ज़्यादा जाता रहा, और म्यूजिकल प्रोग्राम्स के साथ स्टोरी टेलिंग और अलग अलग प्रोग्राम्स, फिर लाइव ट्रांसमिशंस, इन सब के साथ करता रहा। लेकिन हाँ, एक हसीन प्रोग्राम करने का मौका मिला, वो विविद भारती में मुझे मिला। वो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे आमिर खान की एक पिक्चर की प्रमोशन हो रही थी, सीक्रेट सुपरस्टार।
0: जी जी।
1: एक स्मॉल बजट पिक्चर थी, सुपरहिट हो गई, हमारी कश्मीर की ही बच्ची उसमें हीरोइन थी। जब वो कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बात आई, एंड आई टोल्ड आमिर, मैंने कहा आमिर एक प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ। कहते क्या? मैंने कहा 100 ईयर्स ऑफ नासिर हुसैन।
0: अच्छा।
1: कहते शकील मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा उनको 100 ईयर्स हो जाएंगे उनको अगर जिंदा होते तो। कहते यार ठीक है, कब करेंगे? मैंने कहा आप देख लो। कहते नुजरत को बुलाते हैं, नासिर साहब की बेटी को। मैंने कहा हाँ बुला लो उसको भी। कहते ठीक है शकील, मैं तुझे फ़ोन करूँगा जैसे मैं टाइप करूँगा। और एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा शकील हो गया नुजरत के साथ भी, और इमरान भी होगा, इमरान उनका बेटा है, तो आ जाओ। एंड वी वेंट, दैट वॉज यादों की बारात। लेकिन वो अपने आप में एक ऐसा माइल स्टोन बन गया कि यार हाउ कैन वी गो हैड एंड प्रिजर्व, इस तरह से हम बचा के रख सके

0: उन लोगों की शख्सियत को कि जिस शख्सियत को हम लोग मिस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ प्रोफेसर रहमान रही थे
1: जी
0: और ज्ञानपीठ ऑडिट थे
1: जी,
0: उनकी ऑटोबायोग्राफी या उनकी रिकॉर्डिंग करनी चाहते थे, वो मानते नहीं थे। मैं सतीश ये कर ले यार, हमारे पास पैकेज में पैसा आया हुआ है, ये कर ले, कहते यार वो मानेगा नहीं। मैं चल मनाते मना के लाए, एंड वी रिकॉर्डेड 3 आवर्स विद प्रोफेसर अहमद राय बशीर आरिफ के टाइम पे। मैंने कहा करूँ, आरिफ साहब कहते कर ले, गाड़ी लेकर के उनके घर से उनको लेकर आए। सतीश कहते, मैंने कहा सतीश यू नो उनको बहुत अच्छी तरह से, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो और तेरा अबूर है कश्मीरी जबान के ऊपर, मेरा नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं एवरीथिंग मैं करूंगा, लेकिन तू भाई तू बैठ और कार्य है
1: सही।
0: सो ऐसे ऐसी चीजें करने का मौका मिला, ऐसे ऐसे अजीम शख्सियतों के साथ। मैं नहीं कहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री की कोई अजीम शख्स, सब अजीम है, लेकिन कश्मीर में टैलेंट भर के है,
1: बिल्कुल
0: इतना टैलेंट है यहाँ पे। हमारे पास ड्रामा के आर्टिस्ट इतने ज्यादा है, हमारे पास म्यूजिक के सिंगर्स इतने ज्यादा है, कंपोजर्स इतने ज्यादा है, और आज भी उन लोगों से मिलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ यार ये वो आदमी है यार जिसके साथ जाके बात करने मजा आता था। क्यों आता था? क्योंकि हम लोग यार आप ही की वजह से तो है यार।
1: सही बात है,
0: रेडियो है बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट।
1: हमें ये बात बखूबी मालूम है कि आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ एक खास दिलचस्पी रहा करती थी जब हम काम करते थे। उस वक्त अभी मोबाइल नहीं आया था, नया नया मोबाइल फिर आ गया। ये बात अपनी जगह सही है कि आपने रेडियो के कई अदवार देखे, AM देखा, FM देखा और अब फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी देखा, तो आपके ख्याल में क्या रेडियो की रूह आज भी वही है?
0: ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वक्त और हालात के साथ हर चीज बदलती है, लेकिन जिस दौर में अगर हमने शुरू किया काम करना और हमारे पीछे जो खड़ी हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी, हमारे दिग्गज ब्रॉडकास्टर्स, एस ब्रॉडकास्टर्स होते थे, उनमें से बहुत कम लोग अब जिंदा हैं और बाकी लोगों का अल्लाह मग़फ़िरत करे वो चले गए हैं। और वक्त ऐसा आ रहा है कि जहां पर हम भूखे हो गए हैं कि रेडियो के दामन को भरने वाला कोई नहीं है।
1: सही।
0: हम सही माने में चाहते हैं कि रेडियो के दामन को भर दे। रेडियो की लाइब्रेरी एक खजाना है जिसके अंदर कल्चर, वरासत सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए कोई नहीं है। देर कोई ना कोई तो चाहिए। अब नौजवान पीढ़ी है तो समझना है। देखिए रूह पे बहुत बुरा असर पड़ा है। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के साथ साथ हमें डिजिटलाइज होना पड़ा, लेकिन हमारे डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ये हुआ कि हमारे पास मैन पावर जखीरे कम हो गए। दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी रूह में कुछ और नई ताजगी आए, कोई नई जान फूंकी जाए।
1: बिल्कुल। इतनी मसरूफियात, नशियाती जिंदगी के साथ घर और खानदान के लिए वक्त निकालना आपके लिए कितना मुश्किल होता था या आसान रहा आपके लिए?
0: आसान तो नहीं था। हमारी औलाद कब बड़ी होगी हमें पता नहीं चला, क्योंकि सारा वक्त हम रेडियो में होते थे। एक दिन शाम को 4 बजे घर से निकलना और अगले दिन 12 बजे
1: 2 बजे
0: भी घर जाना, या अगर डबल लगी तो 2-3 दिन के बाद जाना।
1: और हालात भी यहाँ वैसे थे कि हम 3-3 दिन 4-4 दिन के बाद घर जाते थे।
0: जब ऐसी हालत होती थी तो पता ही नहीं। अच्छा उस वक्त ना मोबाइल्स थे ना टेलीफोन्स थे, तो पता ही नहीं होता था घर पे कोई परेशानी है, कोई है, जरूरत है।
1: घर वालों और अहले खाना का जबरदस्त किरदार रहा, रोल रहा।
0: ओ बहुत बहुत। मेरे लिए उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहा कि मैं उस खानदान में रहा जो ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्टिंग के साथ मंसूब था, बेशक डिफरेंट एस्पेक्ट से था। मेरे फादर इंजीनियर थे, उनकी भी ड्यूटीज ऐसी होती थी। जब वो एज ए थे, फिर SEA बने, फिर AE बने, इवन जब ASC भी थे तब भी यह था कि कभी भी जाना है, कोई मौका नहीं है, कोई प्रॉब्लम है दौड़ना है, कुछ भी है जाना है, सब कुछ छोड़ दो, घर भी छोड़ दो, बार भी छोड़ दो, खाना भी छोड़ दो, लेकिन जाना है।
1: सही, सही।
0: क्योंकि कहते हैं ना कि अगर वॉर थी सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन रेडियो बंद नहीं
1: होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: तो हमारे दिमाग में और हमारे अंदर ये चीज इनकलकेट हो गई थी, डाल दी गई थी, और हम समझ चुके थे इसको कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ब्रॉडकास्टर है, ट्रांसमिशन है, ये एक सेकंड लेट नहीं होनी चाहिए। कोई प्रोग्राम है तो वो होना है, कोई ट्रांसमिशन में अगर कुछ बोलना है तो बोला जाना चाहिए, सही वक्त पे सही चीज बोली जानी चाहिए। तो उस वक्त घर नहीं, पहले दफ्तर था।
1: बिल्कुल सही, यानी
0: तो अगर नहीं,
1: अगर साथ नहीं देते
0: बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: आप कामयाब ब्रॉडकास्टर नहीं बनते।
0: नहीं।
1: अब जिस इंसान के जहन में ब्रॉडकास्टिंग बसी हो, जब वो रिटायर हो जाता है, जब माइक्रोफोन से दूरी हो जाती है, जब रेडियो स्टेशन से दूरी हो जाती है, तो जिंदगी कैसी गुजरती है?
0: ऐसा है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है तो आप सोचो कि 34 साल का एक लंबा सफर करने के बाद आपके पास कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे यू हैव नथिंग। आपको पता ही नहीं है कि आपको उठ के जाके करना क्या है, आप किसके साथ बोलोगे। अब खामोश थोड़े से हो जाते हो। टेक्स टाइम, مجھے بھی

0: लगा कि मैं खामोश हो गया। घर वाले कहते हैं आप बड़े सीरियस हो गए, बात नहीं करते। मैं कहा बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि बात मेरी सारी जो थी वो उधर होती थी
1: माइक्रोफोन
0: पे। वहाँ मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने कभी ये चीज़ की। सोशल सर्कल क्या होता है मुझे पता ही नहीं होता था।
1: सही, सही, सही,
0: हमें पता नहीं था सोशल सर्कल क्या होता है। गप्पे मारनी है तो दफ्तर में मारनी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: प्रोग्राम में मारनी है, कोलीग्स का मारनी है, अरे घर के साथ फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर नहीं होता था, कहीं जाना आना नहीं होता था। लेकिन फिर ऐसा ऐसा आदत पड़ जाती है, फिर इंसान अपने को मसरूफ़ कर देता है, और मसरूफियात में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब घर के बाग में खेतीबाड़ी करने से, फूल को उगाने से लेके घर के सौदा पत्र लाने से, लेकिन पहले भी लाते थे, लेकिन अब कुछ ज़्यादा शौक से ले आते कि यार अब यही काम बचा है हमारे पास, ये ले आएंगे। और फिर अल्लाह के फजल से ग्रैंड डॉटर है अब, और जब वो आती है तो फिर नाना का सारा टाइम
1: उसी
0: उसका होता है,
1: हाँ।
0: क्योंकि उसको चाहिए नाना, चाहिए तो चलना है, बाहर निकलने लगा हो, कहाँ जा रहे हो तो साथ चलो, तो अच्छा है, इट टेक्स टाइम।
1: अगर शकील साहब फिर कुछ सुनना चाहेंगे तो क्या सुनेंगे?
0: महजूद साहब का एक कलाम है, शाज़े बशीर ने वो शायद गाया हुआ है,
1: अती रोज़ मदन,
0: अती रोज़ मदन,
1: बिल्कुल ज़रूर
0: ठीक है, वो
1: पेश
0: सुना दो यार।

0: ये था शकील साहब आपकी पसंद का नगमा। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ गया। वक्त की कैद ना होती तो मुझे मूड नहीं था इस बातचीत को ख़त्म करने का।
1: बहुत अच्छा लगा। मैं कहूँगा तकरीबन 5 साल के बाद मैंने माइक के सामने आके फिर बात की है तुम लोगों के साथ, और अपने आप में एक अलग मज़ा रहा। बहुत सारे तार दिल के आपने छू दिए और कुछ यादें ताज़ा करा दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इन यादों को ताज़ा करने के लिए और एक नई रूह मेरे में फूंकने के लिए कि यस अभी भी मेरे में जान बाकी है और मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ।
0: बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। सलामत रहें, आपकी सेहत ठीक रहे, और नए ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी दुआ कीजिएगा।
1: अरे मेरी दुआएं हर उस बच्चे के साथ है, बच्ची के साथ है, जिसे सही माने में शौक है ब्रॉडकास्टिंग का, माइक पे आने का। जो आना चाहता है दिल से आए, क्योंकि माइक जो है वो कहते हैं ना कि एक बहुत बेहतरीन हसीना है, इससे जितनी मोहब्बत करोगे ये आपका साथ देगी, लेकिन ये ऐसी नागिन भी है कि अगर आप नफरत करोगे तो डस देगी। इसलिए प्यार से रहो और दिल से अपनी मेहनत करो, कोई नहीं रोक सकता आपको।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
1: थैंक यू रशीद, थैंक यू वेरी मच।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के

0: साथ मैं जय आभारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
3: दिस इज

लाइव मॉर्निंग शो हो पाया हमें सुबह सुबह 10:30 पर पेश होता है। दिन की नशरियात का आगाज होता है सुबह 6:28 पर। 6:35 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे सुबह गाही।

सुबह 7:10 पर पयाम सुबह पेश होता है। सुबह 8:45 पर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा हम सफ़र। मौजू होगा ईद के मौके पर बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त का ज़ाब्ते इख़लाक। मौजू पर बात करेंगे मौलाना फ़याज़ अहमद ज़रू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपड़ा। सुबह 9 आप सुनेंगे आज की सुर्खियाँ। सूफियाना मौसीकी आपके लिए पेश होगी 11:30 पर। बज़्म निस्वां आरास्ता होगी दिन के 12:40 पर। सूफियाना मौसीकी आपके लिए पेश होगी दिन के 2:30 पर।

पहाड़ी प्रोग्राम सुपहर 4 बजे और पंजाबी प्रोग्राम 4:30 पर आप सुनेंगे। गोजरी प्रोग्राम आप सुनेंगे सुपहर 5 बजे। शाम के 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गमी बायन हिंद खत्र। हालात हजरा का प्रोग्राम शहरबीन पेश होता है शाम 7 बजे। वादी की आवाज आप सुनेंगे रात 8 बजे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के हवाले से आप प्रोग्राम सुनेंगे रात 8:30 पर। प्रोग्राम के मेजबान है तारिक अहमद राठौर। स्पॉन्सर प्रोग्राम हम सफर आप सुनेंगे रात के 9 बजे। मौजू कुर्बानी के आदाब व अहकाम। मौजू पर बात करेंगे मौलाना फैयाज अहमद जुरू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपरा। हम कलाम यह प्रोग्राम आप सुनेंगे रात के 9:30 पर। रात के 10 बजे प्रोग्राम पेश होगा हेलो फरमाइश। प्रोग्राम पेश करेंगी सकीना राठौर। समीन ये थी कल यहां से पेश होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। रात के 11:15 हो चुके हैं। आज की मजलिस बर्खास्त होती है। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर जिसे आप सुन रहे हैं वो है गीत मेरे मनमीत का, जिसमें हम लेकर आपके लिए आते हैं गोल्डन एरा के गोल्डन गीतों को, वो भी बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और ये सफर है निशिगंधा का। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी कर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहां। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छुपा है।

आप सुन रहे हैं और ये सफर है निशिगंधा का। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी कर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहां। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छुपा है। इन पंक्तियों ने हमेशा ही मुझे आवाज दी, हिम्मत दी, उठकर चल पड़ने को साहस दिया। कुछ तो था इन पंक्तियों में जिसने हमेशा मुझे जगाया है। आज सोचा कि इन पंक्तियों के मतलब को आपसे भी साझा करूं निशिगंधा के बहाने।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसे छोटे छोटे दायरों में जीने की बजाय खुलकर जीने का नाम ही तो जिंदगानी है। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ये पंक्ति मात्र नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें आमंत्रित करती हैं कि दुनिया की सैर करो, उसके रंग रूप, संस्कृतियों को, स्वादों को, अनुभवों को अपना लो। जब तक सांस है तब तक जियो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के जियो, बिना किसी पछतावे के जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी जिंदगानी।

देखिए ना, आज का हर इंसान बहुत से नियमों से, अपेक्षाओं से और भय के पिंजरे में कैद है। समाज कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो, फिर धर्म कहता कुछ और ही है, परिवार कहता है स्थिर हो जाओ, बस जाओ, लेकिन गाफिल जिंदगानी बंधनों से मुक्ति का नाम है। इसका मतलब संकीर्णता से मुक्ति है। ये कहती है कि दुनिया का हर कोना अद्भुत है, पहाड़, समुद्र, जंगल, शहर, गांव, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, सब कुछ देखो। दुनिया घूमने का मतलब केवल पर्यटन नहीं है, ये अनुभवों का संग्रह है। जितना आप ज्यादा लोगों को जानेंगे, संस्कृतियों को पहचानेंगे, आपका अनुभव, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और ज्ञान ही इंसान में समझ को बढ़ाता है, इंसान को असल मायनों में इंसान बनाता है।

बिल्कुल यादें छोड़ जाता है और बहुत सारे यादें वो समेट भी लाता है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है निशिगंधा का। आज हम बात कर रहे हैं उन खास पंक्तियों की जिसमें सचमुच जीवन का दर्शन छिपा है, और वो पंक्तियां हैं सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी अगर कुछ रही तो जवानी फिर कहां। और लोग घूमते हैं देश विदेश न जाने कहां कहां और बटोरते हैं ढेर सारे अनुभव। जब आप इटली के रोम में कोलेजियम के खंडहरों के सामने खड़े होते हैं तो इतिहास जीवंत हो उठता है। जापान के चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठकर साकुरा देखते हैं तो क्षणभंगुरता का सबब मिलता है। जब राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर सूर्यास्त देखते हैं तो लगता है कि जीवन कितना विशाल है। हर जगह इंसान की कहानी अलग अलग है, फिर भी पता है क्या एक है। एक चीज एक है कि वो एक ही चाहत में घूमता है और वो चाहत है खुशी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है निशिगंधा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज टटोल रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ निशिगंधा के बहाने। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, इस लाइन में छुपा है जिंदगी का फलसफा, जिसे ढूंढ रहे हैं हम, जिसे कह रहे हैं हम, जिसे गुनगुना रहे हैं हम और जिसे गा रहे हैं हम।

0: कभी कभी।
1: गाफिल जिंदगानी यानी बेसुध बेखबर। सच्ची जिंदगी तो तब शुरू होती है जब हम तेरा मेरा का भेद मिटा देते हैं। ये जिंदगानी हमें सिखाती है कि सुख वस्तुओं में नहीं, अनुभवों में है। नया खाना खाना, नई भाषा सीखना, अनजान लोगों से दोस्ती करना, गलतियां करना और फिर उन गलतियों से सीखना, यही तो जीवन है। अनुभवों का असली नाम ही जीवन है और जीवन में हमें तरह तरह के अनुभव लेते रहने चाहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज।
0: श्रवणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सफर है निशिगंधा का और हम बात कर रहे हैं सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। इसी सफर में फिर कहाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। मौत के बाद क्या, कोई नहीं जानता। स्वर्ग नर्क की कहानियां तो सिर्फ कहानियां ही हैं, जो कुछ है वो यही है, इसी धरती पर है, इसी वक्त में है। अगर यही नहीं जिया तो फिर कहाँ जाना है, अगर यहाँ नहीं जिया तो फिर कहीं और जाकर भी क्या मिलने वाला है। कई लोग कहते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी कोई भी समय परफेक्ट नहीं आता कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा और फिर हम कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समय को अपने लिए परफेक्ट बनाना पड़ता है और इसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो समय बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसे थोड़ा रोक लीजिए अपने लिए।

0: जल।
1: ये जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने वाली मशीन नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इतनी सुंदर धरती है, हमारी आत्मा को हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, नई नई सुगंध चाहिए। जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, तब तक सैर करो। अंत में यही कहना चाहूंगी, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी का मतलब है खुलकर जीना, बेखौफ जीना और प्रेम से जीना। आप अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं, कोई कविता या गीत बन सकती है आपका अनुभव, किसी को राह दिखा सकती है, रिपोर्टाज बन सकती है। और ये जो इतना सुंदर चित्रकार है, उसने जो ये चित्रकारी की है हमें अलग अलग अनुभव देने के लिए, हमें जीवन का दर्शन देने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखना और समझना चाहिए। इसी के साथ दीजिए माधुरी को निशिगंधा से इजाजत। ये आखिरी गीत निशिगंधा का आप सभी के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के

0: इस जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah, Gajinder Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and change makers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post,

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत सुहाने, जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड क्लासिक्स। और आज की रात आपके साथ मैं हूं माधुरी।

0: जरा हटके।
1: ये जिंदगी तो ऐसी ही है, किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए आसान है। ये गीत सुना आपने फिल्म CID से मोहम्मद रफी और गीता जी के आवाजों में। और अगला गीत आपके लिए ये रहा।

लता और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत सुन रहे थे आप, फिल्म गूंज उठी शहनाई से, संगीत दिया वसंत देसाई ने।

नवरंग फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर के आवाज में, संगीत सी रामचंद्र का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

0: भाई किसी का साथ ही ऐसा हो कि मन कर जाए कि दिन और रात बस उसी के साथ रहें, तो क्या बात है। और ये जो बात हुई, ये हुई फिल्म मिस बॉम्बे में, और आवाजें थीं सुमन और मोहम्मद रफी साहब की। हंसराज बहल का संगीत था। और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं अब, जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती। मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर न कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर।
1: मंजूर। काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लू।
1: हाँ।
2: वो देखते हो वो?
1: हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी।
2: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।
2: कुक कुक।

गाने होते हैं ना कि जब भी सुनो तो मन जो है रिफ्रेश सा हो जाता है, फ्रेश कर देता है मन को, तो ये भी कुछ ऐसा ही है, ऐसे सेंटर फ्रेश की तरह इसकी भी टेस्ट आती है इस गाने की। और ये जो गीत था, ये था फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा जी की, और संगीत एस टी परमन साहब का।

फिल्म अलबेला से ये गीत सुना आपने चितलकर लता जी और कोरस की आवाज में, संगीत चितलकर रामचंद्रन का।

फिल्म मल्हार से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मुकेश की आवाज में। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म बैजू बावरा से लता जी की आवाज में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते

0: ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Raja was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and changemakers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said, Prime Minister Narendra Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic progress by honouring the real changemakers, strengthening the society at grassroots. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूं आज की रात आप सभी के साथ।

तूने खलवत में कभी ये भी तो सोचा होगा, तू न होगा तो मेरे दिल में अंधेरा होगा। आंख में ठहरे समंदर ये पता देते हैं, दिल के सहरा पे कोई अब्र तो बरसा होगा।

दिन को भटकूंगा तेरी प्यास का सहरा बनकर, रात खो जाऊंगा तुझ में तेरा साया बनकर। मैं के मंजिल था कभी तेरे एक ख्वाब की, अब रह गया हूं तेरा एक भूलता रास्ता बनकर। उसने अच्छा किया ठुकरा दिया मुझको, वरना खुद उसे जीना ही पड़ता मेरे जैसा बनकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ।

तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस सफर के गीतों गजल आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी रात भी हमारी रात की तरह अच्छी गुजर रही होगी। और कई बार बातों ही बातों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि खामोशियों को सुनना शुरू कर दें। कुछ हिस्सा ही है अगला गीत, कुछ ना कहो।

खुशबुएं लहरें समंदर पे कोई बात होगी, प्यार में आगे बढ़ेंगे तो प्यार की कोई किताब होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण

मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एनपीएफ में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत करते हुए हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यादें भी क्या हैं और कब बिन बुलाए दस्तक दे देती हैं, और हमें भी जब आपकी याद आती है हम आपसे मिलने पहुंच जाते हैं। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है, और दिल कहता है मत तड़पाओ उन्हें, और यादें कहती हैं बस उन्हीं के हो जाओ। तेरी यादों का समंदर कुछ ऐसा है कि हर लहर दिल को छूकर गुजर जाती है। कितनी अजीब है ये दिल की कश्मकश भी, यादें तो उनकी आती हैं और सांसें हमारी रुक जाती हैं।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत आपने अभी सुना। नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी आंखें झुका लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जाने अनजाने से अभी आपने गीत सुना। वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, फिर भी तुझसे प्यार है और तेरा इंतजार है। तेरे चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, मुझसे जुदा होकर भी तू भी बेकरार है। आइए सुनते हैं टैक्सी चोर फिल्म से किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं कारवां फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

चांदनी रातों में, अक्सर तन्हा चांदनी रातों में मन की खामोशी है और दिल कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आवारा फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, इस बारिश पर ना जाओ देखो, दिल के दरिया में कहीं एक तूफान उठा होगा। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9/2/11 से ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म रंगीला रथ से ये अभी गीत आप सुन रहे हैं और इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से

अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधनों निर्देशनों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक साधन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल है। आरबीआई ने कहा है कि यह कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा

0: रवांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in the cabins of the Gulmarg gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Omar Abdullah announced a probe into the malfunction and said action would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, yesterday, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders.

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारा मन खुश है तो हमें सब जगह अच्छा ही नजर आता है। जमीन, आसमां, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा शांत रखिए, जिससे आपका तन भी स्वस्थ रहेगा और आप भी।

अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में जो भी बातें हैं वो किसी अपने के साथ जरूर शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म जोशीला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बेकार की दुख चिंता में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं खानदान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है दोस्तों, बस ये आपको देखना है कि इसे जीना किस अंदाज में है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जिगरी दोस्त से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का असूल है तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म रेशमी रुमाल से ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गीत गंगा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे BSF की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की बेला है और ऐसे में ध्यान को प्रभु सिमरन में लगाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जो गाया है तनुश्री कश्यप शर्मा ने।

दोस्तों, गीत गाते गुनगुनाते जिंदगी का ये सफर बिताते चलो, हंसते मुस्कुराते ये प्यारे से पलों से अपने को महकाते चलो।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में आए हैं तो बिछड़े हुओं को मिलाते चलो और मंजिल की धुन में झूमते गाते चलो, बिल्कुल इस गीत की तरह। अनोखी अदा फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में, फिल्म घर संसार से।